40 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की भाद्रपद माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 21 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह की 5:55 और 43 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

बादलों के पीछे से सूरज जब मुस्कुराता है, भीगा हुआ आकाश सुनहरा हो जाता है। प्रकृति सिखाती है अंधेरा स्थायी नहीं होता, धैर्य रखने वाला कभी उम्मीद से दूर नहीं होता। भीगी हवाओं में मिट्टी की सौंधी खुशबू है, पर हर डाल पर हरियाली और मन में नई आरजू है। बूंद बूंद जीवन को आगे बढ़ने का संदेश देती है, छोटी सी खुशी भी मन को आनंद से भर देती है। नमस्ते, लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर के सुहानी विला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय ये सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी

हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.1 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। समय है किसान भाइयों को कृषि से संबंधित जानकारी देने का। आज सुनिए शुद्ध उर्वरक की सही पहचान विषय पर डॉक्टर अनंत कुमार से की गई भेंटवार्ता। भेंट की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती और बागवानी में आप फसल और बागवानी की भूख मिटाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, कई बार ये मिलावटी आपको मिल जाते हैं, तो शुद्ध उर्वरक की सही पहचान कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत कुमार साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो उर्वरक हैं उनकी शुद्धता की पहचान सही ढंग से कैसे करें?
2: किसान भाई बहनों नमस्कार। इस समय धान की फसल खड़ी हुई है, मक्का की है, बाजरा की है, इसमें आप अभी के जो खरीफ है उसको तो लगा ही रहे हैं, उसमें भी आप यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। दूसरा जो आने वाली फसल है रबी का, उसके बारे में हम लोग अभी मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग खेती किसानी करें जिससे कि उसमें लागत कम हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें सही उर्वरक का कैसे पहचान करें, क्योंकि गलत उपयोग करने से एक तो आर्थिक रूप से हानि भी होती है, दूसरा जो हमारी फसल है, हम चाहते हैं फसल हमारी अच्छी बर्बाद हो, लेकिन वो गलत उर्वरक के प्रयोग करने से हमारे आर्थिक रूप से हानि भी होती है और दूसरा उससे फसल की बर्बाद रुक जाती है।
1: तो शुरुआत करें कि सबसे ज्यादा यूरिया का प्रयोग होता है, तो यूरिया की शुद्धता की पहचान कैसे करें किसान भाई बहन?
2: यूरिया सफेद चमकदार कलर का एक समान गोल दानादार होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब उसे यूरिया के दाना को हथेली पर रख करके उसमें थोड़ा पानी डालेंगे तो आपको शीतलता यानी ठंडक महसूस होगी। और दूसरा एक महत्वपूर्ण और अभी है बात है कि यदि आप उसे गर्म तावे पे आप रखेंगे तो धीरे धीरे कर करके पूरा जो है ना उड़ जाएगा और उसमें कोई अवशेष नहीं बचेगा, जबकि उसमें यदि कोई मिलावट होगी तो उसमें अवशेष बचेगा तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारा यूरिया सही है या गलत है।
1: यानी अगर शुद्ध यूरिया है तो गर्म तावे पर रखने पर कुछ भी बचेगा नहीं,
2: अवशेष नहीं बचेगा उसमें।
1: डॉक्टर साहब, डीएपी की बात करें, यूरिया के बाद सबसे ज्यादा डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी खाद का प्रयोग होता है, तो इसकी शुद्धता की पहचान कैसे हो?
2: डीएपी की पहचान के लिए सर्वप्रथम आप उसे एक हथेली पे 3-4 दाना रख लें और उसमें चूना मिला दें। चूना मिला करके उसे हथेली पर रगड़ें, उसके बाद उसे थोड़ी देर के बाद आप सूंघे, असहनीय गंध होगा और उसे आप सूंघ नहीं पाएंगे,
1: यानी बर्दाश्त नहीं
2: हो पाएगा।
1: अगर शुद्ध है तो?
2: जी शुद्ध है तो, यदि शुद्ध नहीं है तो उसमें आपको कोई गंध नहीं आएगा। दूसरा यदि हम उसे गर्म तावे पर रखते हैं तो फूल जाएगा, लावे की तरह फूलेगा, जब वो उसमें कुछ दूसरा मिला रहेगा तो उसको फूलेगा नहीं। तीसरा सबसे है कि यदि उसे हम जूते के से एड़ी से रगड़ेंगे तो आसानी से टूटेगा नहीं और करकर की आवाज आएगी, यदि मिलावट है तो उसमें आपको महीन हो जाएगा और करकपन नहीं रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, यूरिया डीएपी की बात हो गई, अब सिंगल सुपर फास्फेट की बात कर

0: ली जाए जो SSP है, जिसका प्रयोग फास्फोरस और सल्फर की आपूर्ति के लिए होता है, तो इसकी शुद्धता की पहचान कैसे करें किसान भाई बहन?
1: सिंगल सुपर फास्फेट की पहचान के लिए सर्वप्रथम है कि यदि इसे गर्म तावे पर रखेंगे तो ये फूलेगा नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ, सबसे महत्वपूर्ण और किसान भाई यही है कि जो हमारा डायमोनियम फास्फेट है उसमें यही मिला देते हैं, उसमें जिससे किसान दोनों का कलर लगभग समान होता है, लेकिन दोनों में यही है कि वो यदि गर्म तावे पर डालेंगे तो उसमें फूलेगा नहीं, ऐसे समान बना रहेगा वो
0: सुपर फास्फेट।
1: सुपर फास्फेट, जबकि जो DAP है उसका दाना फूल जाता है।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे शुद्ध उर्वरक की सही पहचान के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 9760-940-402, 9760-940-402, 9760-940-402।
0: डॉक्टर अनंत कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और शुद्ध उर्वरक की सही पहचान कैसे करें किसान भाई बहन, ताकि

अभी आप जगदीश प्रसाद का राग अभोगी में गायन सुन रहे थे। तबले पर संगत की अनीस प्रधान ने, सारंगी पर थे लियाकत अली खान और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे संतोष कुमार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। इसी के साथ नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम भी यहीं समाप्त हो रहा है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में

0: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
2: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
1: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
3: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो बढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
1: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
6: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
5: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
7: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
5: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने

0: चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर तीन विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने सात शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। तीन से चार दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के पांचवें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जहां पे आपको मिलता है गीत संगीत और ज्ञान का बंपर एंटरटेनमेंट। लीजिए प्रस्तुत है नमस्ते बरेली। आज के नमस्ते बरेली के सुरीले और कर्णप्रिय सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 4 वर्ष से लगातार मलेरिया का डंक हुआ कमजोर। 7 वर्ष पहले 2019 में सबसे अधिक 46,000 केस आने के बाद शुरू हुई प्रभावी कार्रवाई। 20 सितंबर तक 2.5 लाख से अधिक मरीजों की जांच में 409 ही संक्रमित मिले। मित्रों, 7 वर्ष पहले 2019 में जिले में मलेरिया के 46,000 से अधिक मरीज आए, जो पूरे विश्व में रिकॉर्ड था। इसके बाद जिले में मलेरिया नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए और धीरे धीरे स्थिति में सुधार होता चला गया। पिछले 4 वर्ष में मलेरिया के मरीजों की संख्या घटी है और इस वर्ष भी मलेरिया अभी नियंत्रण की स्थिति में है। दोस्तों, 20 सितंबर तक 2.5 लाख से अधिक मरीजों की जांच में सिर्फ 409 में ही मलेरिया की पुष्टि हुई है। मलेरिया संक्रमण फैलाने का ये समय पीक पर है और जिस तरह से कम संख्या के केस आ रहे हैं, उससे विभाग का मानना है कि आंकड़ा 1,000 के अंदर ही रहेगा, जो कि संतोषजनक स्थिति होगी। मित्रों, इसी के साथ ही डेंगू अभी नियंत्रण में है। इस वर्ष अब तक 6 मरीजों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले 2025 में 47 और 2024 में 89 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई थी। तो हमारी तो यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।

घंटा घर की घड़ी ठीक करने के लिए आज आएगी टीम। स्मार्ट सिटी परियोजना में 87 लाख खर्च कर वर्ष 2022 से 23 में इस घड़ी का कराया था जीर्णोद्वार। मित्रों, हमारे शहर बरेली की पहचान शहर के कुतुबखाना स्थित घंटाघर के घड़ी को दुरुस्त करने के लिए बेंगलोर से विशेषज्ञों को बुलाया गया है। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि सोमवार को टीम शहर पहुंच जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि घड़ी 24 घंटे के अंदर दुरुस्त हो जाएगी। यहां के अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर भी रिपेयर करने वाले विशेषज्ञ बुलाए, लेकिन वो ठीक से घड़ी नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए बेंगलोर से विशेषज्ञों को बुलाया गया है। उल्लेखनीय है कि घंटा घर की घड़ी बंद होने के बाद जनता ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद नगर निगम ने इसको दुरुस्त करने के लिए तत्काल कुशल इंजीनियरों विशेषज्ञों को बुलाने के निर्देश दिए। मित्रों, अधिकारियों के अनुसार इससे पहले भी जब घड़ी में कमी आई थी तब भी बेंगलोर से ही विशेषज्ञों को बुलाया गया था। यह बात उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी परियोजना में 87 लाख खर्च कर ऐतिहासिक घंटाघर का वर्ष 2023 में जीर्णोद्वार किया गया था, लेकिन घड़ी बंद होने के कारण इस पहचान की चमक फीकी पड़ गई। इसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष था।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो नमस्ते बरेली देवेंद्र रावत के साथ। उमस ने किया बेहाल, बादल छाए रहने के आसार। दोस्तों, जिले में रविवार को मौसम ने लोगों को उमस से बेहाल कर दिया। सुबह हल्की धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन दोपहर तक बड़ी गर्मी ने और नमी ने जनजीवन को प्रभावित किया। अपने शहर बरेली का तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मित्रों, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 98% रहा। दोस्तों, होता क्या है कि हवा में नमी अधिक होने के से तापमान सामान्य रहने के बावजूद लोगों को अधिक गर्मी महसूस होती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अधिक आर्द्रता के कारण शरीर से निकलने वाला पसीना जल्दी नहीं सूखता है, जिससे उमस बढ़ जाती है और असहजता महसूस होती है। क्षेत्रीय मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक बरेली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है।

0: सुनते हैं सेहत की पाठशाला, लाया है दीपमाला।
1: लीजिए सुनिए दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला, लाया दीपमाला।
2: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
3: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2: बरेली शहर का सबसे किफायती आईसीयू, अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन आईसीयू,
4: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
2: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फॉलिस और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
3: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
2: 9837000048।
5: नमस्कार श्रोताओं, प्रोग्राम है सेहत की पाठशाला, लाया दीपमाला, और मेरे साथ मौजूद हैं दीपमाला हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: स्वागत है सब लोगों का।
5: डॉक्टर साहब, सांस फूलना एक ऐसी समस्या है जिसको कई बार तो छुपाया भी जाता है और कई बार बताया जाता है, तो क्यों ना आज सांस फूलने के बारे में आपसे जानकारी हासिल की जाए।
6: जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है।
5: डॉक्टर साहब, सांस फूलने की जहां तक बात है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
6: ठीक है, देखिए, सांस फूलने की वजहें तो 5 हो सकती हैं, लेकिन हम सबसे पहली 2 नॉर्मल वजहों पे, 2 बीमारियों से बात शुरू करते हैं।
5: जी।
6: पहली है एलर्जी या ब्रोंकाइटिस।
5: जी।
6: जैसे को एलर्जी, इसनोफीलिया या ब्रोंकाइटिस जिसे कहते हैं। और दूसरा है हृदय रोग।
5: अच्छा।
6: यानी कि कोरोनरी डिजीज, हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाना, हार्ट बड़ा हो जाना या हार्ट फैल जाना, जो आमतौर पर कहा जाता है। ये दोनों ही बीमारियां आज की तारीख में बहुत ज्यादा कॉमन है।
5: जी।
6: उसके बाद हम बात करेंगे मार तवम और सारी छोटी छोटी वजहें क्या हो सकती हैं सांस फूलने की।
5: जी।
6: तो नंबर 1 वजह जिसे हम लोग इसनोफिलिया या एलर्जी कहते हैं, ये आज की तारीख में बहुत से लोगों में देखी जा रही है। कभी कभी लोग एलर्जी को अस्थमा से कंफ्यूज कर जाते हैं। ब्रोंकल अस्थमा ऐसी कंडीशन होती है जो काफी लंबे समय तक चलती है, जिनको होनी होती है वो कम उम्र में ही हो जाती है, छोटे बच्चों में, और बड़ी उम्र में आने पे काफी हद तक कम हो जाती है। ब्रोंकल अस्थमा का परमानेंट ट्रीटमेंट कोई नहीं होता है, और उस समय के ब्रोंको डायलेटर लेके या सूखने वाले कैप्सूल लेके या दवाइयां लेके उसको काफी कंट्रोल में किया जा सकता है।
5: जी।
6: दूसरी प्रॉब्लम होती है एलर्जी, जो कि ब्रोंकल अस्थमा की तरह लगती है। इसमें होता क्या है, अक्सर लोगों को नाक सी राइनाइटिस होती है, नाक से छींकें आती है, मौसम बदला, परफ्यूम सूंघा, धूल पड़ी या कोई मिर्च हुई से छींकें आने लगती है। छींकें आने के बाद आवाज बैठ सकती है, और उसके बाद पूरा उनको सांस में सीटियां बजना और चलने फिरने पे सांस फूलने की दिक्कत शुरू हो जाती है।
5: अच्छा।
6: इसको कि ब्रोंकाइटिस कहते हैं।
5: जी।
6: ऐसी आजकल समस्याएं बड़ी उम्र के लोगों में जो मेट्रोपॉलिस में रहते हैं या ज्यादातर जिनका सड़क पे रहने का काम है, जो प्रदूषण से भी प्रभावित होते हैं, उसमें भी ब्रोंकाइटिस की समस्या बढ़ती जाती है।
5: जी।
6: और ऐसे लोगों में सोने पे सुहागा तब हो जाता है अगर वो स्मोकर्स होते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं। तो अगर कोई एलर्जी का पेशेंट या जिसके परिवार में एलर्जी की संभावना है, ऐसा पेशेंट बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू करेगा तो उसकी सांस बहुत तेजी से गड़बड़ होगी।
5: अच्छा।
6: और दूसरा कारण होता है सांस फूलने का, जो मिडिल एजेड लोगों में होता है, यानी कि 40-45 साल की उम्र के बाद के लोगों में होता है, वो होता है हृदय रोग की वजह से सांस फूलना।
5: अच्छा। हृदय रोग की वजह से किस तरह के लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब सांस फूलने के?
6: हमारा हृदय एक पंप है।
5: जी।
6: और उसका काम है खून को पंप करके पूरे शरीर में, खास तौर से फेफड़ों तक लेके जाना।
5: जी।
6: जहां पे उनमें ऑक्सीजन फिल होती है, और ऑक्सीजन लेकर के वो सारे शरीर में भी खून का पंप हार्ट ही करता है।
5: अच्छा।
6: तो अगर हार्ट की खुद की दीवारों की क्षमता कम हो जाए, ताकत कम हो जाए, और ऐसा होता है उन लोगों में जिनको ब्लड प्रेशर चल रहा होता है, और जो कहते हैं कि मैं तो अर्जुन की छाल खा के और कभी कभी दवाई खाता हूं, ऐसे ही ठीक चल रहा हूं, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है।
5: अच्छा।
6: उनमें अधिकतर हृदय फैल जाता है, उसकी दीवारें पतली हो जाती हैं और पंपिंग पावर कम हो जाती है। हृदय की पंपिंग पावर कम हृदय रोग हार्ट अटैक के बाद भी हो सकती है।
5: अच्छा।
6: हार्ट अटैक का मतलब हृदय की दीवारों में खून का दौरा अचानक रुक जाना, जिससे उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाएं और उनकी ताकत चली जाए।
5: अच्छा।
6: तो ज्यादा प्रेशर चलने की वजह से हार्ट को गुब्बारे की तरह फूल जाना, या दीवार में थक्के आने की वजह से हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाना।
5: जी।
6: या ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल हो या ब्लड कंट्रोल में भी हो तब भी शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ये बताया गया है कि अगर 5 किलो वजन बढ़ जाए तो हृदय को कम से कम आधा किलोमीटर ज्यादा पंप करना पड़ेगा, आधा किलोमीटर लंबी कैपिलरीज का, पतली नाड़ियों का जाल बढ़ जाएगा।
5: जी।
6: तो जरा सा वजन बढ़ने से और खास तौर से जो लोग

100.4 FM पर या आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला, लाया है दीपमाला। आइए

0: काफी ज्यादा भारी होते हैं, उन लोगों के हृदय को काफी ज्यादा
1: मेहनत
0: करनी पड़ती है और वो थक जाता है, फैल जाता है। ऐसे लोग की सांस जब फूलती है तो वो धूल धक्कड़ से नहीं फूलती है, वो एक तो चलने पर फूलती है, जीना चढ़ते हैं तो सीने में भारीपन लगने लगता है, उनके पैरों में सूजन आने लगती है क्योंकि हार्ट पंप करके पानी को नीचे से ऊपर नहीं ले जा पाता है, और सबसे बड़ा लक्षण होता है रात में सोने के 2 घंटे बाद

0: पंपिंग पावर कम है तो हार्ट वो लंग से पूरा पंप नहीं कर पाता है
1: जी।
0: तो लंग्स को ऐसा लगने लगता है जैसे उनकी सांस फूल रही है और ऑक्सीजन का प्रभाव कम हो जाता है।
1: ये तो बात रही डॉक्टर साहब, आपने मैकेनिज्म बताई, जो तरीका है वो बताया। कई बार कहते हैं कि हृदय का साइज बढ़ गया है, तो हार्ट का बढ़ना या साइज का बढ़ना ये क्या होता है?
0: देखिए, एक व्यक्ति के हार्ट का वजन होना चाहिए 120 ग्राम।
1: जी।
0: जब उसके अंदर खून भरा हुआ है और 105 या 100 ग्राम जब खून उसमें से निकला हुआ है।
1: जी।
0: अगर आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ चले, आदमी को खून की कमी हो या आदमी को थायराइड हो, तो फिर हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: जिसकी वजह से उसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं। कुछ समय तक तो दीवारें मोटी करके वो ज्यादा काम करने लगता है, मगर कुछ समय के बाद, खास तौर से जब मेल न्यूट्रिशन हो, पोषक तत्व पूरे ना हो
1: जी,
0: तो वो फैल के पतला हो जाता है। इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं।
1: अच्छा, इसी को हार्ट का साइज बढ़ना,
0: हार्ट का साइज बढ़ना कहते हैं। हार्ट का साइज बढ़ दरअसल वॉल्वुलर हार्ट डिजीज में भी हो सकता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन वो रेयर बीमारियां हैं आज की तारीख में। किसी के हार्ट का मेन वॉल्व या छोटा वॉल्व का मुंह पतला हो जाए तो उससे पीछे का हिस्सा फूल जाता है, वो पूरा हार्ट नहीं फूलता है, हार्ट का एक चैम्बर फूलता है और उसका इलाज ऑपरेशन होता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो कुछ खास वजह आपने बताई बीमारियों के नाम भी लिए, और भी इसके अलावा कोई वजह होती है सांस फूलने की?
0: देखिए, बिल्कुल, नंबर वन वजह सांस फूलने की होती है खून की या हीमोग्लोबिन की कमी होना।
1: अच्छा।
0: खास तौर से कम उम्र के बच्चों में अक्सर खून की कमी हो जाती है।
1: जी।
0: जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनको खून की कमी हो जाती है। जिनको बवासीर या दूसरी दिक्कतें होती हैं, जो लोग बिल्कुल प्योरली वेजिटेरियन होते हैं, जिनका खाना पीना ठीक नहीं होता, आयरन की कमी से या विटामिन B12 की कमी से उनको खून की कमी हो जाती है। जब खून की कमी को समझ लें, खून इस तरह से है, जैसे मान लीजिए बाल्टी से आप पानी निकाल रहे हैं बाहर
1: जी,
0: और अगर आप मग्गे की जगह आप छोटी ग्लेशिया यूज करने लगे तो आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल बार बार हाथ चलाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो रक्त की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है।
1: अच्छा।
0: तो उतना ही ऑक्सीजन बचाने के लिए उसको डबल काम करना पड़ता है
1: जी।
0: तो एनीमिया या खून की कमी होना सांस फूलने का
1: या
0: थकान होने का एक नंबर थर्ड कारण है।
1: इलाज के विषय में बताइए डॉक्टर साहब, चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सांस फूलना कई बीमारियों के साथ जोड़ा जाता है जैसा आपने बताया, इलाज कैसे होता है?
0: देखिए, अगर खून की कमी की वजह से सांस फूल रही है तो सबसे पहले आपको एक जांच CBC करानी होती है
1: जी।
0: उसमें RBC का साइज देखना होता है।
1: अच्छा।
0: अगर RBC का साइज बहुत छोटा हो गया है और खून की कमी है तो इस बात का लक्षण होता है कि शरीर में आयरन की कमी है, माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया जिसको कहते हैं
1: जी।
0: और अगर तब भी डाउट हो तो आप आयरन स्टडीज करा सकते हैं, खून में आयरन की मात्रा, खून में ट्रांसफरिन की मात्रा या टोटल आयरन बैरिंग कैपेसिटी, रक्त की आयरन को ले जाने की मात्रा।
1: अच्छा।
0: इनकी जांच करा के सिद्ध कर सकते हैं। और उसका इलाज वही होता है, आयरन वाली चीजें खाना। आयरन वाली चीजों का मतलब ये नहीं कि ब्लेड खाने लग जाएं या चम्मच खाने लग जाएं, उसका मतलब आयरन, एलिमेंटल आयरन जिसमें ज्यादा हो, या तो आयरन के कैप्सूल ले लें, टैबलेट ले लें। लेकिन आयरन ओरल खाने से अक्सर लोगों को गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी की दिक्कत होती है। आयरन अगर बहुत कम है, 5 ग्राम से कम है या 6 ग्राम से कम है या विशेष परिस्थितियां हैं, तो आयरन के इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। आजकल जो है माल्टोस आयरन आता है, जो कि 1 ग्राम तक भी एक ही दिन में लगाया जा सकता है
1: जी,
0: जिससे काफी तेजी से आयरन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है
1: जी।
0: और जो रोजमर्रा के खाने की चीजें हैं, जैसे एक खजूर, अनार, चुकंदर
1: जी,
0: गुड़, पालक, इन सब चीजों में आयरन की बहुत यात्रा होती है
1: जी।
0: तो इन चीजों को खाने से भी आयरन बढ़ाया जा सकता है।
1: अच्छा।
0: दूसरा कारण खून की कमी होने का होता है विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी होना। CBC कराएं तो इसमें RBC का साइज बड़ा हुआ दिखाई देता है, तो कहते हैं मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया।
1: अच्छा।
0: मतलब RBC का साइज बड़ा हो गया, रंग कम है, हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन साइज बहुत बड़ा है। ऐसा B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है
1: जी।
0: और इसमें बस B12 के इंजेक्शन लगा लो तो मरीज बड़ी तेजी से हीमोग्लोबिन ठीक हो जाती है।
1: आपने जो हृदय की बात बताई, हार्ट के विषय में जो कहा, अगर उस तरह के मरीज हैं, उस तरह की समस्या है, तो उसका इलाज किस तरह होता है? ऑपरेशन होता है या फिर कुछ और इलाज है?
0: देखिए, अगर वाल्व की वजह से हृदय फैल के बड़ा हुआ है, हृदय का चैम्बर, तो वाल्व को खोलना पड़ेगा, उसके लिए ऑपरेशन या बैलून वाल्वोप्लास्टी की जरूरत पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: लेकिन पूरा अगर हृदय ही फैल के बड़ा हो गया है तो उसमें हैं तो कई सारे ऑपरेशन, लेकिन वो अनप्रैक्टिकल हैं और काफी ज्यादा लागत के हैं, विषम परिस्थितियों में ही करे जाते हैं
1: जी।
0: अगर हृदय फैल के बड़ा हो गया है तो तो कुछ ऐसी दवाइयां जो हृदय की पंपिंग पावर को ठीक करती हैं, उनको देकर के कुछ समय

0: के अंदर हार्ट की पंपिंग पावर को ठीक करा जा सकता है
1: जी।
0: और दूसरा जो छोटे कारणों हीमोग्लोबिन की कमी होना, आयरन की कमी होना, इन सब चीजों को कट करके भी मरीजों को आराम दिया जा सकता है
1: जी। सीओपीडी एक बीमारी का नाम कई बार लिया जाता है सर, सीओपीडी के इलाज के विषय में आपसे जरूर जानना चाहेंगे।
0: सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज उन लोगों में होती है जो स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू करते हैं, या जो ऑर्गेनिक डस्ट को एक्सपोज होते हैं, कपास करने वाले, कोयले की खान में काम करने वाले
1: जी,
0: पाउडर जिनके पास बार बार पड़ता हूँ, उन लोगों को न्यूमोकोनियसिस की वजह से और स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी होती है। सीओपीडी का मतलब यह है कि जो फुसफुस धमनियां होती हैं, एल्वेलाई होते हैं
1: जी,
0: सबसे आखिर में बहुत छोटे छोटे अंगूरों के दाने के बराबर, अंगूरों जैसे बिल्कुल छोटे छोटे सुई के नोक के बराबर एल्वेलाई होते हैं, जिनके फूलने और पिचकने से हवा अंदर और बाहर आती है
1: फेफड़ों में,
0: फेफड़ों के अंदर
1: जी।
0: देखिए ना, हमारे जो सांस लेने की गली है, ये टेटुआ है, गला है, मुंह से टेटुए तक आई, इसके टेटुए के दो हिस्से हो गए, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाले के 5 हिस्से, लेफ्ट साइड वाले के 4 हिस्से, फिर उसके बाद 4 के 4 और 4 के 4 और 4 के 4, ऐसे करके 30-32 टाइम ये नाड़ियां डिवाइड होती हैं
1: जी।
0: और आखिर में जाकर जो सबसे छोटी जो रास्ता होता है उसको एल्वेलाई कहते हैं, उसमें सिर्फ बहुत पतली सी स्किन की मेम्ब्रेन होती है जिसके फूलने और निकलने से हवा अंदर और बाहर जाती है
1: जी।
0: तो अगर इनकी ये मेम्ब्रेन्स या झिल्लियां मोटी हो जाएं, जो कि सीओपीडी में होता है, या फैल के बड़ी हो जाएं, या जो आखिर के 3-4-5 के गुब्बारे हैं वो टूट के बड़े गुब्बारे बन जाएं, जिसको इम्फाइसीमा कहते हैं
1: जी,
0: तो या उनके अंदर सूजन आ जाए, बलगम आने लगे, जिसको कि ब्रोंकाइटिस कहते हैं
1: जी,
0: तो ऐसी स्थिति को सीओपीडी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: ऐसे व्यक्तियों का परमानेंट इलाज नहीं होता है, उनको सबसे पहले तो स्मोकिंग या दूसरे कारण जिसकी वजह से लंग को डैमेज है उनको छोड़ देना चाहिए
1: जी।
0: और बार बार निबलाइज करने से और ब्रोंकोडायलेटर दवाइयां लेने से, फेफड़े को खोलने वाली दवाइयां लेने से उनको सांस में आराम मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, चूंकि समय हमारे इस कार्यक्रम का सीमित है, तो क्या खास बात बताना चाहेंगे जो सांस फूलने के मरीज हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं एक और बात बताना चाहूंगा, एक और खास वजह होती है खास तौर से यंग लड़कियों में या स्टूडेंट्स में, जिनमें मानसिक तनाव बढ़ने की वजह से
1: जी,
0: जो हाइपर वेंटिलेट करने लगते हैं, मतलब तेज तेज सांस लेने लगते हैं, तेज तेज सांस लेने से उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हाथ पर बैठने लगते हैं और सांस फूलने लगती है
1: जी,
0: तो स्ट्रेस की वजह से भी फूल सकती है।
1: अच्छा।
0: और इसके अलावा मैं सारे अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि हर सांस फूलने को आप इसनोफिलिया मत समझिए, हर सांस फूलने को दमा या सांस की दिक्कत मत समझिए, सांस फूलने के बहुत सारे कारण होते हैं। सांस फूल रही है तो अपने लंग फंक्शन टेस्ट PFT कराएं और इको जरूर कराएं, इन दो जांच कराने से आपको बिल्कुल सटीक इलाज मिलेगा
1: जी। अगले कार्यक्रम में डॉक्टर साहब कुछ और जानकारी के साथ हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही, सुनते रहिए सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला।

सेहत की पाठशाला लाया है दीपमाला। अभी आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्हा भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और अब आपको सुनवा रहे हैं कॉकटेल 2 फिल्म से प्रीतम और अरिजीत सिंह का गाया ये गीत। गीतकार और संगीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने भी इस गीत को गाया है और लिखा भी है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतकार है प्रीतम।

जब तक है जान, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं राघव माथुर और शिल्पा राव की आवाजों में, गुलजार का लिखा गीत, ए आर रहमान का संगीत।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम चुतलोक की आखिरी प्रस्तुति, मैं प्रेम की दीवानी हूं फिल्म से। शान ने इस गीत को गाया है, देव कोहली का लिखा गीत है और अनु मलिक का संगीत।

मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म का गीत आप शान की आवाज में सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होने जा रहा है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार। आप सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित रहेगा अभिनेत्री करीना कपूर पर।

0: विविध भाव।
1: अभी आपने सुने विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है।

0: जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50।
1: जान है तो जहान है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र कुमार मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार।
2: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, MBBS MS, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ।
3: प्यारे श्रोताओं, मेरा सप्रेम नमस्कार आप सभी लोगों को।
4: डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है, बढ़ती उम्र में मोतियाबिंद की एक समस्या है और समाधान भी है। तो पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे श्रोताओं को बताएं कि मोतियाबिंद है क्या।
3: मैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट, फोकस नेत्रालय आई हॉस्पिटल बरेली से आज फिर आपसे जुड़ी हुई हूँ। बढ़ती उम्र के साथ मोतियाबिंद होता है, ये बात सही आपने बिल्कुल कही, लेकिन मैं ये और कहूंगी कि बढ़ती उम्र के साथ आंख में सिर्फ मोतियाबिंद ही नहीं होता है, कुछ कुछ और भी बीमारियां होती हैं जो कि होती हैं, जैसे कि पास का चश्मे का नंबर आना, काले पानी की समस्या, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन और कई तरीके से जो डायबिटिक या हाइपरटेंसिव लोग होते हैं उनके आंखों में डायबिटिक या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ऐसी अन्य कई सारी बीमारियां भी हैं जिसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मोतियाबिंद जो है ये उम्र की वजह से होने वाला एक बदलाव है, वो क्या है।
4: हाँ, मोतियाबिंद क्या है, ये क्या होता है, हुआ है, डर है या बीमारी है, क्या है।
3: हम सबको पता है जैसे एक कैमरा होता है, उस कैमरे में एक लेंस होता है और एक उसमें फिल्म लगी हुई होती है। वो लेंस के माध्यम के से उसकी मदद से उस फिल्म पे फोटो खींची जाती है और वो फिल्म हम डेवलप करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी आंख है, हमारी आंख में एक लेंस होता है, उस लेंस के माध्यम से जो भी रोशनी होती है वो हमारी आंखों के पर्दे पर आती है और पर्दे से हमारे दिमाग तक जाती है, जिससे हमारे को किसी भी चीज के बारे में पता चलता है। ना तो हमें उस चीज के बारे में पता चलता है बल्कि वो किस रंग का है, कितना चौड़ा है, कितनी दूरी पे रखा है, इन सब बातों का भी हमें पता चलता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, आंख का एक अंश होता है जिसको हम आंख का लेंस कहते हैं और ये लेंस जो है ये बहुत ही छोटा सा लेंस होता है जो कि मात्र 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर के बराबर सा होता है जी। ये पतला होता है बचपन में और धीरे धीरे इसके चारों तरफ, जैसे आप लेडीज जो है वो सर्दियों में आपने देखा होगा अक्सर गांव में बहुत सारी लेडीज जो है ना वो ऊन का गोला बनाती रहती है, ऊन का गोला बनाती रहती है, उसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। उसी तरीके से ये आंख का लेंस होता है जो कि गोले के तरीके से जिसके रेशे जो है लिपटते चले जाते हैं और ये लेंस पूरी जिंदगी मोटा होता ही चला जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। तो ये होता है आंख में पड़ने वाला एक लेंस, है ना, और इस लेंस को में भी उम्र की वजह से बदलाव होने लगते हैं, जिससे क्या कहते हैं हमारी आंख में मोतियाबिंद बनता है, जिसको आम भाषा में सफेद मोतिया भी कहते हैं। मोतियाबिंद सफेद मोतिया होता है, इसको काले मोतिया से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, जिसको समलवाई या ग्लोकोमा भी कहा जाता है। तो जैसे उम्र बढ़ रही है, हमारी शरीर में जो है वो और भी बदलाव हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, उसी तरीके से लेंस सफेद हो रहा है। बाल के सफेद होने से हम कहते हैं कि हाँ हमारे बाल सफेद हो गए, लेंस के सफेद होने को हम कहते हैं सफेद मोतिया या फिर मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। तो जैसे बाल प्रोटीन से बना होता है, उसी तरीके से लेंस भी प्रोटीन से बना होता है और उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में ताकत की कमी के साथ साथ ये प्रोटीन जो है ये सिकुड़ने लगती हैं। जब ये प्रोटीन हमारे आंख में सिकुड़ने लगती हैं तो हमारे जो लेंस के जो फाइबर्स हैं वो फाइबर्स जो कि ट्रांसपेरेंट थे पहले, यानी कि पारदर्शी थे, वो पारदर्शी ना होके अपने पारदर्शिता खो देते हैं, जिससे हमारा लेंस जो है वो सफेद होने लगता है और लेंस के सफेद होने से रोशनी पर्दे तक नहीं पहुंच पाती है और जब रोशनी पर्दे तक नहीं पहुंच पाती है तो हमें धुंधलापन आ जाता है और हमें दिखाई कम देने पड़ता है। तो ये होता है मोतिया हमारी आंख में।
2: डॉक्टर साहब, लोगों की धारणा है कि मोतियाबिंद जब पक जाता है उसके बाद ही ऑपरेशन करवाना चाहिए, उससे पहले नहीं। आप क्या कहती हैं मोतियाबिंद के बारे में।
3: बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही आपने अहम

0: सवाल पूछा, और सबसे जरूरी ऑपरेशन के सक्सेस के लिए भी यही सवाल है कि हम ऑपरेशन कब कराएं। पुराने जमाने में जब चीरा लगता था, टाके लगते थे, उस जमाने में मोतियाबिंद को पकाया जाता था। आजकल बिल्कुल ही टेक्निक बदल चुकी है। आजकल जो है, क्या कहते हैं, आप जो हैं वो दूरबीन द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। तो जैसे कि आप सोचे कि पहले आपको टाइम देखना होता था तो आप अपने हाथ की तरफ घड़ी को घुमाते थे और समय को देखते थे, और
1: जी
0: आजकल क्या करते हैं, मोबाइल को उठा लेते हैं, है ना।
1: जी
0: तो ये जो है, समय के साथ साथ हम बदल चुके हैं। आजकल आपने बहुत ही कम लोगों को देखा होगा कि समय पूछो तो वो अपना हाथ घुमा के घड़ी में देखेंगे कि कितना समय हो रहा है। उसी तरीके से मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी समय के साथ साथ बदल चुका है।
1: डॉक्टर साहब, घड़ी तो पहनते नहीं हैं लेकिन मोबाइल को जेब से निकालते हैं और टाइम देखते हैं, क्या
0: मोबाइल जेब
1: बात
0: से कहाँ निकालते हैं, मोबाइल तो हाथ में ही रहता है हमेशा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
0: चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, मोबाइल जो है वो हमारे हाथ में ही रहता है, और उसकी वजह से हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन दर्दनाक होता है? ये भी प्रश्न उठता होगा लोगों के दिलों में, खासतौर पर
0: हाँ,
1: श्रोता सुनते होंगे कि ऑपरेशन होता है आंख का वो भी। जी
0: नहीं, और जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन चीरे से लग होता था, जिस जमाने में चीरा लगता था उस जमाने में इंजेक्शन लगता था, इंजेक्शन से आंख को सुन किया जाता था और फिर ऑपरेशन हो जाता था, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन अब जब दूरबीन वाला ऑपरेशन किया जाता है तो दूरबीन वाले ऑपरेशन में इंजेक्शन नहीं लगता है, आप क्या कहते हैं, बिना इंजेक्शन बिना पट्टी के ऑपरेशन किया जाता है, और एक छोटे से छेद द्वारा किया जाता है। आंख में दर्द मोतियाबिंद के ऑपरेशन में मान के चलिए इतना ही होता है जितना मच्छर काटने से होता है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि क्या कहते हैं, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में दर्द होता है या कोई परेशानी होती है। लेकिन आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, बहुत लोग जो हैं वो आज भी इसी धारणाओं में पड़े हुए हैं और वो यही कहते रहते हैं कि मोतियाबिंद अभी पका नहीं, हमारे को दिखाई दे रहा है, हमारे को दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि क्या कहते हैं, हमें कब ऑपरेशन कराना चाहिए। तो ये जो है, ऑपरेशन बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होता है, ठीक है। दर्द सिर्फ आप मान के चलिए इतना दर्द होता है जितना आपको मच्छर काटते हैं। तो वैसे तो आजकल के मच्छर भी हाइब्रिड हो गए हैं, और ये जो हाइब्रिड मच्छर हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होता है। या फिर ये कहूँ मैं कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होता है, इतना जरूर कहूंगी कि हाँ, उतनी परेशानी जरूर होती है जितनी परेशानी एक मच्छर काटने की होती है।
1: तो मच्छर भी हैरान होगा कि ये दर्द होता ही नहीं
0: हाँ, तो
1: है।
0: मच्छर वैसे तो आजकल के मच्छर भी थोड़े हाइब्रिड हो गए हैं, तेज हो गए हैं, उनके मच्छर के काटने से काफी लाली होने लगी है।
1: जी
0: या फिर ये कहिए कि हम लोग सेंसिटिव इतने हो गए हैं कि हम लोग के हाथ पैर में लाली ज्यादा हो जाती है। तो लेकिन बस उतना ही दर्द होता है जितना एक छोटा सा मच्छर आपकी, या फिर सुई लगती है आपको
1: जी
0: और
1: जी
0: सुई से क्या कहते हैं, जरा सी सुई से ब्लड निकाला जाता है सैंपल के लिए, उतना ही दर्द होता है, उससे ज्यादा दर्द नहीं होता है। तो शरीर का सबसे सेफ ऑपरेशन आंख का ऑपरेशन माना गया है कि मतलब जितने भी ऑपरेशन है उनमें क्या कहते हैं, जो भी है, लेकिन आंख के ऑपरेशन में 99% सक्सेस रेट है। मतलब कि जैसे अगर कहेंगे, कई बार ऑपरेशन के बाद कोई डॉक्टर कहता है अरे सर्जरी फेल हो गई, लेकिन मोतियाबिंद के आजकल टेक्निक इतनी बेहतर हो गई है कि इसका सक्सेस रेट जो है वो 99%
1: मतलब डॉक्टर साहब, ये होगा कि वो एक कहावत है ना कि मर्द के दर्द नहीं होता है, तो महिला हो या कोई भी, दर्द बिल्कुल नहीं होगा और ऑपरेशन हो जाएगा।
0: बिल्कुल सही है, आपने पकड़ा इस चीज को।
1: डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या मोतियाबिंद को रोका जा सकता है कि कोई ड्रॉप ऐसी हो? लोग सोचते होंगे कि मोतियाबिंद ना हो।
0: बस यही धारणाओं को बदलने के लिए हम बार बार मिलते रहते हैं और मैं बार बार आपसे बातें करती रहती हूँ। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि फिलहाल आजकल की तारीख में मोतियाबिंद के काटने के लिए कोई ड्रॉप नहीं है कि उससे मोतियाबिंद बदल जाए। मोतियाबिंद उम्र का बदलाव है, जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप अपनी उम्र बढ़ना नहीं रोक सकते, है ना। उसी तरीके
1: जी
0: से आप अपने बालों को सफेद होना नहीं रोक सकते, ये आपके हाथ में नहीं है कि अगले 1 महीने के बाद आपकी आप क्या कहते हैं बाल कितने सफेद होंगे, आप नहीं बता सकते हैं। आप नहीं बता सकते हैं कि आपकी झुर्रियां आएंगी कि नहीं आएंगी, वो तो आनी ही है, कब आनी है, कितनी आनी है, ये भी आपको नहीं पता है। उसी तरीके से मोतियाबिंद उम्र का ही बदलाव है, मोतियाबिंद शरीर का ही एक हिस्सा है। जैसे शरीर में और बदलाव हो रहे हैं, वैसे ही लेंस में भी बदलाव हो रहा है और मोतियाबिंद बन रहा है। पहले थोड़े से रेशे सफ़ेद होते हैं, फिर और रेशे सफ़ेद होते हैं। जब थोड़े से रेशे सफ़ेद होते हैं तो उसको कच्चा मोतिया कहते हैं, जब और रेशे सफ़ेद होते हैं तो मोतियाबिंद ऐसा कहते हैं कि पकना शुरू हो गया है, और फिर जब सारे रेशे सफ़ेद हो जाते हैं तो कहते हैं कि मोतियाबिंद पक गया है। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब आपकी रोशनी, मोतियाबिंद पक्का हो या कच्चा उससे मतलब नहीं है, आपकी रोशनी कम है तो आपको ऑपरेशन कराना है। आजकल शरीर में आपके बाल काले नहीं होंगे अपने आप से जब तक आप कलर नहीं करेंगे, आपकी झुर्रियां सही नहीं होंगी, आप वापस जवान नहीं होंगे, लेकिन एक शरीर का बदलाव ऐसा है कि ऑपरेशन द्वारा आप वापस जो है 24-25 साल की उम्र में वापस जा सकते हैं।
1: इसका मतलब ये हुआ कि अब
0: आंखें जवान होती हैं,
1: आंखें जवान होती हैं मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद,
0: मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद
1: बिल्कुल आंखें जवान हो जाएंगी,
0: आंखें जवान हो जाएंगी।
1: फिर लेंस की बात आती है, आंखों में जो लेंस क्या काम करता है, जो आप लेंस डालते हैं
0: आंखों में, जो लेंस है वो उसी तरीके से लेंस है जिस तरीके से भगवान ने हमको आंख में लेंस दिया है, क्योंकि बिना लेंस के तो पर्दे पे फोकस होगा ही नहीं ना। तो क्या कहते हैं, लेंस का यही काम है कि पर्दे पे वो फोकस करे जो भी रोशनी आ रही है। तो जिस तरीके से भगवान ने लेंस दिया है वो लेंस उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता है इंसान का बनाया हुआ लेंस, लेकिन उसी तरीके से लेंस को फोकस कर, रोशनी को फोकस करने का काम कर रहा है।
1: और कार्यक्रम भी आप सुन रहे हैं फोकस नेत्रालय के सौजन्य से,
0: और फोकस आपकी आंख में फोकस बढ़ाने का काम कर रहा है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए आम तौर पर, ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: आंखों की देखभाल के लिए मैं कहूंगी कि दिन में सिर्फ एक बार, बहुत बार भी नहीं, दिन में सिर्फ एक बार स्वच्छ और ठंडे पानी से आंख को धो लेना चाहिए। जब हम आंख को एक बार ही धो लेते हैं वो काफी होता है आंख को साफ रखने के लिए। दूसरी चीज, बार बार हाथों को आंख पे ना लेकर जाएं। कुछ लोगों की आदत होती है आंख को मसलने की, कुछ लोगों को आदत होती है कि मतलब हाथ जो है वो आंख पे चला जाता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि बार बार हाथ जो है आंख पे ना जाए। तीसरी चीज, आंखों का व्यायाम करें, और चौथी चीज, एक अच्छा भोजन खाएं ताकि हमारी आंख में, शरीर में ताकत बनी रहे और ये उम्र के बदलाव ना हो।
1: डॉक्टर करुप्रिया जी, आपने बताया था कि ठंडे पानी से, ठंडे पानी क्या फ्रिज का हो, बर्फ वाला हो या कैसा पानी हो, ये तो बताइए।
0: साफ स्वच्छ पानी, बिल्कुल ठंड बर्फ का पानी नहीं, और गर्म पानी का तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है, है ना। तो गर्म पानी से जो लोग नहाते हैं उनकी आंख में ज्यादा सूखापन रहता है, या जो लोग गर्म पानी से मुंह धोते हैं उनकी आंख में ज्यादा सूखापन रहता है और ज्यादा आंखें लाल रहती हैं, बजाय कि वो लोग जो कि साफ स्वच्छ पानी से, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी होता है, उस नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से, ठंडे मतलब कि हल्का सा ठंडा, नॉर्मल जो पानी, जो टंकी का पानी आता है वो हल्का ठंडा ही होता है, बस उतना ही।
1: डॉक्टर साहब, जो अक्सर कहा जाता है कि दूरबीन विधि से तो लोग समझ गए, लेकिन ये फेको विधि क्या होती है?
0: आम भाषा में फेको इमल्सिफिकेशन को छोटा करके फेको कह दिया है, और फेको को समझाने के लिए लेजर कह दिया है, और लेजर को ही दूरबीन कह दिया है। तो ये बस 4-5 शब्द हैं उसी विधि के लिए, बस लोगों को समझाने के लिए अलग अलग चीजों के। जैसे एक मिठाई के 4 नाम होते हैं ना, हम तो रसगुल्ला बोलते हैं, वो रसगुल्ला बोलते हैं, तो वही मिठाई। उसी तरीके से आप चाहे दूरबीन वाला बोलो, चाहे उसको लेजर बोलो, चाहे उसको फेको बोलो, बात एक ही है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बढ़ती हुई मोतियाबिंद जो होता है उसका ऑपरेशन हो जाता है, नया जीवन मिलता है, फिर नए जीवन को बरकरार रखने आंखों के लिए क्या खाएं, क्या एहतियात बरतें ऑपरेशन के बाद, ये बताइए।
0: ऑपरेशन के बाद फौरन ही हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम अपनी आंखों में सही समय से पहले तो ड्रॉप डालें। दूसरा, आंख में पानी ना जाए हफ्ते भर के लिए, आप गर्दन से नीचे नहा सकते हैं। फिर आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि धूल, मिट्टी, धुआं, डायरेक्ट हवा, ये सब चीजें भी आंख में ना जाए, जिसके लिए आपको काले चश्मा दिया जाता है। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी ऑपरेशन के बाद तो हमारी हफ्ते भर के अंदर, मतलब हफ्ते भर तो कहे ज्यादा बता रही हूं मैं आपको, तीसरे से चौथे दिन आप अपने 90% सारे काम कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, इसलिए आजकल के ऑपरेशन में इतने सारे परहेज

0: नहीं है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि अंधेरे कमरे में बैठे रहो, धूप में मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल मत देखो, ये सब कुछ नहीं है। आप अपना ऑपरेशन कराइए और जाके मूवी देखिए, कोई फर्क नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
1: मतलब ये हुआ अपने एक समस्या ये दूर कर दी कि मोबाइल के लिए तड़प रहे थे, 3-4 दिन नहीं देख पा रहे थे, 2-3 महीने से सही से, क्योंकि मोतियाबिंद था। अब ऑपरेशन हो गया है तो 2-3 दिन बाद मोबाइल भी देख सकते
0: आंख
1: हैं।
0: और बढ़िया हो गई है और आंख और जवान हो गई है तो उसका पूरा काम कर रही है, तो उसका काम हमें करने देना चाहिए उसको।
1: बिल्कुल। अच्छा, खाना पीना कैसा होना चाहिए? जी
0: कोई परहेज नहीं है हमारी तरफ से। आप जो हैं क्या कहते हैं, कुछ भी खा सकते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद। जो आपका नियम चल रहा है, जो आपको चीजें अच्छी लगती हैं, वो आप सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा हल्का फुल्का ही रखें, ज्यादा ऐसी चीज ना खाएं जिसकी वजह से उल्टी हो या जिसकी वजह से ठंड लगे या जिसकी वजह से खांसी आए। क्योंकि उल्टी और खांसी से क्या क्या या कब्जी हो जाती है, तो उल्टी खांसी और कब्जी से आंख का प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसी समस्या ना हो, आप नॉर्मल रूटीन का सब खाना खा सकते हैं। ये भी एक धारणा है कि मिर्च वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: जी,
0: है ना? तो मिर्च वाला हल्का फुल्का जो नॉर्मल है वो आप खा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है।
1: मतलब टिक्की भी खा सकती हैं
0: हाँ
1: महिलाएं?
0: बिल्कुल, लेकिन बनाएंगे तो वही, अगर हमारा ऑपरेशन होगा
1: जी
0: तो बनाना तो किसी और को पड़ेगा ना।
1: डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत सही कहा कि टिक्की वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन वाला खा सकता है लेकिन बना नहीं सकता, मतलब छौंके से दूर रहना चाहिए कुछ दिन तक।
0: शरीर में ताकत रहेगी तो आंख, शरीर में उम्र के बदलाव नहीं होंगे और मोतियाबिंद भी लेट बनेगा।
2: बहनों भाइयों, आपको बता दें, फोकस नेत्रालय में कॉर्निया प्रत्यारोपण से बरेली में जरूरतमंदों को मिलेगी नई रोशनी। नेत्रदान जीवन के बाद भी किसी की दुनिया रोशन करने का अवसर। फोकस नेत्रालय को नेत्र प्रत्यारोपण, नेत्र बैंक और नेत्र प्राप्ति केंद्र के संचालन की मिली मंजूरी। राजेंद्र नगर स्थित फोकस नेत्रालय में अब कॉर्निया प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो गई है। संस्थान में 19 और 20 अगस्त को लगातार 2 सफल कॉर्निया प्रत्यारोपण किए गए। इसके साथ ही नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंद मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल शुरू की गई है। फोकस नेत्रालय को संबंधित प्राधिकरण की ओर से मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत कॉर्निया प्रत्यारोपण नेत्र बैंक और नेत्र प्राप्ति केंद्र के संचालन की अनुमति दी गई है। नेत्रालय की विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अनुप्रिया अग्रवाल और उनकी टीम ने बताया कि कॉर्निया आंख के सामने की पारदर्शी परत होती है, और अब विस्तार से बता रही हैं डॉक्टर अनुप्रिया अग्रवाल।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुप्रिया, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट फोकस नेत्रालय आई हॉस्पिटल बरेली से। आज हम बात करेंगे आंख के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, जिसके बिना हमारी आंख की रोशनी संभव नहीं है, और वो उसको कहते हैं कॉर्निया। जब भी हम कोई आंख देखते हैं, हमें बीच में एक काला या भूरा हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन उस काले या भूरे हिस्से के सामने एक पारदर्शी परत होती है, जो कि कॉन्टैक्ट लेंस की तरीके से होती है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो आसान भाषा में कॉर्निया क्या है? कॉर्निया हमारे आंख के सामने वाली खिड़की है। जिस तरीके से घर की साफ कांच की खिड़की से हम बाहर की दुनिया देख सकते हैं, उसी तरीके से हमारी आंख का साफ और पारदर्शी कॉर्निया हमें देखने में मदद करता है। लेकिन अगर ये खिड़की गंदी हो गई, धुंधली हो गई, उस पर कोई निशान पड़ गया या उस पर कोई क्रैक आ गया, तो हम बाहर की दुनिया ठीक से नहीं देख पाएंगे। उसी तरीके से अगर हमारी कॉर्निया में बीमारी, चोट, इन्फेक्शन, सूजन, किसी की वजह से भी हमारी पुतली सफेद हो गई, तो हम भी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगे, और इसको हम कहते हैं कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, यानी कि कॉर्निया की से होने वाले आंख में अंधापन।
1: जी,
3: अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे देश में लगभग 11 लाख लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से प्रभावित हैं, यानी 11 लाख लोगों को कॉर्निया की वजह से दृष्टिहीनता है। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अगर उनको डोनर कॉर्निया मिल जाती है या उनकी आंख में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो उनकी दृष्टि आना संभव है। लेकिन हमारे पूरे देश में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट

0: इतने नहीं हो पा रहे हैं और नए रिकॉर्ड्स के अनुसार मात्र 25,000 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स ही हो पाए हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसका क्या मतलब है जो इतना कम?
0: इसका मतलब ये है कि अगर हमारी आंख पूरी की पूरी स्वस्थ है और कॉर्निया ही सिर्फ खराब है तो कॉर्निया बदली जा सकती है। कॉर्निया अगर मिलती है तो हम कॉर्निया को बदल कर आंख के अंधेपन, दृष्टिहीनता को सही कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और हम फोकस नेत्रालय में अब एक आई बैंक शुरू कर चुके हैं जिसके माध्यम से लोग जाने के बाद आंख अपनी दे सकते हैं और वो लोग जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है वो आंखों में प्रत्यारोपण कराकर अपनी रोशनी वापस देख सकते हैं। एक बच्चा अपनी माँ को देख सकता है, एक माँ अपने बेटे को देख सकते हैं दोबारा से। तो कॉर्निया खराब होती क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण कारण में से एक है कॉर्निया में इन्फेक्शन, जो कि आम भाषा में आंख में गंभीर संक्रमण या कॉर्नियल अल्सर जिसको कहते हैं वो होता है। कई बारी खेतों में काम करते समय, घर पर काम करते समय आंख में पौधा, लकड़ी, मिट्टी, कोई बर्तन, कोई तेल की छींटा या ये छोटी छोटी आंख में जाने वाली वस्तु, ये छोटी छोटी आंख में लगने वाली चोट कई बारी कॉर्नियल अल्सर पैदा कर देती है। कॉर्निया में अल्सर हो जाता है और हमारी आंख कॉर्निया का अल्सर तो ठीक हो जाता है लेकिन उसके बाद एक सफेदी धब्बा पड़ जाता है और ये सफेद धब्बे की वजह से कॉर्निया सफेद हो जाती है, यानी आंख की पुतली सफेद हो जाती है। दूसरा एक बड़ा कारण है आंख में चोट लगना। किसी भी नुकीली चीज से, किसी भी काम करते वक्त किसी औजार से या हाथ लगने की वजह से खेलते समय हमारी आंख की पुतली पर अगर चोट लगती है तो हमारी पुतली सफेद हो जाती है। कभी कभी कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि जन्मजात होती हैं, हेरिडिटरी होती हैं, उनकी वजह से भी कॉर्निया सफेद होने लगती है और हमारी आंख की रोशनी कम होने लगती है। लेकिन ये सारी चोटें, ये सारी बीमारियां, ये सारे संक्रमण होने के बाद भी अगर हमारी आंख में पुतली का प्रत्यारोपण संभव होता है तो हम दोबारा से देख सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्या कॉर्निया की वजह से जो अंधापन होता है उसका इलाज हो सकता है?
0: हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कॉर्निया से हुई जो अंधापन है या दृष्टिहीनता है उसके बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका इलाज संभव है, लेकिन ये निर्भर करता है कि हमने जाने के बाद क्या कॉर्निया दी या आंख डोनेट करी या नहीं। जाने के बाद अगर अपनी आंखें देकर जाते हैं तो हम यादें ही नहीं रोशनी भी विरासत में देकर जाते हैं। कितना अच्छा होता है अगर हम जो है जाने के बाद भी जो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन ये अंग हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखों से दूसरी को, दुनिया को रोशन करें तो कितना अच्छा महसूस होगा। कभी करना कभी ये तो विचार आया होगा कि हम दुनिया में ऐसा क्या काम करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। तो उसमें एक काम ये भी हम जोड़ सकते हैं कि हम जाने के बाद अपनी आंखों को देकर जाएं। अगर हम अपनी आंखें देकर जाते हैं तो हमारी आंखों से कोई और व्यक्ति देखेगा और उस व्यक्ति जीवन भर आपके लिए कृतज्ञ रहेगा। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप आंखें जाने के बाद देना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है। तो जाने के बाद हमारी आंखें, जब भी किसी का देहांत होता है तो वो अगर उसका मन होता है तो वो अपने साथियों को बता सकता है, अपने घर परिवार वालों को बता सकता है और वो लोग, एक हेल्पलाइन नंबर है 7310987001, इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। रविंद्र जी, आप एक बारी फिर से बताइएगा ये नंबर ताकि लोग इस नंबर को नोट कर सकें।
1: 7310987001।
0: इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो फोकस नेत्रालय आई बैंक की एक ट्रेंड टीम आपके घर पहुंचेगी। आपको आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके घर पर ही एक ट्रेंड टीम पहुंचेगी। ये ट्रेंड टीम पूरी की पूरी आंख निकालती नहीं है, सिर्फ आंख के ऊपर के काले हिस्से

0: के ऊपर जो पारदर्शी परत है जिसको कॉर्निया कहते हैं, सिर्फ उतना ही हिस्सा निकाला जाता है। ये एक बहुत ही पतली सी पारदर्शी परत है जो कि कॉन्टैक्ट लेंस के तरीके से होती है। इससे चेहरे की और आँख की बनावट खराब नहीं होती है, तो अंतिम दर्शन में कोई दिक्कत नहीं आती है और ऐसा लगता है जैसे इंसान आराम से सो रहा है। तो इसलिए कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। मात्र 15 से 20 मिनट का इसमें समय लगता है, इससे आपके आगे के किसी भी संस्कार में या क्रिया में कोई दिक्कत नहीं आती है। और सबसे जरूरी बात ये कि आँख खंडित नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसा विचार करते हैं कि अगर हमने इस साल में आँखें इस जन्म में अपनी आँख दे दी तो अगले जन्म में रोशनी नहीं आएगी। ये सारी बातें बिल्कुल व्यर्थ हैं। इन सब भ्रांतियों के पीछे ना पड़े। आपके जाने के बाद अगर आप अपनी आँख की सिर्फ एक पारदर्शी परत पुतली देते हैं तो इससे आपका शरीर खंडित नहीं होता है, आपकी आँख खंडित नहीं होती है और अगले जन्म में भी इसका कोई प्रकोप नहीं है। बल्कि आपकी आँखों से जो लोग व्यक्ति देख रहे हैं वो लोग आपके लिए कृतज्ञ हैं, आपको इसका बहुत ही पुण्य या सवाब मिलेगा। तो किसी भी धर्म में किसी भी उम्र में आप अपना प्लेज कर सकते हैं और अपने आँखों को दान कर सकते हैं।
1: डॉक्टर कनुप्रिया जी, चाहे डायबिटीज हो या अन्य कोई बीमारी हो, तो
0: बीपी हो आपको, चाहे शुगर हो आपको, चाहे हार्ट की बीमारी हो आपको, चाहे क्या कहते हैं आपको चश्मा लगा हो, चाहे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ हो, इन सब कारणों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी भी अपनी आँख को डोनेट कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यादें ही नहीं विरासत में रोशनी भी छोड़ कर जाए। आप 7310987001 इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपने अगर प्लेज किया हो तभी आप आँख डोनेट कर सकते हैं। जाने के बाद भी, जाने से पहले भी 6 घंटे के भीतर भीतर ये प्रक्रिया होनी जरूरी है। ये निर्णय लेना बहुत जरूरी है। मैं इस बात को बिल्कुल समझती हूँ कि उस समय इंसान की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो इस निर्णय को ले पाए, लेकिन अगर ये निर्णय हम जल्दी लेते हैं और जल्दी अब हमारी टीम को इन्फॉर्म करते हैं और ये प्रक्रिया 6 घंटे के भीतर हो जाती है तो आप एक नहीं, दो नहीं, कई बार 2 से ज्यादा लोगों को भी रोशनी दे सकते हैं। शायद आपने अपने आसपास कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति देखा होगा वजह से इन 2 लोगों की आँख में दोबारा से रोशनी आई और वो अपने घर परिवार में अच्छे से देख पा रहे हैं, अपने जीवन को स्वयं बिना किसी पे निर्भर होकर काम कर पा रहे हैं।
1: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जान है तो जहान है कार्यक्रम समाप्त करने के लिए रविंद्र कुमार मिश्रा को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आँख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।

जान है तो जहान है। अभी आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम। विशेषज्ञ थी डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल। आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां पे आपको मिलता है गीत संगीत और ज्ञान का बम्पर एंटरटेनमेंट। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं की फरमाइशी सोशल मीडिया कमेंट्स पे आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। आज के आपकी पसंद के सुरीले और कड़प्रिय सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है फिल्म दुश्मनी से। आवाज है उदित नारायण की और सुनने की फरमाइश है आप सबकी।

कृष्णा पार्क नई दिल्ली से सुखिंदर सिंह जौड़ा, सिंट दीवाना गुरुवंश सिंह जौड़ा, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। और ये कमेंट हमें भेजा हमारे पुराने श्रोता बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, भोलागाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, मोहनलाल वायन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सागरानी, हिना कौसर, भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरा जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नन्नी जंगेल, धमधा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, अर्षि, अर्षिका, अंजलि और जंगेल परिवार, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोनी, मोनी ऋतिक और साथ में हैं इनके बलबीर सिंह। बागपत उत्तर प्रदेश से आप हैं हमारे पुराने श्रोता संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार ढींगिया। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से फरमाइश भेजी है रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल ने। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नयमा श्रीमती रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। गांव लहो डडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामानंद कश्यप, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। आप है पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से हमारे पुराने श्रोता सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। तो आइए सुनते हैं फिल्म दुश्मनी का ये प्यारा सा गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गाइड इस फिल्म में आप सुनेंगे लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत। संगीतकार हैं एसडी वर्मन और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। भिलाई छत्तीसगढ़ से आप हैं मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गर्मा शर्मा। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रंजन रजक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कन्नौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यस सौम्या और इनके मम्मी पापा। गोंदुर रोड धूलिया महाराज से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उद्यन और अर्पिता। उन्हेल चिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भोला वाक्तरिया, प्रवीण वाक्तरिया, रियांश वाक्तरिया और प्रतीक वाक्तरिया। आजाद रेडियो श्रोता संघ रजोखर बाजार अररिया बिहार से सईफ आरजू और गुड्डू रंगीला। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से आप हमारे पुराने श्रोता राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। भोपालगढ़ राजस्थान से आप है धर्मेंद्र चिप्पा, कपिल चिप्पा, ईशान चिप्पा, पूजा परिहार। मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश भेजी है नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे और समीर खांडे ने। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, पप्पू डप्पू और सुनते हैं काइट फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म चित्तौर से, आवाज है यीशुदास की, गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई, राजू भाई, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से हैं शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, राजकमल, रेडियो श्रोता संघ आष्टी, जिला जालना, मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले, दोतर जोड़ आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते, जिला नांदेड़ जीताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभ प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल, राज कमल, रेडियो श्रोता संघ आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले। आप एक कमेंट को एक ही बार भेजा करें। कलनौर से आप हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। चडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमणि श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद दिवांगन, पराग पूनाराम दिवांगन।

कृष्णा देवांगन। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समीर परवीन और माहिरा नूर। नागपुर मारा से कमल साहनी, डॉक्टर हाजी अफजल मलिक। रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी। ओखला संगम बिहार से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता। राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता और इनके साथ हैं शिवम गुप्ता। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हमारे पुराने श्रोता है रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा। बैंक सेंटर चनहेटी के पास बरेली कैंट से आप है हमारे पुराने श्रोता विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी और मुस्कान। कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमेंद्रपुरी गोस्वामी, भाई कल्लू मिस्त्री। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह। गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, परवीन शर्मा, राहुल शर्मा, मनीष शर्मा। गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी मामिका वाणी थांदी। दरियापुर बावली महाराज से गजानन लीले, नवदीप येले, विश्वदीप येले। थाड़ी नांदुरा महाराज से श्रीकृष्ण वाठे, संदीप वाठे, अमूल्य वाठे। श्री गंगानगर राजस्थान से आप हैं नेकीराम बिस्वाल। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरीद अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है दिल का क्या कसूर फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोंसले और कुमार शानू की, गीतकार हैं मदन पाल और संगीतकार हैं नदीम श्रवण। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरा, सैयद निजामुद्दीन, रामभाऊ तानले। दोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते,

ધાડી નાંદરા મારા સે શ્રીકૃષ્ણ બાઠે સંદીપ બાઠે અમૂલ બાઠે શેરવાની સ્કૂલ ગંજોડવારા સે આફતાબ અંસારી રિયાઝ અંસારી મોહમ્મદ કૈફ અનવર માસ્ટર લુબના અંસારી અલી અંસારી ગ્રામ ભોઈનાપારા બાલાવત છત્તીસગઢ સે દેવદરાય સાહુ યોગિતા ચુલબુલી ગીતિકા ચંચલરાની સાહુ ત્રિયાંશ કુમાર સાહુ आप लोगों से निवेदन है कि कृपया एक कमेंट को एक ही बार करें। अरेरी बिहार से सोमिया नाजमीन रुकैया अफरीन रिहाना प्रवीण माहे आरजू तहसील मिलक जिला रामपुर से सखावत हुसैन मंसूरी तालिब हुसैन मंसूरी मुतौफिक मंसूरी मोहम्मद नवी मंसूरी सकुर अहमद मंसूरी सुनील रस्तोगी विकास श्रीवास्तव और सारे दोस्त गोविंदपुर से सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीत कवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिप्पा कपिल चिप्पा ईशान चिप्पा पूजा परिहार

आजाद रेडियो श्रोता संघ रजोखर बाजार अररिया बिहार से शरीफ आरजू गुड्डू रंगीला, मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिशा सबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना अलिजबा अयान मंसूरी, यश मंसूरी और प्यारा नवासा नुबैर मंसूरी। कांट रोड लदावली से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। सेव वाटर सेव लाइफ, इस संदेश के साथ हैं गंजोडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आप हैं राधा नामदेव। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदारा दिल्ली से तोसी मस्कीन, बीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। ग्राम एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से विकास श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव, सकावत हुसैन मंसूरी। परिमहल कासगंज से आवे आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी। गांधीनगर महेश्वर मध्य प्रदेश से श्याम यादव, सोना यादव। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लाली गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं वेद मिट्टा, अलका मिट्टा। कस्बा उगती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। बक्सेना दातागंज बदायूं से आप हमारे पुराने श्रोता विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलूर, अमन, रिया, सेजल, सूर्य, सोना, रीना और नीरज।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद देवेंद्र रावत के साथ। जुनून इस फिल्म में आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव के युगल स्वरों में गीत। शब्द रचना है सुरेंद्र सेठी की और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार। गांव ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना वन्ना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। बन बगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हुए सारवा आशा सारवा नीरज नीलेश अंजलि ज्योति रोशनी सारवा ख्याति सारवा। डोंडी लोहारा जिला बलोत से देवशंकर तामुरिया प्रभा देवी तामुरिया अजय देव तुषार देव डाली देवी पूजा राधिका पोता मास्टर अलकाबीर। तीव्रता डबरीपारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम जया मरकाम जागेंद्र गजेंद्र जयंती ममता मनीषा सुरेंद्र मरकाम मोहन सिंह मरकाम सहोद्री बाई मरकाम चंद्रपाल मरावी। ग्राम लसुडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश अंगडी। गांव खोकरावाली श्री गंगानगर से विनोद बारसा विशाल बारसा विकास बारसा रोशनी बारसा शकुन बारसा। आप हैं खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा चंदन अरोड़ा। कंवर कॉलोनी बड़वा से खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण शिमाली मीना शिमाली। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटखेर श्रीमती नंदा बोटखे हनुमान बोटखे उत्तम जगदाड़े। ग्राम बिटोडा भोयर तहसील मंगरूलपीर जिला वाशिम पश्चिम विदर्भ से योगीराज मस्के श्रीहरि मस्के इंदुमती मल्हार कविता मोहन विशाल कुशल गोपाल श्याम विनोद मस्के और साथी। जवाहरनगर उदयपुर राजस्थान से

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म नदिया के पार का, आवाजें हैं हेमलता और जसपाल की। सुनने की फरमाइश आप सबकी, ग्राम पंचायत सिर कोतंगा महादेव पारा पोस्ट लहपटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार रजवाड़े, श्याम रजवाड़े, लल्लू बल्लू धन्नू, अमित कुमार, अभिजीत, सकल राम, प्रियांशी, राजकुमारी नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, सिमरन रजवाड़े एवं रजवाड़े परिवार। दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता, सी आर कुलकर्णी। सनावस से शेख मूसा, मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना। मेरठ कैंट से आप हैं बाबूदीन। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश संजय नगर इशबाक लखनऊ से ये संदेश भेजते हैं। आप कहते हैं मैं अस्वस्थ हूं, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। हम चाहेंगे कि आप जल्दी से स्वस्थ हों वारिस अली साहब। ग्राम ढकियाट केसरपुर जिला पीलीभीत से ए के राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश राजपूत, पप्पू भैया, भगवान दास राजपूत, सत्यपाल वर्मा, समस्त ग्रामवासी। इस्लाम नगर पपसरा जिला बदायूं से भाई सत्यदेव कुमार, विष्णु कुमार राणा। कस्बा उगैती जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, सितारा सिद्दीकी, साद सिद्दीकी, समर सिद्दीकी और सादिया सिद्दीकी।

कुटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से ओम प्रकाश आय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबे नवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, पंजल राय, सभी दो सिटी हरियाणा से नाना खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, खुश खन्ना और समस्त खन्ना परिवार, जिला बदायूं ग्राम गनगुला उत्तर प्रदेश से इसरत खान, शायरा बेगम, रहू खान, साबरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ खान, ईमान खान, शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी, पीपरपारा पाल गुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, जय जनेन श्रोता परमणि महाराज से रूपे संगई, महेश संगई, प्रजगेश संगई, प्रीतेश संगई और पूरा संगई परिवार। तो आइए सुनते हैं नदिया का प्यार का पार का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है आंखें फिल्म से कुमार सानू और मोहम्मद अजीज के युगल स्वरों में। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं बप्पी लहरी। सुनने की फरमाइश आप सबकी। जय जनेन श्रोता संघ परमणि महाराज से रूपे संगई महेश संगई प्रज्ञेश संगई प्रतीश संगई पूरा संगई परिवार। पुरानी भलाई तीन चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी बेगम हमीदुन सिद्दीकी जीशान अहमद सिद्दीकी शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार। कटर चौथ का पुराना शहर बरेली से यमुना प्रसाद मौर्य किरण मौर्य दृष्टि मौर्य मानवी मौर्य। पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुक अश्व

चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ढींगरा, पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा, ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव, रागनी, रिया, रेणु एवं रोनिका यादव, स्मिता रेडियो रिपोर्टिंग ग्रुप भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वैदेही जोशी, बेबी नरसिका जोशी, और जगदलपुर से छत्तीसगढ़ से आप हैं पूनम नायडू, ग्राम गोपी खिरिया तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, श्रीमती ज्योति, अंजना पाल, हरिमोहन पाल, बेबी लक्ष्य, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाणकर, निर्मला नवाणकर, विशाल नवाणकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुनहेकर, ग्राम चतुपुर कुंदर की मुरादाबाद से एम मुनाजिर खान, फिरासत मारूकी, मोजम मुस्तफा गौसियाबी, श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीती, विनायक सिंह, मोहनी, मोहित सिंह एवं प्यारी प्यारी कोको रानी, गांव ढोडरी खोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंबा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद, कुमारी पुष्पांजलि, स्वप्निल कुमार निषाद, ग्राम पीपरलोड सरगावा छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, जमनिया गाजीपुर से आप हैं श्रोत्रा हमारे सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, अडार नानगार छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदी भूपेश, दीपेश वर्मा, जनकपुरी नई दिल्ली से आप हैं जय कृष्णलाल सलूजा, राधा सलूजा, गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मरुतराव पांचाल, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घट्टे, संगीता घट्टे, साक्षी घट्टे, जयश्री महत्रे, अंजलि कारवा, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टुल, पीबी कुलथे, नुकेश्वर नगर उदयपुर से आप हैं शांतनु भारद्वाज, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राय नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, नादिया नारंग, मौली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बल देविंदर मीरक, जैतिक विरक और मीका विरक, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाटा, मनकारा मंदिर वीडियो कॉलोनी कर गहना बरेली उत्तर प्रदेश से आप हैं पुराने श्रोता बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, रूपंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूवी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, अशिष्टा भारती, श्रीमती ओमती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, आदित्य वर्मा, शिवांश और साथ हैं प्रथव सिंह, गांव कबरेल जिला हिसार हरियाणा से सुरजीत सिंह इंदौरा, विशाल कुमार इंदौरा, अमरावती महाराज से सतीश वर्धे, शारदा वर्धे, अमरपाली वर्धे और ऋषा, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मैंग भाटिया, मालवा रेडियो ग्राम गुलबालोद तहसील अलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से कुंवर पाल, कृपाल सिंह, विक्रम सिंह, अखिलेश सिंह, शंकर सिंह, नरेंद्र सिंह, समस्त परिहार परिवार, तो आइए सुनते हैं आंखें फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म एक दूजे के लिए से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, अनूप जलोटा की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे सुनना चाहे बमेतरा छत्तीसगढ़ से भरत लाल सिन्हा, लव लक्की सिन्हा ने। राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार। अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, संदीप डाबिराव। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान। बग बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेश नेताम, कुसुम नेताम। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक। चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, सबिया खानम, फरीदा, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान। सौगा दमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन। गंज डुंडवारा से शमशु कुमार राही, शाहिन फातमा, दान खान, फैजान खान, अनूप खान। जिला बरेली ग्राम करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी, नसरीन अंसारी, सम अंसारी। शेरकोट बिजनौर से ननीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, जन्नत। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी। दैनिक कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विश्व मिस्किन रितिया अरब और वाणी, मिस्किन परिवार। कर्मचारी नगर रोड बरेली से गौतम ऋषि मौर्य, मनोहर लाल मौर्य, मिही लाल मौर्य, प्रीति मौर्य, रीना मौर्य, सुनीता मौर्य। रंगोरी रेडियो लिस्नर क्लब राजनगर मधुबनी से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत सिंह राजपूत, चुलबुल रानी। शांति निकेतन राजनगर से रेणु मिश्रा, क्रांति गुप्ता, कामेश्वर प्रसाद भगत, मेनका गांधी, संगीता पासवान। अनुपुर मध्य प्रदेश से जय मंत्री केवट, अंजलि केवट। चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत।

इसी गीत को सुनना चाहा है अहमदनगर मंडी पंजाब मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना आफिया जावेद अख्तर जस्मीन शकीला सना समा हिना राज्य सुल्ताना सुरजा अंसारी ग्राम व पोस्ट कोठा खंडुआ से राम बाबू मिश्रा कृष्णा देवी दिलीप मिश्रा माधुरी मिश्रा प्रदीप मिश्रा सविता मिश्रा सत्यम शीतल राधा सलोनी और शिवम मिश्रा।

अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। सुबह के 11 बजे हैं, अब आप सुनिएगा सबरंग। सबरंग में पहला गीत है फागुनी पाठक के स्वर में।

0: सब रंग अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पे। आइए सुनते हैं एफएम रेनबो प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: वेलकम टू द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द एशियन गेम्स फ्रॉम आईची नगोया। और खुशखबरी है भारत के लिए, भारत के कबड्डी टीम ने धमाकेदार शुरुआत करी है। जापान वर्सेस इंडिया मैच में 49-24 वाज द फाइनल स्कोर। ऑल राउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन टीम, सो एन एक्सलेंट स्टार्ट। आपके साथ हैं अभिनव पुंशी एंड मेरे साथ हैं साक्षी मानवाल। एंड साक्षी, ऑल्सो गुड न्यूज कमिंग इन फ्रॉम द हॉकी अरीना।
3: इंडीड अभिनव, खुशखबरी का सिलसिला आज जारी रहेगा और रहना चाहिए, बिकॉज भारत ने आज इंडोनेशिया को हरा कर इन अ वेरी कमांडिंग एंड कॉन्फिडेंट मैनर 17-1 से विक्ट्री को अपने नाम कर लिया इन द वुमेन्स हॉकी मैच। लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट इंडिया हैड ऑल्सो डिफीटेड उज्बेकिस्तान रिसेंटली इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स एंड दैट वॉज 19-0। वन इंपॉर्टेंट नेम दैट स्टूड आउट इन द लास्ट गेम एंड ऑल्सो टूडे वॉज दीपिका सहरावत। लेट्स रिमाइंड listeners over here that Deepika Sehrawat had scored a record-breaking 8 goals, setting a high for individual goals in the women's hockey match at the Asian Games last time in the match against Uzbekistan. And today also she proved to be a very important contributor in the goal-making for India, along with Sunilita Topo, Ruturaj Bisal, Sakshi Rana, Salima Tete and Navneet Kaur, amongst other Indian goal scorers. Abhinav.
2: Excellent news from Kabaddi as well as the hockey arena. Magar soft tennis mein disappointment, Aditya Tiwari aur Jay Meena. Performance achhi thi apne group stages mein, Mongolia ko haraya, Cambodia se ko bhi haraya, matlab South Korea se haarne ke baad round of 16 match mein

0: इंडिया फेल टू डिफीट अगेंस्ट द फिलीपींस 2-5, तो क्वार्टर फाइनल्स में नहीं प्रवेश कर पाए आदित्य तिवारी और जयमीना। मगर अब हम जाते हैं शूटिंग की तरफ एंड शूटिंग से अपडेट देंगे आपको साक्षी।
1: जी थैंक यू अभिनव। और शूटिंग की अगर हम बात करें तो वुमेन्स स्कीट शूटिंग के अंदर आज पहले दिन की समाप्ति पर भारतीय टीम तीसरे स्थान पर टीम इवेंट में उन्होंने अपना आज का दिन समाप्त किया है। वहीं अगर हम मेन्स टीम इवेंट की बात करें तो उसमें भारतीय टीम ने 5वें स्थान पर पहले दिन की समाप्ति पर आज अपना प्रदर्शन समाप्त किया है। टीम स्टैंडिंग्स में चाइना रही नंबर 1 पर 143 के साथ, कजाकिस्तान रहा नंबर 2 पर 138 पॉइंट्स के साथ, और वहीं भारत रहा 132 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर पहले दिन की समाप्ति पे।
0: जी हाँ, स्कीट इवेंट तो 3 दिन तक चलेगा मगर शूटिंग में मेडल्स आए हैं। और क्या मेडल्स, क्या परफॉर्मेंस। पहले शुरुआत हुई थी आज दिन में 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में, जिसमें रुद्राक्ष पाटिल, हिमांशु डिलन और पार्थ माने ने इंडिया को एक सिल्वर मेडल दिलाया। और बस वो ही नहीं, उसके बाद 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में मेंस में रुद्राक्ष पाटिल को ब्रॉन्ज और हिमांशु डिलन, जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे हैं, सिल्वर मिला। और पहली बार हमें 2026 में पोडियम में दो भारतीय दिखे, हिमांशु डिलन और रुद्राक्ष पाटिल। तो शानदार शुरुआत हमारी हुई है शूटिंग में।
1: यस इंडीड, एंड वी एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन आवर शूटर्स बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग मोर मेडल्स टू कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग एज द एशियन गेम्स प्रोग्रेसेस फर्दर। लेकिन अब थोड़ा सा एक छोटा सा अपडेट लेकर आते हैं एमएमए की दुनिया से भी, बिकॉज हमें तो आज पता है कि सुचिका तारियाल जो भारत की तरफ से एमएमए में आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, शी हैड लॉस्ट द सेमी फाइनल ऑफ द वुमेन्स 60 किलोग्राम अगेंस्ट अ सिंगापुरियन अपोनेंट हुन हुई त्यो। दो एट द एंड ऑफ द डे शी वॉज एबल टू ब्रिंग इंडिया द कविटेड ब्रॉन्ज मेडल। बट यहां पर निराशाजनक खबर जो आई, एंड एज पर रिपोर्ट्स दैट हैव बीन पोरिंग इन, द मैच वॉज अवॉर्डेड टू द सिंगापुर फाइटर, द इंडियन कैंप प्रोटेस्टेड एंड इवेंचुअली द मैच वॉज कॉल्ड अ ड्रॉ। अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि भारतीय कैंप की तरफ से प्रोटेस्ट आई, तो इन द इवेंट ऑफ अ ड्रॉ द रूल दैट हुएवर इज लाइटर किक्ड इन, एंड सुचिका जो कि सिर्फ 700 ग्राम ज्यादा थी वजन में अपने अपोनेंट से, वो इस मैच को हार गई। और एज पर रिपोर्ट्स शायद यही वजह रही कि भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल के साथ यहां पर संतुष्टि करनी पड़ी। शायद इसी वजह से आज वो काफी निराशाजनक, निराश भी दिखी थी और उनकी आंखों से आज अभिनव काफी ज्यादा आंसू भी गिर रहे थे।
0: जी हाँ, हार्ट ब्रेकिंग देयर फॉर सुचिका। मगर मेडल टैली में भारत अब 10th पोजीशन पे है विद 6 मेडल सो फार, 4 silvers and 2 bronze. Shooting have been sensational for India and lot more medals expected. और याद दिलाएं आपको सारे अपडेट्स आईची नगोया से लेकर हम आएंगे एवरी आवर। अगला अपडेट होगा 12:30 PM पे। आप प्लीज स्टे ट्यून टू आकाशवाणी, होपिंग फॉर मोर मेडल्स फ्रॉम द इंडियन कंटिजेंट।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: चुनिए LIC की जीवन लाभ, एक लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान जिसमें आपका प्रीमियम रुकेगा पर बेनिफिट्स नहीं। LIC हर पल आपके साथ।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: साज है करीना कपूर खान का बर्थडे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनके गाने ना बजाए जाएं। गाने भी बजाए जाएंगे, साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि आपकी फोन कॉल्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम कॉलर्स को ऑनियर ले सके और साथ ही साथ मेल्स को भी। कॉल करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2238852 या फिर 2238845। इन दोनों नंबर से पहले 0522 जो कि हमारा कोड है, इसे लगाना ना भूलिए।

अब देखिए, इकरा ने हमें फोन किया है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि भाई होल्ड करके जाइएगा नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं करने वाले कि होल्ड करके आपको छोड़ दें। हेलो इकरा, हेलो इकरा, आप ही चली गई हैं कहीं फोन होल्ड पर करके। हेलो, लीजिए इकरा की शिकायत थी कि हम फोन होल्ड करके कहीं ना चले जाएं, लेकिन इकरा ने ही, देखिए हमने गाना होल्ड कर दिया लेकिन इकरा ने फोन होल्ड करके खुद ही कहीं चली गई। कोई बात नहीं, अगला फोन कॉल, अगले कॉलर को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब तक ये गाना एंजॉय करते हैं।

0: यस बहुत सारे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें भी आपसे बात करके, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैसेजेस आपके सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। 11:40 और हमें किसी ने हमारे ही शहर से फोन किया है। हेलो हेलो, हाँ जी पिंकी जी, हमें लगा आप भी इकरा की जी की तरह छोड़ के चली गई हैं, मतलब कॉल छोड़कर चली गई हैं। पिंकी जी, जी पिंकी जी, आप पहले तो बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैम हम कृष्णा नगर से बात कर रहे हैं।
0: कृष्णा नगर से? जी पिंकी जी, तो क्या संदेश है आपके पास आज?
1: जी मैम हमारा संदेश ये है कि जो जी मैम हमारा संदेश है जो क्या नाम है, दो पहिया या चार वाहन चलाते हैं तो वो लोग कृपया नियम को फॉलो करें, नियम को फॉलो करें और हेलमेट लगा के चले, सीट बेल्ट लगा के चले।
0: ओके, इकरा जी आपका मैसेज बहुत अच्छा है, लेकिन अपने अपने आपने अपने रेडियो के वॉल्यूम इतना लाउड कर दिया है अपनी आवाज सुनने के चक्कर में कि हमें हमें आपकी आवाज दो दो बार सुनाई दे रही है।
1: मेरा बेटा है, आप
0: तो
1: वो जो इतना उत्साहित
0: है, तो पिंकी जी आपके लिए तो आज का दिन बहुत खूबसूरत लकी डे हो गया है। अरे पिंकी जी, ये तो आपके लोगों की खासियत है। देखिए आप लोग हमें फोन करते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम और खास बन जाता है, और इतनी ज्यादा खुशी मिल जाती है। तो देखिए

0: आज का दिन सिर्फ आपका नहीं हमारा भी खूबसूरत हो गया कि हमारी वजह से, हमारी एक कोशिश से आपके चेहरे पर इतनी सारी मुस्कान आई है।
1: जी मैम, थैंक यू, आपने अपना कॉल उठाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: अरे बहुत शुक्रिया कि आपने फोन
1: मैम
0: किया।
1: मान लीजिए हम काफी कम से कम साल भर से कॉल मिला रहे हैं,
0: आज
1: आप कहीं
0: आपकी आज
1: ना।
0: आपके साल भर की कोशिश का फल आपको मिल गया है और आपके बच्चे की मुस्कुराहट और एक्साइटमेंट। हाँ
1: एक बार पहले चतुर्थी वाले दिन भी फोन मिला था, लेकिन उस दिन फोन गिर गया था आपसे, तो उस दिन शॉक हो गया था।
0: अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन
1: तो आपसे बात नहीं हो पाई थी उस दिन, कोई और मैम आई और कॉल मिला उस दिन के बाद।
0: पर पिंकी जी आज हमसे बात होगी, आपके लिए दिन बेहद खूबसूरत रहा, उम्मीद करते हैं कि आपका हर दिन इसी तरह खूबसूरत रहे, खुश रहिए हमेशा। ओके थैंक
1: थैंक
0: यू
1: यू,
0: सो मच हमें कॉल करने के लिए, और मुझे सच में बहुत वाला अच्छा लगा पिंकी जी आपसे बात करके भी और ये जान के भी कि आज आपका पहली बार कॉल मिला है और साथ ही साथ आप इतनी खुश हैं। जिंदगी में और क्या चाहिए, बस इसी तरह छोटी छोटी बातें उसे खूबसूरत बना देती हैं।

0: जीवन लक्ष्य जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट रिस्क कवर टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस
1: LIC हर पल आपके साथ।
2: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो।
0: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
1: LIC हर पल आपके साथ।
5: देखिए टाइम बहुत कम है हमारे पास इस प्रोग्राम को जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी जल्दी से बहुत सारे कॉलर से कनेक्ट हो सके जितने मैक्सिमम इस अप्रोक्सीमेट 14 मिनट में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हेलो
6: हेलो।
5: हाँ जी
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। एक प्यारी सी आवाज के साथ एक और प्यारी सी आवाज जुड़ चुकी है, उनका नाम क्या है?
6: पहली बार फोन लगाया है।
5: क्या बात है, आज हमसे मोस्टली कॉलर वो मिल रहे हैं जो पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं। अभी पिंकी जी ने हमसे बात की।
6: निशा अंसारी।
5: ओके निशा जी ने अपना आधा नाम मुझे बताया था। निशा
6: पता नहीं ले पाओ इसीलिए पूरा नाम नहीं बताया था।
5: नहीं तो थैंक यू सो मच।

0: कि आपको, आपने हमें कॉल किया और पहली बार आपको कॉल लगा, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद
1: और
0: हो।
1: हम आपसे कहना चाहते हैं, एक हमारा भाई है बहुत बीमार है, सब लोग जो लोग सुन रहे हो सब लोग दुआ करें उसके लिए।
0: वो बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। तो निशा जी, क्या कुछ आज मैसेज देना चाहेंगी आप?
1: हम ऐसे यही देना चाहते हैं, जैसे कि जरूरतमंद अगर कोई कह रहा है तो उसकी बात सुने, उसको जाने, उसके बाद उसकी मदद जरूर करें।
0: हाँ, तो किसको, अगर आप हेल्प नहीं कर भी सकते तो भी अगर आप सुन लेंगे तब भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती। कई बार सिर्फ सुनना भी बहुत अच्छी होती है।
1: गुलाबता सिद्दीकी को हम कहना चाहते हैं, समा अंसारी जी को, रोशनी
0: हाँ
1: बबीता रावत को, सबको कहना चाहते हैं कि
0: हाँ
1: शाजिया की मम्मी ने फोन किया था।
0: ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि आपके भाई एकदम जल्दी से स्वस्थ हो जाएं।
1: हमारे भाई को बहुत सख्त पैसों की जरूरत, उनके पास पैसा नहीं है।
0: तो उम्मीद करते हैं कि जो है, जिनको भी जब भी मदद की जरूरत हो उन तक मदद पहुंच सके। इस उम्मीद के साथ साथ ये दुआ कि सबकी हेल्थ बेस्ट एंड बेस्ट रहे, क्योंकि भाई अगर हेल्थ है तो ही सब कुछ है, यानी हेल्थ ही वेल्थ ऐसे ही नहीं कहते हैं। जब बात आती है अच्छी हेल्थ की तो अच्छा म्यूजिक भी उसे बेहतरीन बना देता है, इसीलिए रेखा भारद्वाज की आवाज में ये ट्रैक।

0: एलआईसी जीवन लक्ष्य, जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट, रिस्क कवर, टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस।
1: एलआईसी, हर पल आपके साथ।
2: अब 11:52 टाइम हो चुका है और एक और कॉलर को हम ऑन एयर लेने की कोशिश करेंगे, जिनका नाम मुझे किसी की याद दिलाता है, किसकी याद दिलाता है वो बाद में बताएंगे, पहले नाम आप तक पहुंचाते हैं। हेलो राधे, राधे लग रहा है मैंने कॉल को ट्रांसफर नहीं किया, एक सेकेंड।
3: हमारे जहाँ जहाँ आवाज जा रही है,
2: हाँ?
3: उन सभी को प्यार भरा राधे राधे नमस्कार, और गणेश भगवान का हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्र आ रहा बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
2: सुनिए, उसके बाद दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, क्रिसमस आ रही है, सबकी भी लेके हाथ दे ही दीजिए आप।
3: दीदी फोन तो लगत ना, बहुत मुश्किल लगत है। तो
2: राधे राधे जी, देखिए आज आपका फोन लग गया है तो इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। चलिए जल्दी से बताइए क्या संदेश आप हम तक पहुंचाना चाहेंगे।
3: दीदी जी, संदेश यही देना चाहते हैं कि गर्म ठंडा का मौसम चल रहा है,
2: हाँ,
3: तो अपना जो नहीं स्वास्थ्य का ख्याल रखें भाई।
2: राधे जी, आपने हमें ऑफर बताया कि आप खाना बनाते हैं, तो अच्छा बताइए, इस मौसम में जो कंफ्यूजन वाला मौसम है ना, इसमें सबसे ज्यादा सेहतमंद क्या खाना होता है?
3: दीदी जी, साधारण खाना खाए, मान लो तड़क भड़क वाला ना खाए, जिससे शरीर को नुकसान जाए।
2: ओके, और राधे जी आपने कहाँ से फोन किया है हमें?
3: दीदी जी, हम ग्राम मुसलमानाबाद स्पोर्ट्स वानखेड़ा जिला हरदोई तहसील संडीला से बोल रहे हैं।
2: ओके, संडीला से आप बात कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। वैसे संडीला के लड्डू बहुत फेमस है ना।
3: गोमती नगर लखनऊ में ही काम कर रहे हैं।
2: कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच हमें फोन करने के लिए। और संडीला के लड्डू आप खिलाए ना खिलाए, गोमती नगर में आप काम कर रही हैं, बता दिया, हम खाना खाने आ जाएंगे वहाँ पे।
3: आ जाना दीदी जी, और जितने रेडियो टीम, हमारे जितने सर जी मैडम जी, हमारी दीदी, सबको राधे राधे,
2: राधे राधे। थैंक यू सो मच हमें फोन करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी मासूमियत को देखकर, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राधे राधे, और जैसा हमने कहा था, राधे जी का नाम सुनते ही हमें किसी की याद आई, आपको भी याद आएगी, किसकी? सलमान खान की। यस, राधा नाम या ना राधे नाम ऐसा जुड़ा सलमान खान के साथ, तेरे नाम के साथ, कि आपको क्या ही बताए। तो बस हमने राधे राधे से सलमान खान याद आए, तो हमने निकाला सलमान खान का गाना, और ये गाना शंकर एहसान लॉय की आवाज में आप तक पहुंचने वाला है, और इसी के साथ निधि यहां से पहुंचने वाली अपने घर। यस, क्योंकि हमारा वक्त होता है खत्म, शिखा जी का होता है शुरुआत, क्यों शत्रुपा लेके आ चुकी है, और जैसा हमने गुड मॉर्निंग लखनऊ में कहा था कि आज कुछ विशेष होने वाला है शत्रुपा में, आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ, तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और शत्रुपा सुनना मत भूलिएगा। एंड यस, राधे को तो कैसे ही भूल सकते हैं, राधे राधे।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में युवाओं के बीच पहुंचकर उनसे सीधे संवाद करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। युवा सम्मेलन के बाद इसी परिसर में पश्चिमी क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजकों का सम्मेलन होगा। युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं के साथ संवाद के जरिए उनके सवालों और प्रदेश में शिक्षा, रोजगार, कौशल, उद्यमिता व भविष्य के अवसरों से जुड़े विषयों पर चर्चा की संभावना है। नितिन नबीन भी युवाओं से संवाद करेंगे। वहीं आज मेरठ पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का प्रदेश सरकार में मंत्री सोमेन्द्र तोमर ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। प्रार्थना पत्रों का अवलोकन करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले लोग मामूली घटनाओं का बड़ा बनाना चाहते हैं। ऐसे में जनपदों में हर छोटी छोटी घटनाओं पर जिलाधिकारी व एसपी स्वयं नजर रखें, तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की सुनवाई करें और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई कर मामलों का पटाक्षेप कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि छोटी छोटी घटनाओं में भी उदासीनता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल के 607.7 किलोमीटर पर 252 करोड़ रुपए की कुल लागत से कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दी है। मंजूरी की गई यह परियोजना मंडल के शेष चिन्हित हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी, जिससे रेल परिचालन के लिए सुरक्षा अवसंरचना और मजबूत होगी। यह पहल भारतीय रेलवे द्वारा अपने नेटवर्क पर कवच लगाने की चल रही प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रेल सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना और रेल परिचालन की सुरक्षा को बढ़ाना है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशी ढिल्लो ने 252.4 अंक के साथ रजत और रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने

काम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि चीन ने स्वर्ण पदक जीता। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित होगा।

0: LIC जीवन लक्ष्य जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट रिस्क कवर टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस
1: LIC हर पल आपके साथ।
2: जिंदगी बहुत कीमती है
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो।
0: LIC जीवन लक्ष्य जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट रिस्क कवर टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस
1: LIC हर पल आपके साथ।

जी नमस्कार आदाब, गुड आफ्टरनून आप सभी लिसनर्स को। दोपहर के 12:04 हो चुके हैं और ये समय होता है उनके लिए जो घर को सजाती हैं, संवारती हैं और सभी का ध्यान रखती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, शुरू हो चुका है कार्यक्रम शत्रुपा, जिसमें आज शिखा रहेगी आपके साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है कार्यक्रम शत्रुपा में, और आज है मंडे। जी हाँ, आज है मंडे यानी सोमवार। तो सोमवार के दिन क्या खास होता है आपके लिए? भाई थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, गेस करेंगे आप? जी जी जी भाई, आपके जो ये दिल की आवाज है ना, ये शिखा बहुत अच्छे से पढ़ लेती है और सुन लेती है कि आप बता रहे हैं कि आज बातें होती हैं आपकी हेल्थ को लेकर। जी हाँ, हमारी महिलाओं की हेल्थ को लेकर। तो आज मंडे यानी क्या खास होने वाला है आपके लिए आज? जी हाँ, आज हेल्थ को लेकर कौन सी ऐसी चीज है जो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो हम बताएंगे, लेकिन इस प्यारे से ट्रैक के बाद, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक लगा है और बिल्कुल बेकरार है आप तक आने के लिए। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये ट्रैक और लौट कर आते हैं और बताते हैं आपको कि आज क्या खास है।

0: LIC जीवन लक्ष्य जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट रिस्क कवर टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस
1: LIC हर पल आपके साथ।
2: जिंदगी बहुत कीमती है
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़
5: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो।
0: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
1: LIC हर पल आपके साथ।
6: जी तो 12:11 का वक्त और एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक आपने सुना। हाँ तू है मेरी यादों में तू है। और तो बिल्कुल एग्जैक्टली सच ही तो कहा कि आप हमारे जो ना माइंड में हर समय घूमते रहते कि भाई हम अपने लिसनर्स के लिए अपने श्रोताओं के लिए क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं और वो सब खोज कर ढूंढ कर हम आपके लिए लाते हैं। तो इस प्यारे से ट्रैक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम शत्रुपा में। और दोस्तों जैसे कि अभी आपको बताया था कि आज है सोमवार और सोमवार के दिन हम बात करते हैं अपने घर की महिलाओं की। जी हाँ यानी आपकी। और आपकी तो बातें शत्रुपा में होती ही होती हैं लेकिन आज एक बहुत ही खास विषय पर बात होगी और वो विषय है आपकी सेहत। तो दोस्तों आज आपको बता दूं कि एक बहुत ही खास विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है आपकी यादों से जुड़ी। जी हाँ उन्हीं यादों से जुड़ी कि हम जब बहुत मेमोरीज बनाते हैं मेमोरीज क्रिएट करते हैं और धीरे धीरे वो फेड अप होने लगती है। तो आज कुछ ऐसी ही बातें हम आपके साथ करने वाले हैं। तो यादों से जुड़ी उस बीमारी के बारे में जिसके बारे में

0: बात करना बहुत जरूरी है, और ये बातें और ये विषय हमने आज इसलिए उठाया है क्योंकि आज है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर आरती यादव, एमडी मनोचिकित्सक, जिला अस्पताल बाराबंकी। तो चलिए हम सबसे पहले डॉक्टर आरती यादव का स्वागत करते हैं। डॉक्टर आरती यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम शत्रुपा में।
1: थैंक यू शिखा एंड थैंक यू आकाशवाणी आज के स्पेशल डे पे मुझे इनवाइट करने के लिए और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए।
0: जी, तो आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं?
1: आज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है, इस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए क्योंकि मेमोरी हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
0: जी,
1: मेमोरीज के बाद कुछ भी बचता नहीं है लाइफ में अगर हम चीज़ें भूल रहे हैं, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस टॉपिक पे आज बात करें।
0: वाह, क्या आपने बहुत अच्छी बात करी, और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं ये सुनकर बहुत ही ज्यादा मतलब उत्साहित हो गई होंगी कि आज इतना जो बेहतरीन टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो हम बात अपनी शुरू करें, उससे पहले एक गाना आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए उस गाने को एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं आज अपनी एक्सपर्ट से।

0: जी 12:21 का वक्त और आज हमारे एफएम स्टूडियोज में हैं डॉक्टर आरती। तो डॉक्टर आरती से हम आज बात करने वाले हैं अल्जाइमर पे, क्योंकि आज है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। डॉक्टर आरती एमडी मनोचिकित्सक जिला अस्पताल बाराबंकी हैं। तो डॉक्टर आरती, सबसे पहले हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ जो कहते हैं ना कि आप जब हमारे साथ जब कोई एक्सपर्ट होता है तो उससे ही रिलेटेड बात करने में कोई एक मतलब मन को शांति मिलती है, और जितनी भी हमारी ये लेडीज आज का प्रोग्राम सुन रही होंगी तो उनको भी बहुत उत्सुकता हो रही होगी कि आज क्या स्पेशल बातें होने वाली है। तो हम सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि अल्जाइमर होता क्या है।
1: अगर हम अल्जाइमर को बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहें तो ये याददाश्त की बीमारी है
0: जी।
1: इसमें नई यादें बनाना, उसकी क्षमता कम हो जाती है, और जो पुरानी यादें हैं वो धीमे धीमे इंसान भूलना शुरू हो जाता है
0: जी।
1: इस बीमारी में सिर्फ चीज़ें याद रखने में ही समस्या नहीं होती है, धीमे धीमे इसकी वजह से लोगों की पर्सनालिटी पे चेंज आने शुरू हो जाते हैं। लोगों को डे टू डे काम करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, वो काम जो वो पहले बहुत आसानी से कर रहे थे, ड्रेसअप होना, कपड़े कैसे पहनना है, अपना काम कैसे करना है, दैनिक दिनचर्या क्या है, खाना कैसे बनाना है, किस रास्ते से होकर के जाना है, धीमे धीमे इंसान इन सब चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है
0: जी। तो इस जो बीमारी को है इसको मतलब सीरियस लेने की ज़रूरत है
1: जी।
0: और एक बात और आपसे पूछेंगे कि अक्सर घरों में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके जो ध्यान रखने की जिम्मेदारी होती है हमारी घर की महिलाओं की होती है, तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे बुजुर्गों के साथ हो रही है तो उनको कैसे ध्यान रखना है हमारे बुजुर्गों का, हमारी महिलाओं को, क्योंकि मेन रोल हमारी महिलाओं का ही होता है घर में सारी चीजों को देखने का, तो उनको कैसा बिहेव करना है हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं।
1: देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर हम मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिलाओं का रेशियो देखें तो देखा गया है कि महिलाओं में थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा होता है। इसके अलग अलग कारण होते हैं
0: जी,
1: लेकिन महिलाएं जो हैं वो पूरे घर को संवार रही हैं, उनको हर चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सा सामान घर पर कहाँ रखा है, जो कि बहुत छोटे छोटे से आइटम्स होते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: वो सब चीज़ों से लेकर के घर पर क्या बनना है, बच्चों का क्या ख्याल रखना है, बुजुर्गों का क्या ख्याल रखना है, जो पुरुष बाहर जा करके कार्य कर रहे हैं उनकी चीज़ों का भी ध्यान रखना, मतलब मल्टीटास्किंग आ रही होती है। तो इन सब चीजों के लिए अगर हमारी याददाश्त हमारा साथ नहीं दे रही है तो डे टू डे में दैनिक दिनचर्या में बहुत समस्या आने वाली है। अब इसके लिए महिलाओं को ध्यान ये रखना है कि हर वो चीज जिससे कि अल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ता है
0: जी
1: उसके लिए ध्यान रखें कि हम अल्जाइमर के रिस्क को ही कम करके रखें
0: जी जी जी तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और अभी बातें हमारी ऐसे ही आपके साथ जारी रहेगी, लेकिन एक गाना बनता है क्योंकि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको जानकारियां तो चाहिए होती हैं और साथ में एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है। तो एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक, और लौट कर आते हैं इस गाने के बाद और बातें करते हैं आज अपनी एक्सपर्ट से।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
5: LIC हर पल आपके साथ।

0: जी 12:29 का वक्त और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। और आज हमारे एफएम स्टूडियोज में उपस्थित हैं, जिन्हें आमंत्रित किया गया है, डॉक्टर आदि आरती यादव हैं। और उनसे आज हम एक बहुत ही बड़ी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है अल्जाइमर, क्योंकि आज है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। तो आरती जी, हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं, क्या महिलाओं में इस बीमारी का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा होता है? हार्मोनल चेंजेस के बाद क्या क्या ध्यान रखने चाहिए?
1: महिलाओं में इसका खतरा ज़्यादा होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि अगर हम रेशियो देखेंगे तो महिलाओं में ज़्यादा होता है। उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि महिलाएं ज़्यादा जिंदा रहती हैं पुरुषों के कंपैरिजन में
0: जी,
1: इस वजह से। और ये बीमारी ऐसी है जो एक एज के साथ आनी स्टार्ट होती है, दैट इज 65 की एज के बाद से आनी शुरू होती है।
0: जी
1: तो जो जितना ज़्यादा जिंदा रहेगा उसमें उतना ज़्यादा इस बीमारी के होने के चांसेस हैं, तो इसलिए देखा गया है कि महिलाओं में ज़्यादा होती है। सेकेंड क्या है कि मीनोपॉज के बाद में ईस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है,
0: जी
1: उसका भी एक इफेक्ट आ रहा होता है कि आपकी मेमोरी किस तरीके से स्टोर हो रही है, ब्रेन के हिप्पोकैम्पस पे असर आता है।
0: जी
1: देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है,
0: बिल्कुल
1: 65 के बाद में हर 5 साल में इस बीमारी का खतरा डबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि 65 साल के आसपास में ये बीमारी 5% है, तो 70 पे 10, 75 पे जाकर के
0: मतलब इंक्रीज होती
1: बढ़ती
0: जाएगी
1: चली जा रही
0: जी।
1: है।
0: और आप हमें ये भी बताइए, हमें भी बताइए और हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि घर में अगर किसी बुजुर्ग को ये बीमारी है, तो वही मैंने बताया कि परिवार को, खास कर महिलाओं को, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए?
1: अगर किसी को ये बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है और डायग्नोस हो गया है कि हाँ ये अल्जाइमर्स की तरफ आ गया है,
0: जी
1: तो इसमें घर वालों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मरीज है वो अपना अब ध्यान पूरी तरीके से नहीं रख सकता है,
0: जी
1: उसको अपने दिनचर्या के कार्यों के लिए किसी न किसी की हेल्प चाहिए। तो घर वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहला देखें कि किसी भी तरीके की जो हाइजीन है जो रहती है उसको ध्यान रखें बहुत अच्छे से, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। सेकेंड, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होता है, जिसमें सब्जियां, फल ये सब रखना रहता है। इसके अलावा उनका एक रूटीन फिक्स करना होता है,
0: जी
1: आप उनका एक रूटीन फिक्स कर दीजिए और उसी को हर दिन फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर हम रूटीन फिक्स कर रहे हैं और वो डेली रिपीट हो रहा है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा स्टोर हो जाता है।
0: जी बिल्कुल।
1: उनके घर से वॉशरूम तक जाने का रास्ता, घर के बाहर निकलने का रास्ता, या अगर उनको कोई खास एरिया पसंद है घर के आसपास का, तो उनका वो रूट फिक्स कर दीजिए कि घर से निकले, पार्क गए, पार्क से उसी रास्ते से घर वापस आए, इसको फिक्स कर देते हैं। उनका कमरा अच्छा वेंटिलेटेड हो, रोशनी अच्छी हो, एक अच्छी सी घड़ी टाइम बताने के लिए, कैलेंडर्स हो जिससे उनको डेट याद रहे, और घर का जो एड्रेस है, घर के लोगों का नाम है, अपना नाम है, ये उन्हें डेली बेसिस पे रिपीट कराते रहना होता है,
0: जी जी
1: ताकि उनको ये थोड़ा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाए तो याद रह सके।
0: जी, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोगों, ये जो जो लोग भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं

0: तो आपने ये चीजें बताई, क्योंकि अक्सर करके क्या होता है हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं इस समस्या को झेल रहे होते हैं, और इस समस्या को झेलते झेलते घर की महिलाएं जो होती हैं उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है, वो कभी प्यार से बोलती हैं कभी हाइपर हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी आपने आज चीजें बताई वो उन बुजुर्गों की हेल्प तो करेगा ही, साथ में उनकी भी हेल्प करेगा जो उनकी देखभाल कर रही है। तो ये बताइए कि कौन कौन से शुरुआती संकेत होते हैं, जैसे मानिए अगर बुजुर्ग में भी ये कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो कौन से शुरुआती संकेत होते हैं जिनको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए?
1: इसके लिए हमें समझना होगा कि अल्जाइमर्स में क्या क्या लक्षण मिल रहे होते जी हैं। अल्जाइमर्स में लक्षण मिलते हैं कि लोग चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमें मिल रहा है कि वो चीजें जिन्हें हम इजिली याद रख सकते थे
0: जी,
1: चीजें कहीं पे रखना और रख करके हम याद रख रहे हैं, बट अब समय ऐसा आ गया कि अब हम याद नहीं रख पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। सेकंड, अल्जाइमर्स में थोड़ा सा स्पेशियल कॉग्निशन थोड़ा चला जाता है, मतलब आसपास में हमारे क्या रखा हुआ है उसको इंसान भूलना शुरू कर देता है और उसका सही अंदाजा नहीं लगा पाता है। तो घर में वो फर्नीचर जो कई सालों से रखा था आज तक हम उससे नहीं टकरा रहे थे, लेकिन अब हर दिन में और कई बार हम उससे टकराना शुरू कर चुके हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: अगर हम कार पार्क कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से आता था, रिफ्लेक्स में था कि कार कैसे पार्क करनी है, लेकिन अब हम आसपास की चीजों से टकराना शुरू कर चुके हैं, कार को टकरा दे रहे हैं, सही से पार्क नहीं कर पा रहे हैं। या फिर इसके अलावा ड्रेस कैसे करना है, कपड़े कैसे पहनने, आज हम चाय बनाने गए और हमें ध्यान नहीं रहा कि चाय बनाने का सीक्वेंस क्या रहा, अगर इस तरीके के लक्षण मिलने शुरू हो रहे हैं
0: हाँ,
1: तो अलर्ट हो जाना चाहिए और हेल्प लेनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं से साझा करी, और अभी बहुत सी जानकारियां आपसे लेनी बाकी हैं, लेकिन हमारे लिसनर्स इंतजार करें कि भाई गाना एक प्यारा सा भेज दो शिखा, तो एक गाना आ रहा है तो हमारे लिसनर्स तो इंजॉय करेंगे ही करेंगे, साथ में शिखा भी इंजॉय करेंगी और यहाँ पे हमारी जो मैम है प्यारी सी वो भी इंजॉय करेंगे। तो चलिए इंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और लौट कर आते हैं और अपनी बातों को जारी रखते हैं।

0: जी, दोबारा बजकर 40 मिनट हो गए हैं और आज प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। और हमारे एफएम स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर आरती यादव और मनोचिकित्सक हैं वो। और आज हम गंभीर एक बीमारी है जो भूलने की बीमारी, जिसे हम लोग सभी लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं भूलने की बीमारी, और उस भूलने की बीमारी को क्या कहते हैं? जी हाँ, उसको कहते हैं अल्जाइमर। तो अल्जाइमर के बारे में हम बात करें और आगे हम मैम से कुछ पूछने वाले हैं। तो आप हमें मैम ये बताइए कि लोग कहते हैं कि ये बीमारी सिर्फ बुढ़ापे में होती है या इसको सिर्फ भूलने की आदत कहते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
1: ये बीमारी ज्यादातर 60 साल के बाद ही आती है अक्सर
0: जी,
1: लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो सकती। ज्यादातर देखा गया है कि अगर जेनेटिक वजह है, किसी में आनुवंशिक कारण आ रहा है, तो उसमें 60 साल से पहले भी मिल सकता है। इसको हम अर्ली अल्जाइमर्स बोलते हैं। कभी कभी 30 साल के लोगों में भी मिलने की संभावना होती है। और रही बात कि सिर्फ भूलने की बीमारी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंभीर बीमारी है। इसमें जब ये सीवियर हो जाती है, बहुत गंभीर लेवल पे पहुंच जाती है, तो जो मरीज होता है वो बेड रिडन हो जाता है। मतलब बिल्कुल बिस्तर पे आ जाता है, क्योंकि वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकता, उसको अपने बेड से उठना तक नहीं आ रहा होता है। तो ये गंभीर बीमारी है। इसके अलावा देखते हैं हम लोग कि याददाश्त गड़बड़ हो रही है, ये एक पार्ट है, लेकिन इसके अलावा कभी इसके मरीज बहुत अग्रेसिव भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल बोलना बंद कर देते हैं, कुछ
0: जी
1: बहुत ही उल्टी सीधी हरकत करने लगते हैं। हमारे लिए वो उल्टी सीधी हरकत है, बट अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि लोग बोलते हैं पब्लिक में कपड़े हटा दिए, उनको
0: जी
1: नहीं समझ आ रहा था,
0: हाँ
1: घर में किसी भी जगह पे जाकर के टॉयलेट वगैरह कर दे रहे हैं, क्योंकि वो भूल गए हैं कि ये काम टॉयलेट में करना था या ये काम हमें अपने घर में अपने कमरे में करना था जाकर के।
0: जी
1: और जो अग्रेसिव हो जा रहे हैं, अगर किसी की पर्सनैलिटी ही शुरुआत से थोड़ी सी इस तरीके की रही है, अब वो अपनी चीज़ें कहीं रख रहा है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें रख रहा है, अब वो भूल गया उससे वहाँ पर रखा है, देन जब वो ढूंढने जाएगा, किसी दूसरी जगह ढूंढने जाएगा, और वो सोचेगा किसी ने चुरा लिया, कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई
0: जी
1: मेरा नुकसान करना चाह रहा है, इसलिए मेरी चीज़ों को हटा दे रहा
0: हटा
1: है।
0: दिया।
1: ऐसे में वो अग्रेसिव हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, कई बार ही दूसरों पे हमला भी कर सकता है और कई बार खुद को भी नुकसान पहुंचा लेता है। ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि उनके चारों तरफ हो
0: हो
1: क्या
0: क्या
1: रहा है।
0: रहा है?
1: जो चीज़ें वो बहुत आसानी से कर लेते थे, अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। बिल्कुल 180 डिग्री टर्न है लाइफ का। तो ये एक गंभीर बीमारी है।
0: जी, और अक्सर करके मतलब जो घर में लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि मतलब अब बुद्धि थोड़ी सी खराब हो गई है, मतलब ये चीजें ऐसी करके लैंग्वेज होती है लोगों की कि मतलब अब थोड़ी

0: खराब हो रही, लेकिन एक्चुअल में जो सिचुएशन होती है वो लोग अल्जाइमर से जूझ रहे होते हैं।
1: लोगों को इसकी जागरूकता नहीं है, लोगों को
0: जी
1: पता नहीं है कि ये
0: बिल्कुल।
1: एक बीमारी है जिसके लिए इलाज किया जा सकता है। अगर लोगों में इतनी अवेयरनेस होगी तो इसको सिर्फ एक बुढ़ापे से जोड़ करके नहीं
0: हाँ
1: रखेंगे
0: हाँ
1: लोग,
0: हाँ
1: सोचेंगे अब एक लोग सोचते हैं कि एक एज हो गई है और
0: हाँ
1: ये एक सामान्य चीज है।
0: जी वही मैंने कहा।
1: ये एक
0: हाँ
1: सामान्य चीज नहीं है, इसके लिए इलाज संभव है।
0: हम संभव है, और छोटे बच्चों में, बड़े लोगों में भी ये सब चीजें होती हैं, हो सकती हैं।
1: अल्जाइमर जो है वो ज्यादातर हमें एक एज के बाद ही मिलता है। रही बात डिमेंशिया की, यानी कि भूलने की बीमारी, वो और भी प्रकार की होती
0: जी
1: है,
0: जी
1: वो हमें मिल
0: तो
1: सकती है।
0: कुछ आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि क्या गाने सुनकर या किताब पढ़कर या एक्टिव रहकर इस बीमारी को हम दूर कर सकते हैं?
1: अगर हम अपने ब्रेन को बहुत एक्टिव रखेंगे, जितना एक्टिव रखेंगे,
0: जी।
1: इसका एक रिस्क फैक्टर को हटा सकते हैं, क्योंकि अल्जाइमर के रिस्क फैक्टर्स में से अगर हम अपना ब्रेन फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो इस बीमारी के चांसेस होते हैं कि
0: अच्छा।
1: बाकियों के कंपैरिजन में इनको ज़्यादा हो जाएगी। रही बात म्यूजिक की, बहुत स्टडीज चल रही हैं इस पे, कंक्लूसिव नहीं है, मतलब बहुत ही एकदम वैज्ञानिक प्रूफ नहीं आए हुए
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: लेकिन देखा गया है कि म्यूजिक थेरेपी के साथ में लोगों को अपनी पुरानी चीज़ें याद आती हैं, और उसका एक बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है। हम जो अपनी डे टू डे की चीज़ें, नाम याद रखना, जगह याद रखना, ये हमारा ब्रेन का जिस पार्ट को यूटिलाइज करता है, म्यूजिक हमारे ब्रेन के दूसरे पार्ट को यूटिलाइज करता है।
0: जी
1: तो अल्जाइमर्स हमारा इंसानों के नाम, डे टू डे चीज़ों का नाम, जगहों का नाम, इसको अफेक्ट करता है, लेकिन म्यूजिक सेंटर सबसे लास्ट में जाके अफेक्ट होता है।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: लोगों को अपने गाने याद रहते हैं और उस गाने से एसोसिएटेड जो मेमोरी है वो उनको याद आ जाती है।
0: हाँ
1: तो म्यूजिक थेरेपी इसमें काम करती है, बट अभी इस पे
0: हाँ
1: काम चल रहा है।
0: जी। तो म्यूजिक में मतलब, इसका मतलब कि म्यूजिक जो है इफेक्टिव है,
1: कह
0: ये
1: सकते
0: कह
1: हैं
0: सकते हैं। और इसीलिए भाई हमारे जो लिसनर्स हैं वो FM रेनबो का जो साथ है वो ऐसे ही पकड़े रहते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो होता ही होता है, जानकारियां पहुंचती हैं और एक से बढ़कर एक ट्रैक पहुंचते हैं। तो एक अंतराल लेते हैं और अंतराल के बाद एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक आप तक तो पहुंचाते हैं और लौट कर आते हैं और अपनी यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातों को जारी रखते हैं।
2: बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो। पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ,
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी, यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
6: LIC हर पल आपके साथ।

0: जी 12:51 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। और आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं एक एक्सपर्ट आरती यादव जी। तो हम उनसे बातें कर रहे थे और देखिए समय भी ना हमारे हाथों से बिल्कुल रेत की तरह फिसल रहा है, लेकिन इस बचे हुए समय में भी कुछ हम जरूरी बातें उनसे पूछना चाहते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं। तो मैम आज हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर की, तो आप ये बताइए कि इस बीमारी से खाने पीने का कोई संबंध है कि हम अपनी डाइट में क्या अच्छी चीजें लें, या कोई चीज ऐसी है जो हमें डाइट में नहीं लेनी चाहिए, और अच्छी चीजें लें तो हमारी याददाश्त को वो बढ़ाएंगी, तो कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं?
1: डाइट का कनेक्शन रहता है। देखा गया है कि अगर हम अपनी डाइट में विटामिन्स बढ़ा रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बढ़ा रहे हैं, प्रोटीन बढ़ा रहे हैं, तो इसके साथ में इसका रिस्क कम हो जाता है अल्जाइमर्स का। अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके में अगर फिश इंक्लूड कर रहे हैं उनमें भी रिस्क कम होता है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियंस हैं, तो ओमेगा 369 नाम का एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, बादाम वगैरह में मिलता है, वो इंक्लूड किया जा सकता है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स, जो सीजन के फ्रूट्स होते हैं।

0: इन चीज़ों को अगर अच्छे से ले रहे हैं तो इसका रिस्क कम किया जा सकता है। रही बात ऐसी चीज़ें जो इसका खतरा बढ़ाती हैं, नंबर वन पे आएगा किसी भी तरीके का नशा अगर कर रहे हैं,
1: जी बिल्कुल।
0: जिसमें से महिलाओं की अगर हम बात करें बहुत ही कॉमनली मिलने लगा है कि लोग निकोटिन ले रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में ले रहे हैं, और निकोटिन हमारे ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल है।
1: जी
0: निकोटिन के साथ में हमारे दिमाग में जो सप्लाई खून का जा रहा है उसकी मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, वो भी एक रिस्क को बढ़ाता है। सेकेंड, निकोटिन के साथ में बीपी की संभावना बढ़ जाती है,
1: जी जी
0: वो भी इस बीमारी का एक रिस्क फैक्टर होता है। तो नशे की आदतों से तो बिल्कुल दूर रहना है।
1: और एक क्वेश्चन ये भी है हमारे जहन में आ रहा है, और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनके जहन में ये जरूर से आ रहा होगा, उनके बिहाफ पे हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि अगर ये जो अल्जाइमर के संकेत अगर किसी महिला में दिख रहे हैं, मानिए छोटी छोटी चीजें वो भूलने लगी है, या पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी और अब अकर होने लगी हैं, तो इसमें क्या चीजें उनको ध्यान देने की जरूरत है कि वो चीजें आगे ना बढ़ पाए?
0: जो भी शुरुआती संकेत हैं उनको अच्छे से पहचाने कि हाँ हमारे साथ में कुछ गड़बड़ हो रहा है और मुझे मदद की ज़रूरत है।
1: जी
0: सेकंड, घर पे नहीं बैठना है, एक किसी एक्सपर्ट के लिए साइकेट्रिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट की मदद लें, क्योंकि इसमें जितनी जल्दी हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे उतना अच्छे से हम इसका इलाज करेंगे। इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं, हम लोग सामने से हिस्ट्री लेकर के, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, फिर उसके बाद में इमेजिंग टेक्निक्स हैं, सीटी एमआरआई है, आजकल खून की जांचें हैं,
1: जी
0: जिससे हम लोग इस बीमारी को कन्फर्मेशन कर लेते हैं कि हाँ अल्जाइमर्स ही है। तो इन सभी के साथ में उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है।
1: जी
0: तो घर पे नहीं बैठना है, हेल्प लेनी है।
1: तो अभी तक जो लोग ये सोच रहे थे कि अरे कोई नहीं, हम भूल रहे हैं तो अभी ठीक हो जाएंगी चीजें, तो इन चीजों को हल्के में नहीं लेना है, उसको सीरियसली लेना है। और अगर कोई ऐसी बात आपको लग रही है कि पहले नहीं ध्यान देना था लेकिन अब उस पे ध्यान देने की जरूरत है, तो आपसे हम ये कहना चाहेंगे। तो सहेली हूं, आज हमने बात की उन यादों की जो कभी कभी धुंधली हो जाती हैं, और उन्हीं धुंधली यादों को साफ और क्लियर रखने के लिए आज हमारी हेल्प की है डॉक्टर आरती यादव जी ने, तो उनको भाई थैंक यू कहना तो बनता है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियोज में आई और इतनी अच्छी जानकारी हमारी सखियों से साझा करी।
0: आपका भी धन्यवाद, मुझे इस स्पेशल टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शिखा भी आपसे लेती है इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस जुड़े रहना है और सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास। और मिलते हैं अगले प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में, तो बस जुड़े रहिए और सुनते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे FM रेनबो प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। दोपहर के 1 बजे हैं। अब समय हो चला है हमारे श्रोताओं के प्यारे प्यारे पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत का। आज के अनुरोध गीत के सुरीले और कर्णप्रिय सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी का नाम याद हो लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा हो, या बाइक की चाबी कहीं रख दी हो और ऐन जरूरत के समय याद ही ना आ रही हो कि कहां रख दिया है, या फिर इंटरव्यू के लिए गए हो और अपने डॉक्यूमेंट्स घर ही भूल गए हो? आज आपकी बात आकाशवाणी के साथ का विषय है, आपके वो जरूरी काम जिन्हें करना भूल गए, आप करने लगे हों आराम। इसी भूलने वाली आदत पर बात होगी दोपहर 2 बजे से। हमारे फोन नंबर 0581251700 पर, तो कॉल करके बताइएगा कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। अनुरोध गीत में सबसे पहला गीत है फिल्म विजयपथ का, आवाजें हैं साधना सरगम और साथियों की, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और पिट्टा बजाज। इसी गीत को सुनना चाह है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, अस्मा, सालिया, शुएब खान, सायमा खान, पोत्रा, मुस्तफा खान, पोत्री, अफिया खान, राउत भाई और शहीद भाई ने। गादीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर ने। ये पत्र

हमें आया है नया पारा भिरई जिला बालोड छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर सरोज ठाकुर ईश्वर राज ठाकुर का। इसी गीत को सुनना चाहा है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत शमरीन परवीन मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म विजयपथ का ये प्यारा सा गीत।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: प्यार झुकता नहीं, जी हाँ, इस फिल्म से हमने लिया है अगला गीत। और आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहे चार डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और शबनम बानो, बक्सर बिहार से राज SD अंसारी और फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, एयरपोर्ट रोड वन्ना नगर इंदौर से मध्य प्रदेश से आप हैं कुमारी वन्ना मराठा, भाव मराठा, गणेश मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे, परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी, मीरा सराय बदायूं से ये खाता में भेजा है आमरीन जमीर, जमीर खान ने, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता शर्मा, जगमोहन प्रजापति,

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म तेजाब से, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की, सुनने की फरमाइश है आप सबकी। रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे, बोर्नो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। गरीब नवाज कॉलोनी वन्ना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे। दिल्ली से आप हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर बेबी अंसारी। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। छत्तीसगढ़ भाटपारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, ज्ञावेंद्र कुमार वर्मा। और ये खत हमें भेजा है छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली यूपी से रामप्रचार शर्मा, जयश्री देवी, वंदना और मनोरमा देवी ने।

दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी का नाम याद हो लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा हो, या आपने अपनी बाइक की चाबी कहीं रख दी हो और ऐन जरूरत के समय याद ही ना आ रही हो कि कहां पे चाबी को रख दिया है, या फिर आप कहीं इंटरव्यू में गए हैं और डॉक्यूमेंट्स घर ही भूल गए हो। इसी बात पे आधारित है हमारा आज का आपकी बात आकाशवाणी के साथ, जिसका विषय है आपके वो जरूरी काम जिन्हें करना भूल आप करने लगे हो आराम, जिसे प्रेजेंट करेंगी शिप्रा मिश्रा और प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। तो आज हमारी भूलने की आदत पर बात होगी दोपहर 2 बजे। हमारे फोन नंबर 0582517200 पर, जिस पे कॉल करके आप बताइएगा कि आपके साथ कैसी घटना घटी थी। तेरी मेहरबानियां, इस फिल्म में आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार के युगल स्वरों में गीत। शब्द रचना है SH बिहारी की और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनने के लिए खत हमें भेजा है कट्टा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदरदेवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, किलद्राम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोही मौर्य, स्वाति मौर्य ने। नकासा रोड उसैद बदायूं से मसरूर खान, सुहेल, आकाश, यश, दीपक, अनिल, अंकित, ये फरमाइश हमें भेजी है मोहम्मद वक्कार फरीदी ने। मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से इनके साथ है मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजरानी और हिना कौसर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। तो सुनते हैं तेरी मेहरबानियां का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म इतिहास से, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और के पप्पू की, गीतकार है समीर और संगीतकार हैं दिलीप सेन समीर सेन। इसके लिए हमने खत भेजे हैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, प्रदीपाल नमन, विकास, संतोष, सूरज, वीरे सिंह चौहान और सोनू मिश्रा ने। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जबुनिशा बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान ने। ये खूबसूरत सा खत हमें भेजा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां ने। छत्तीसगढ़ भाटपारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, गैविन कुमार वर्मा ने। और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है सरगुजा एंड पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा ने। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। और ये फरमाइश है जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार की। तो आइए सुनते हैं इतिहास फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

इसी गीत को सुनना चाहा है मोहल्ला जसौली से इशरत खान, अमन मुनीर, रईस, राजू भाई, आजम खान, मास्टर सम्राट और अनाया ने।

दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी का नाम याद हो लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा हो, या आपकी बाइक की चाबी कहीं रख गई हो और ऐन जरूरत के समय आपको याद ही नहीं आ रहा है कि आपने वो चाबी कहाँ रखी है, या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हो और अपने डॉक्यूमेंट्स घर पे ही भूल गए हो? तो आज आपकी बात आकाशवाणी के साथ का विषय है, आपके वो जरूरी काम जिन्हें करना भूल आप करने लगे हो आराम, जिसको प्रेजेंट करेंगी शिप्रा मिश्रा और प्रस्तुति होगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। तो यही भूलने वाली आदत पर बात होगी दोपहर 2 बजे। हमारे फोन नंबर 0581-2517-200 पर। तो कॉल करके अपने विचार बताइएगा कि आपके साथ इस प्रकार की घटना कब हुई। बादल, इस फिल्म में आप सुनेंगे सोनू निगम और कविता कृष्ण।

कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में गीत, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अनु मल्लिक, और सुनने की फरमाइश है आप सभी। खुर्जा उत्तर प्रदेश से खत में भेजा है हमारे पुराने श्रोता तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा ने। आशर रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गांवकर राही, श्रीमती सरिता गांवकर, प्रिंस शेखांश गांवकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गांवकर, प्रणेता गांवकर, अर्जुन गांवकर। आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली, शैलेश गांवकर, सुमित गांवकर, कुमारी धोनी गांवकर, परी। अब है हमारे पुराने श्रोता चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा। मोहल्ला तलैया उड़ा जागीर से फजीरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, बाबू फौजी, पीएससी नकटिया से तारा चंद पबली ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म गुंडा राज से। आवाजें हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की। शब्द रचना है जफर गोरखपुरी की और धुन बनाई है अनु मलिक ने। सुनने की फरमाइश आप सबकी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया। इसी गीत की फरमाइश आई है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी से करगैना, बरेली से बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, राजकुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती उपति भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म जमाने को दिखाना से है, और इसके गायक कलाकार हैं शैलेंद्र सिंह और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत है, आर डी बर्मन का संगीत है और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी की। परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, अफील खान, मोहम्मद असलम सैफी। इसी गीत को सुना रहा है महादेव घाट, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश ठाकुर ने।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पे। लीजिए प्रस्तुत है रसरंग। रसरंग में पहली प्रस्तुति है तलत अजीज के स्वर में ये खूबसूरत गजल।

0: रस रंग। अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम, यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आप सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मधुमति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं परवरिश फिल्म से ये अगला गीत। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के बोल, दत्ताराम वाडकर का संगीत।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बाया हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं फागुन फिल्म के इस गीत में आशा भोसले को। कमर जलालाबादी ने से लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

0: फागुन फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले को, कमर जलालाबादी ने इसे लिखा ओपी नैयर की तर्ज।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओ

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: सीआईडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया।

0: पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सुनते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: पहले दे दो।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। चंचल वर्मा का और हम स्वागत करते हैं सखी सहेली कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का, सखियों का, सखाओं का। और नमस्कार नेहा आपको भी।
2: नमस्कार चंचल जी, आपको और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: तो आज इस मंच पर बहुत दिन बाद हम मिले हैं और बताते हैं कि आज किन विषयों पर हम मिलजुल कर बात करने वाले हैं अपने सुनने वालों के साथ।
2: हाँ, ये आपने सही कह दिया कि सुनने वालों के साथ किन विषयों पर बात करने वाले, क्योंकि हम तो आपस में बहुत सारे विषयों पर बात करने वाले हैं। लेकिन आज कथा सुधा में बड़े भाई साहब, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसका दूसरा भाग हम सुनने वाले हैं।
1: तो बिल्कुल हम इस बात को नहीं भूले हैं कि पहला भाग सुन चुके हैं सुनने वाले और दूसरा भाग सुनेंगे। तो भूलने से मुझे याद आया कि भूलने की जो धीरे धीरे शुरुआत होती है, आगे चलकर ये एक बीमारी में भी तब्दील हो सकती है। तो इसके शुरुआती लक्षण जब हो तभी से पहचान लेना चाहिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर या डिमेंशिया, इस तरह की बीमारियों की। और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है, इस पर कुछ बातचीत होगी।
2: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और मन में शांति बनी रहती जब अच्छा खाना खाने मिले, इसलिए प्रादेशिक व्यंजनों में आज हम लाए हैं कश्मीरी व्यंजन हाक साग और ल्योदूर चमन।
1: तो ये हाक साग जो है ना, कुछ कुछ पालक से मिलता जुलता साग होता है, लेकिन बनाने की विधि सबकी थोड़ी अलग होती है। तो हमारे श्रोता वो हमें भेज रहे हैं इसकी रेसिपीज, वो हम बाद में सुनेंगे और पढ़ेंगे इसे, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।
2: हाँ,

0: ये बहुत सुंदर गाना था ना, और बहुत दिन बाद जब ऐसा गाना सुनते हैं ना तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। बहुत दिन पहले गाना मैंने सुना था, और कहते ना कि हम भूले नहीं इस गाने को,
1: जी
0: और आज याद आई तो हमने लगा दिया।
1: तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने, हमें भी याद दिला दिया जो हम तो भूल ही चुके थे इस गाने को, या
0: देखो,
1: कहें कि हमें तो पता नहीं था इसके बारे में।
0: और क्या होता है जब कोई चीज हम किश्तों में सुनते हैं ना, इनकी एक भाग सुना ना सुना दूसरा, तो वो अधूरापन सा रह जाता है। इसी तरह
1: हाँ
0: से कोई कहानी है, आधी सुन ली हो आधी ना सुने, तो वो बड़ी उत्सुकता रहती है जानने की कि आगे क्या होगा। तो कथा सुधा में जिन्होंने ये कहानी पहले सुनी है, बड़े भाई साहब पहला भाग, तो
1: जी
0: उन्हें उत्सुकता है इसका दूसरा भाग सुनने की। तो देर नहीं लगाते हैं, सुनवा देते हैं कहानी।
1: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का

0: दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने सुना,
1: अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा,

0: की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
1: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
0: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
2: आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
0: लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन डाले, मैं और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे? लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस समय अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब कि भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था।

0: फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले,
1: अरे रे रे, इन बाजारी लाउंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिलचियों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिंटेंडेंट थे। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौओं के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे, मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजर्बा है। चाहे तुम एमए, डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं पढ़ पाए। लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने

0: अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ कमाया है और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं? यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1,000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम करता कौन है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं।
1: मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, जी हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले,
0: कनकवे उड़ाने को मन नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है।
1: संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक झुंड पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति

0: नेहा, अभी हम सुन रहे थे कथा सुतामय बड़े भाई साहब कहानी का दूसरा भाग, और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है।
1: जी
0: तो हमारे सुनने वाले भी बताएं कि क्या उनके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो चीजों को भूल जाते हैं और वो उनकी इस चीज को देखा अनदेखा कर रहे हैं। हमारी सखियां अक्सर कई बार अपनी चीजों के साथ में बहुत चीजों को हल्के में लेती हैं,
1: हाँ
0: और जब हल्के में हम चीजों को लेते हैं तो आगे चलकर वो कोई बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल हम सुन लें एक गीत।
1: जी

0: नेहा, अभी हमने सुना सीआईडी फिल्म का गाना जिसमें आवाजें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिलाइए दिन के 3:30 और 18 सेकंड हुए हैं। समय हुआ है एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: प्रसंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
3: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
3: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
2: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गांव से हुई थी।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
2: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
3: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
2: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
3: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
2: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
3: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
2: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड

0: की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
1: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है।

0: जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
1: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
0: मोटरगाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
1: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ताहाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
0: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
1: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
0: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
1: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
0: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
2: माँ।
3: हाँ बेटा।
2: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
3: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: हाँ पर
3: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
2: पर माँ हमारे
3: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
2: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
3: अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: लेकिन माँ सुनो ना।
3: अरे बेटा, मैंने कहा
2: सुनो। उफ माँ।
3: अरे बेटा, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: माँ।

0: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
1: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
2: लो बेटा, अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ क्या सोच रहे हो।
3: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
2: कुछ कर सकते हैं भाई, क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
3: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप

0: रख दे या लालटेन टांग दे।
1: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दे, इससे क्या होगा भला?
0: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
1: बेटा
0: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
1: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा? क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
0: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
1: लेकिन क्या बेटा?
0: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो। माँ दे दो ना, माँ दे दो।
1: अरे बेटा सुनो तो।
0: माँ एक लालटेन दे दो।
1: देखो बेटा इससे कुछ नहीं होगा। और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
0: अरे माँ लालटेन दे दो।
1: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो। देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है जैसा तुम सोचो।
0: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है? करके देखता हूँ। कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
2: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
3: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
2: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुँचा।
0: माँ माँ माँ।
1: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
0: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
0: नहीं माँ, एक भी नहीं।
1: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
0: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
1: हाँ ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
0: हाँ माँ,
1: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
2: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
3: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
2: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
3: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गाँव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गाँव का नाम रखा The Village of Lights।
2: Village of Lights, यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
3: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
2: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
3: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है,

0: या क्या कर सकता है। आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
5: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम?

0: वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है। चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताब थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
1: भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
0: मट्टू बोले,
2: हाँ हाँ जरूर।
0: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
2: देखो ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
0: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
3: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके और जाने कितना झूल चुके हो।
0: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
2: हाय ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
0: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
4: पढ़िए और समझिए।
0: कान लगाना,
4: ध्यान देना,
0: रक्कास
4: नाचने वाला,
0: ताब
4: ताकत बर्दाश्त,
0: हिंसा
4: नंबर अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक,
0: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे।
4: सवाल नंबर दो,
0: घड़ी की आवाज कैसी थी।
4: सवाल नंबर तीन,
0: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था।
4: सवाल नंबर चार,
0: चट्टू टिल्लू खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे।
5: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का ये भाग। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालें और अपने देश को, अपने समाज को स्वच्छ बनाए रखने में अपना अहम योगदान अवश्य दें। जल ही जीवन है, इसका संरक्षण करें, इसे व्यर्थ न बहाएं। हमें हमेशा याद रखना होगा कि जल का कोई विकल्प नहीं। देश की बगिया का सबसे महकता पुष्प हिंदी। वृक्षारोपण से करें धरा का

ये देश हमारा है। अपने देश की प्राचीनतम और पौराणिक धन संपदा का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है।

0: हिंदी से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से हमारी पहचान। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 एफएम पर। समय मिलाइए जरा, शाम के 4 बज गए हैं। हम लेकर हाजिर हुए हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपकी फोन कॉल्स को दिन में 2 बजे से 3 बजे तक रिकॉर्ड करते हैं। और आज कार्यक्रम में अल्जाइमर डे पर विशेष जानकारी लेकर हम आए हैं और इसके साथ आज शुरू करेंगे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी बरेली पर श्रोताओं, आज अल्जाइमर डे पर हमारे साथ आलोक जी जुड़े हुए हैं जो कि काउंसलर हैं मानसिक चिकित्सालय बरेली में। आलोक जी, आपका स्वागत करते हैं हम 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली पर।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आलोक, मैं मानसिक चिकित्सालय में काउंसलर के पद पे कार्यरत हूँ।
0: हम आज अल्जाइमर डे मना रहे हैं, इसको अगर हम सरल भाषा में अपने श्रोताओं तक पहुँचाएं तो इसका सही मायने क्या है, इसका सही मतलब क्या होगा?
1: बिल्कुल, हम अगर इसे सरल भाषा में, एक आम बोलचाल की भाषा में अगर इसे समझने की कोशिश करें, अल्जाइमर दरअसल ये देखा जाता है ओल्ड एज में, यानी जिनकी उम्र 55 या 55 साल से अधिक होती है। अब तो कुछ समस्याएं, कुछ डेमेंशिया की बेसिकली शिकायत होती है, कुछ ऐसा है कि कभी कभी ये चीजें 45 साल की उम्र के बाद भी दिखना शुरू हो जाती हैं।
0: अच्छा।
1: लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट के थ्रू, साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट के थ्रू देखा जाए, एविडेंस बेस्ड देखा जाए, यानी जो भी शोध है उसके बेसिस पे देखा जाए,
0: जी
1: तो ये 55 के बाद ज्यादा उजागर होती है।
0: अच्छा,
1: और
0: इसमें मुख्य जो परेशानियां होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे
1: हाँ
0: ज्यादा कॉमन और खास परेशानियां?
1: बिल्कुल, इसमें मुख्य परेशानियां होती है, जैसे कि आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो वो शुरुआत में कुछ चीजें भूलना, जैसे कोई सामान रख के कहीं भूल जाएंगे और वो सामान उन्हें याद नहीं आएगा।
0: जी
1: और कभी कुछ लोगों के जो फैमिलियर नेम है उस नेम को भूलना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे धीरे धीरे ये सिचुएशन अगर आप शुरुआत में आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो सिचुएशन इतनी बदतर हो जाती है कि वो अपना भी नाम भूल जाते हैं, और
0: अच्छा
1: उसके साथ साथ उनकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने खाना खाया उसको भी भूल जाते हैं, वो वॉशरूम गए यूरिनेट करने उसको भी भूल जाते हैं।
0: अच्छा आलोक जी, नॉर्मली हम देखते हैं कि अब हम घर की महिलाओं से ही ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो जगह जगह कुछ रख कर भूल जाती हैं, फ्रिज में कुछ उन्हें और निकालना होता है, फिर वहां खड़ी रहती हैं फ्रिज का दरवाजा खोलकर कि मुझे निकालना क्या था, तो क्या इसे भी अल्जाइमर की समस्या कह सकते हैं? और ये
1: नहीं,
0: जी
1: इसे हम कतई अल्जाइमर की समस्या नहीं कहेंगे। अल्जाइमर सबसे मेन मुख्य लक्षण इसका है कि ये एज ढलने के बाद होता है।
0: अच्छा
1: अगर आप 55 के ऊपर जा रहे हैं, 60 की उम्र के करीब पहुंच रहे हैं, तो ये समस्या देखने को मिलती है। अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है कि बहुत पहले देखने को मिल जाए, कोई रेयर केस छोड़ के।
0: अच्छा, तो अगर इस उम्र से पहले की जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, कोई बाइक की चाबी रखकर भूल जाता है, कोई कुछ, तो इसको हम अल्जाइमर नहीं बोल सकते?
1: नहीं, उसे हम अल्जाइमर नहीं बोल सकते, उसे अटेंशन लैक बोल सकते हैं कि आपका अटेंशन लैक हो गया या किसी और कार्य में आप बिजी हो गए हैं जिसकी वजह से आप वो उस टास्क को भूल चुके हैं, या फिर आपके ब्रेन से थोड़ा सा स्लिप हो गया है, कैसे?
0: जी, और अमूमन जैसा भी आपने बताया कि जो है इसकी भी एक अवधि यानी के समय सीमा आपने बताई, एज लिमिट बताई कि लगभग 45 के बाद या 50-55 के बाद ये ज्यादा समस्या रहती है इस चीज की,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो इसका
1: समस्या इसलिए होती है,
0: जी
1: रीजन ये होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है ये न्यूरोलॉजी और ब्रेन केमिकल्स के थ्रू चलता है। तो बेसिकली इसमें होता यह है कि जैसे जैसे एज ढलती है कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन

0: होते हैं और कुछ सेल डैमेज होती है,
1: हम्म,
0: और जो अगर डैमेज एक बार स्टार्ट हो गया तो बहुत तेजी से फैलना शुरू होता है और
1: अच्छा, तो
0: अफेक्ट
1: ऐसे
0: कर
1: इस समय पर अगर इसका सही और सुचारू इलाज मिल जाए तो इस समस्या का निदान हो सकता है।
0: कंप्लीटली क्योर अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन
1: जी
0: अगर आप टाइम पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कोई आपके घर में बुजुर्ग हैं और वो
1: हम्म,
0: आपसे शिकायत कर रहे हैं कि बेटा मैं ये चीज भूल गया हूँ, बेटा मैंने ऐनक रख के भूल गया, मुझे पता नहीं चल रहा है, और एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो
1: हम्म,
0: आपको इमीडिएटली तुरंत जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना जल्दी ही नजदीकी के किसी मानसिक चिकित्सालय में जाके आप संपर्क करें, नहीं तो टेलीमानस 144 16 हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। वहां पे सारे के सारे काउंसलर ट्रेंड हैं, जिनकी
1: जी
0: ट्रेनिंग निमहांस के द्वारा, अपेक्स सेंटर निमहांस के द्वारा ट्रेनिंग की गई है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने। और चलते चलते क्या सावधानियां बताना चाहेंगे इस बीमारी से जुड़ी हमारे श्रोताओं के लिए?
0: जी, सावधानियां यही है कि जब भी कोई आपके घर के कोई बुजुर्ग अगर इस तरह की शिकायत करें तो आप ध्यान दें और इस बात को सीरियसली लें, उन्हें उस एज के द्वारा ये ना कहें कि ये एज है और ये इस तरह के जो सिम्टम्स है ये नाटक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं और इसको सीरियस लें, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में इसका इलाज नहीं कराया तो समस्या बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है, जो आपके लिए आपके परिवार के लिए कतई अप्रोप्रिएट नहीं होगी।
1: जी,
0: तो
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा की। क्योंकि आलोक जी, हम समझते हैं कि इस बीमारी से जुड़ी बहुत सी भ्रांतियां भी लोगों में हैं, और उन सभी का आपने बहुत अच्छा निदान दिया है, बहुत अच्छा परामर्श दिया है। बहुत बहुत
0: बिल्कुल
1: धन्यवाद
0: बिल्कुल,
1: आपका।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
1: तो साथियों, इस अहम जानकारी के बाद आज अल्जाइमर डे के उपलक्ष्य में हमने अपना आज का विषय रखा है, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। आपके वो जरूरी काम जिन्हें करना भूल आप करने लगते हो आराम। तो आपको वो ऐसे काम बताने हैं जो को आपको पूरे करने थे लेकिन आप नहीं कर पाए, उनको भूल कर किसी और काम में लग जाते हैं या आराम करने लगते हैं, बताना कहाँ है। तो देखिए, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं दिन में 2 बजे से। फोन नंबर वही है 0581251700। वही फेसबुक पर भी हमारी जो पोस्ट है उस पर आप आज के विषय से जुड़े कमेंट्स कर सकते हैं और हम आपके उन कमेंट्स को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि पहले कौन से श्रोता हमसे जुड़ी हुई हैं और इस विषय को लेकर क्या मानना है इनका। जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, अपना नाम बताएं।
2: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैं
1: गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताइए।
2: शालिनी बात कर रही हूँ फतेहगंज पूर्वी से।
1: शालिनी बात हमसे कर रही हैं फतेहगंज पूर्वी से। तो शालिनी, आप क्या करती हैं?
2: जी मैं कार्चो पढ़ती
1: कारचोभी करती हैं शालिनी।
2: हूँ। जी,
1: तो शालिनी बताइए, ऐसे कोई काम जो जरूरी काम थे और आप करना भूल जाती हो, उन्हें करते हुए काम को छोड़कर और आराम आराम करने लग जाती हो, ऐसे कोई काम आपको याद है अपने?
2: ऐसे तो लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि घर का काम अगर होता है तो बहुत सारे ऐसे पूरे दिन में इंसिडेंट हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जब ये कार्टून का काम करती हूँ तो इसका प्रेशर ना थोड़ा ज्यादा होता है मेरे पे, क्योंकि ये काम जल्दी जाने का होता है। इसकी वजह से मेरी मम्मा के बैक साइड में पेन होता है, तो एक बार उन्होंने मुझसे बोला था कि मेरे ऑयल मसाज कर देना नाइट में, तो मैं सीरियल देखने के लिए बैठ गई थी, उनका ऑयल मसाज नहीं कर पाई। जब सीरियल खत्म हो गया तो मैं लेटने के लिए आ गई, मैं सोने लग गई। फिर रात में मुझे ध्यान आया कि अम्मी ने मुझसे कहा था कि ऑयल मसाज कर देना, तो फिर मैंने नाइट में ही जाकर उस बात को गौर फरमाया और अम्मी के ऑयल मसाज किया।
1: तो इसे तो हम लापरवाही कहेंगे, है ना?
2: जी, अब मुझे
1: चलिए,
2: इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए था कि अम्मी ने जब ये काम से बोला था तो मुझे जरूर पूरा करना चाहिए था, लेकिन सीरियल के चक्कर में मैं भूल गई।
1: सीरियल के चक्कर में आप काम भूल गई, कोई नहीं, हमारा उद्देश्य बस इस जो बीमारी है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है और आप जैसे श्रोताओं से थोड़ी गुदगुदी बातें कर लेनी है।
2: लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम की वजह से, मुझे तो ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो भी मुझसे काम कहा जाता है मैं वो काम जरूर फॉलो करती हूँ, कभी कभी मेरे साथ हो जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी अपनी मेंटल हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारी बॉडी का एक ऐसा मेन हिस्सा है जो बहुत ही जरूरी होता है उसको हेल्दी रखने के लिए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपका हम सभी के लिए। तो बताइए, आज आपको गीत कौन सा सुनवा दें?
2: जी, मूवी का नाम है गुप्त और गाने के बोल हैं ये मेरे सनम तुझको मेरी कसम।
1: बिल्कुल हम

0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: मैं ये कहना चाहूंगी कि आज मेरी फर्स्ट टाइम इन कॉल लगी, तो इसकी हैप्पीनेस को मैं फील कर रही हूँ, तो इसकी वजह से आप ये सॉन्ग प्लीज पूरा देना।
0: बिल्कुल, जब हमारी ये श्रोता पहली बार हमसे जुड़ी हैं तब तो हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे और आप तक।

0: जी, शिप्रा जी को प्यार भरा नमस्कार।
1: आपको भी बताइए राम बाबू जी, कोई
0: जी
1: ऐसा काम जो आप भूल गए हो, आराम करने बैठ गए हो?
0: जी एक बार की बात थी, मुझे बरेली ही जाना था और सुबह के लिए चाय पी, खाना खाया, खाना खाने बाद में ना मालूम क्या हुआ, एकदम से हम लेट गए, सो गए।
1: अच्छा, आराम
0: और
1: करने लगे।
0: जी उसके बाद में फिर जब बच्चों ने जगाया, ध्यान दिलवाया, तब अरे हमने, हाँ हमने बिल्कुल जाना है। तब उस समय ये 2024 की बात थी और सावन का महीना था और
1: जी
0: ठंडी चल रही थी, तब एकदम से भागना पड़ा था माली बरेली।
1: अच्छा, उस समय आपकी एज, उम्र आपकी क्या रही होगी?
0: उस समय 60 में थे हम।
1: 60 में थे। तो जैसा कि
0: जी
1: हमारे आज के जो स्पेशलिस्ट से हमने कार्यक्रम में सबसे पहले उनकी टॉक आप तक पहुंचाई थी, तो उनका मानना
0: जी
1: है कि जो अल्जाइमर की समस्या है वो लगभग 45-50 के बाद देखने में आती है। तो
0: जी जी जी
1: यदि
0: हाँ
1: ऐसे कोई लक्षण है तो हम चाहेंगे कि आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाएं राम बाबू जी।
0: ना ना, ऐसे कोई लक्षण हमें नहीं है जी,
1: जी,
0: ऐसे कोई लक्षण नहीं है।
1: तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता स्वस्थ रहें और सुनते रहें आकाशवाणी बरेली। तो बता दीजिए, आज कौन सा गीत सुनवा दें?
0: ये वो फिल्म धर्मात्मा का गाना है, मेरे चेहरे में वो जादू है, बिंदु खिंचाता हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गीत का आपका चयन है। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो श्रोताओं, आज अल्जाइमर डे के उपलक्ष्य में हमारा आज का ये विषय है कि आपके वो जरूरी काम जिन्हें करना भूल आप करने लगे हों आराम। तो आपको ऐसे उस काम का जिक्र करना है जो बहुत जरूरी रहा हो लेकिन आप करना भूल गए हों, और इसी विषय को लेकर देखते हैं हमारे ये श्रोता क्या कहते हैं। जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं रामबाबू मिश्रा बोल रहा हूँ। विरामबा पोस्ट लोटा खंडुआ, तहसील आंवला, जिला बरेली।
0: राम बाबू मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके कमेंट्स तो अक्सर मिलते रहते हैं हमें।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं?
1: हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं।
0: जी ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया जो कि हमारे नियमित श्रोता हैं, हमसे जुड़ चुके हैं, कैसे हैं कठेरिया जी?
1: बहुत बढ़िया हैं और भगवान की कृपा से आप भी सब परिवार कुशल होंगे।
0: जी हम सभी कुशल मंगल हैं।
1: कुशल पूर्वक हैं
0: जी, हम सभी कुशल मंगल हैं और आपकी कुशलता की भी कामना करते हैं। तो बताइए कठेरिया जी कि आपका कोई जरूरी काम जिसे आप करना भूल गए हो, उस काम का जिक्र करिए हमसे।
1: जी बहुत अच्छा आज का विषय
0: जी।
1: ऐसा तो कई बार हो चुका है, मैं आज की बात बता रहा हूँ। जब तो गर्मी पड़ी थी तो माया जल्दी से मैंने सोचा स्नान कर लूँ, मैंने मोबाइल जेब से निकाल कर रंग पर रख दिया, ऊपर से कपड़े रख दिए, उसके ऊपर मुझे ध्यान नहीं गया
0: मोबाइल फोन के ऊपर।
1: स्नान करके मैं आया, मोबाइल को हर जगह ढूंढ, परेशान हो गया
0: जी।
1: मैंने लड़के से कहा कि मेरे मोबाइल का नंबर लगा कहाँ है, जब उसने नंबर लगाया घंटी गई तो मुझे याद आया, तो मैंने मोबाइल उठाया और अनुरोध गीत कार्यक्रम सुना था मैंने
0: जी। अच्छा ऐसे में अब इतने हम लोग आदी हो गए हैं फोन के कि अगर जरा देर को भी फोन हमारे हाथ से दूर हो जाए तो बेचैनी हो जाती है कि न जाने क्या हमसे छूट रहा है ना?
1: जी हाँ जी हाँ।
0: चलिए
1: इसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत इससे लाभ है।
0: बिल्कुल, हर चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। अब ये हमारे हाथ में है कि हम उसका किस तरह से इस्तेमाल करें, है ना?
1: जी हाँ।
0: तो बताइए कठेरिया जी आज गीत कौन सा सुनवा दें आपको?
1: गीत सुनेंगे फिल्म घटना गाना है, हजार बातें कहे जमाना मेरी बफा पे अधीन रख।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: 104 FM आकाशवाणी बरेली से आप सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। तो श्रोताओं, आज अल्जाइमर डे पर विशेष हमारा ये कार्यक्रम है और आज के विषय को लेकर जानते हैं ये श्रोता क्या कहते हैं। हेलो।
1: हेलो सर, आकाशवाणी
0: जी, आकाशवाणी बरेली से हम बोल रहे हैं।
1: अशफाक बोल रहे हैं सर।
0: अशफाक जी कहाँ से हैं?
1: चनेटा कैंट से।
0: चनेटा कैंट से अशफाक जी हमसे जुड़े हुए हैं। आपकी कॉल जो है आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में लगी है। तो अशफाक जी।
1: हाँ सर।
0: जी हमें बताइए कि ऐसा कोई आपका जरूरी काम जो आपको करना था समय से लेकिन आप भूल गए हो, उस काम का जिक्र करिए हमसे।
1: हम सर दवा लेने गए अभी करीब 15-16 दिन पहले। और दवा लेके हम मेडिकल पे भूले आए।
0: अच्छा।
1: दोबारा गए साहब पे लेके आए। ऐसे भूल, कई भूल हो जाती है। हमारा जो दिमाग जो है, उम्र जो है करीब 60-62 साल की हो गई है।
0: तो कहीं ये अल्जाइमर के लक्षण तो नहीं?
1: ऐसा सर कहीं कुछ नहीं है, थोड़ी तकलीफ है इसलिए जो है दिमाग काम नहीं करता सर।
0: पर हमारा सुझाव आपको ये है कि
1: डॉक्टर को दिखाया सर।
0: जी जी हाँ, यही हमारा सुझाव था।
1: इलाज करा रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। आपसे आपके लिए हम ये कामना करते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो बताइए अशफाक जी, आज आपको गीत कौन सा सुनवा दें?
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हाँ जी,
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार। आकाशवाणी बरेली से। जी
0: जी, आकाशवाणी बरेली से आपने इस कार्यक्रम में फोन लगाया है, नाम
1: जी
0: बताइए।
1: जी सुरेश मिश्रा,
0: सुरेश मिश्रा कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मणिनाथ से, मणिनाथ बरेली।
0: जी, मणिनाथ बरेली से सुरेश मिश्रा हमसे जुड़े हुए हैं। तो मिश्रा जी, बताइए कि आज अल्जाइमर डे पर हमारा विशेष कार्यक्रम है कि आपका वो जरूरी काम जिन्हें करना भूल आप करने लगे हो, आराम, उसका जिक्र करिए।
1: जिक्र क्या करें, ये एक्चुअल में होता क्या है,
0: जी
1: 60 वर्ष की आयु में लगभग,
0: जी
1: कुछ पहले किसी को, बाद में किसी को पहले, ये एक तरह की बड़ी अजीबोगरीब बीमारी हो जाती है।
0: तो आपके साथ ऐसा कौन सी घटना हुई जो जरूरी काम आप करना भूल गए हो, उसका जिक्र करिए।
1: अरे, एक ग्राहक आया, उसने 100 का नोट दिया और हमने
0: जी,
1: उसे 400 रुपए वापस दे दिए।
0: अरे भाई, वे तो
1: और
0: नुकसान हो
1: ग्राहक
0: गया।
1: बोला कि ऐसा क्यों कर रहे, अरे
0: जी
1: हमने कि आपने 500 का नोट नहीं दिया। अरे बोले, नहीं बाबू जी, हमने 100 का ही दिया है। तो ऐसे ऐसे तो हमारे साथ किस्से हो चुके हैं। तो
0: जी तो
1: अगर सामने वाला हमें याद ना दिलाए तो हम भूल जाते हैं।
0: जी, तो कहीं ये अल्जाइमर के लक्षण तो नहीं है?
1: अब अल्जाइमर के तो नहीं है, थोड़ा सा अब कोशिश करी है, थोड़ी सी याददाश्त हमारी मेंटेन रहे,
0: जी
1: योग व्यायाम में थोड़ा सा हमने अपने आप को मेंटेन किया है, अनुलोम
0: जी
1: विलोम है और कपालभाति है, इसको हमने जरा थोड़ा सा बढ़ाया है, तो अब
0: बिल्कुल
1: ऐसी दिक्कतें कुछ कमी आ गई है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश हम सभी के लिए। और बताइए, आज आपको गीत कौन सा सुनवा दें?
1: गीत सुनवाइए, काहे जिद कर रही पार्वती,
0: हनुमान अंश का। बिल्कुल,
1: हनुमान अंश का। जी
0: बहुत सुंदर गीत का चयन आपका, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।

0: बम भोले भोले बम भोले।
1: तो श्रोताओं, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं आज के विषय को लेकर। जानते हैं क्या मानना है इनको। हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, नाम बताएं अपना।
2: बिल्कुल बताऊंगा। तेरे बाद किसी से दिल लगाया ही नहीं, तेरे बाद किसी से दिल लगाया ही नहीं, एक दर्द जो था वो किसी को दिखाया ही नहीं। लोग पूछते रहे वजह मेरी, और मैंने जो नाम तेरा था किसी को बताया ना था।
1: बहुत सुंदर। और विमल जी हैं शायद, है ना?
2: बिल्कुल मैम, मैं विमल बात कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट तहसील ठाकुर से। नमस्कार
1: जी, आपको भी सब प्रेम नमस्कार। बताइए विमल जी, कैसे हैं पहले तो ये बताइए।
2: मैं ठीक हूँ मैम, और आशा करता हूँ कि आकाशवाणी परिवार में सभी सदस्य अच्छे से होंगे।
1: बिल्कुल, आपके आशानुरूप हम सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से हैं। तो बताइए, आपका कोई जरूरी काम जिसे आप करना भूल गए हो, उस चीज का जिक्र करिए हमसे।
2: बिल्कुल मैम, मैं बताना चाहूंगा, आज का ये टॉपिक भी बहुत अच्छा शानदार टॉपिक रखा कि भूलने के बारे में। तो एक बात क्या हुआ?

0: मैं एक जरूरी काम था, बधाई चल रहा था, और मॉर्निंग टाइम जब मैं उठा और खाना वाना खा लिया अपना सब काम ठीक हो गया, तो जब मोटरसाइकिल की देखा तो चाबी बिल्कुल मैं भूल गया ढूंढना, भूलना भूल गया, और उसे ढूंढते ढूंढते कहीं चाबी ना मिली थी।
1: ये अक्सर होता है,
0: उसका समय निकल गया काम का, तब कहीं जाके चाबी मिली जाके।
1: अच्छा, और फिर कहाँ मिली चाबी, मतलब एकदम सहजता से सहज जगह पर रखी हुई मिली या कुछ वाकई में?
0: बिल्कुल, बिल्कुल मैम, चाबी बहुत अच्छी जगह पर रखी थी जो अलमारी थी, और उसके फोटो के पीछे एक फोटो रखा रहता था शंकर भगवान का
1: जी,
0: उस फोटो के पीछे चाबी रखी थी और चाबी ढूंढते रहा, अदर जगहों पर मिली नहीं।
1: हाँ, ऐसा अक्सर होता है। तो बताइए बिमल जी, फिर तो आपको इस बात पे बड़ा पछतावा भी हुआ होगा और हंसी भी आई होगी।
0: मैम, काम ऐसे होते हैं जो समय से समय के अनुरूप किए जाते हैं, जैसे कि मान लो कोई अगर आ रहा है तो वो समय पर नहीं आता है, कई काम ऐसे होते हैं, तो उन कामों में हमें देखना चाहिए कि हर समय जो अपना सामान रखा है कुछ उचित जगह पे रखें और उसे सही से रखें, क्योंकि कभी भूलना तो हर किसी को आजकल इस भागदौड़ भरी भरी जिंदगी में मैम देख रहा हूँ अधिकतर आदमी मोबाइल के जरिए जो मोबाइल देखते हैं उसके जरिए काफी लोग भूल रहे हैं, क्योंकि लोड कुछ ज्यादा ही शारीरिक पर पड़ जाता है मैम।
1: जी, तो आज बताइए गीत कौन सा सुनवा दें आपको?
0: मूवी का नाम रहेगा आराम जाने, इसी के टाइटल पर सुनवा दीजिए, पढ़ाई मेरा नाम जाने कहते हैं उसको, राम जाने, ये सॉन्ग सुनवा दीजिए।
1: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं।

तो श्रोताओ, ये तो थी वो फोन कॉल्स जो हमें दिन में मिली और हमने रिकॉर्ड की, और साथ ही आपसे गुजारिश और करेंगे वो ये कि अब जिन श्रोताओं के फोन कॉल्स कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वो कृपया एक सप्ताह के अंतराल के बाद हमें दोबारा कॉल करें। और अब फेसबुक की ओर चलें क्योंकि यहाँ पर भी आज के विषय को लेकर बहुत सारे कमेंट्स हमें मिल चुके हैं, शामिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट राम कुमार रेवाड़ का हमने शामिल किया है, ये लिखते हैं, प्रतिदिन जिस कार्य का संकल्प लेते हैं वह कार्य हम पूर्ण करते हैं, जिस कार्य के प्रति लगन ना हो वो कार्य हम करते ही नहीं हैं और भूलते भी नहीं हैं। परिवार जी, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं होता होगा कि दैनिक जीवन में हम कोई कार्य भूलते ही ना हो, संभवतः आपको याद नहीं आता होगा इस समय। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे हैं शहरुन्नूर अंसारी ग्रामा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आराम करने का बहुत कम मौका मिलता है भाई,

भर काम काज में लगे रहने के बाद जो थोड़ा सा वक्त मिलता है तो दिल करता है कि कुछ देर आराम कर लिया जाए, लेकिन कभी कभी इसी आराम के चक्कर में कोई जरूरी काम ही याद नहीं रहता। मन होता है कि पहले थोड़ा आराम कर लूँ फिर वह काम कर लूँगा, मगर आराम करते करते वक्त निकल जाता है और मैं काम करना भूल जाता हूँ। फिर जब घर पर कोई याद दिलाता है कि अरे जरूरी काम भी तो करना था, तब अचानक याद आता है कि अरे हाँ मैं तो ये काम भूल ही गया। बस फिर क्या है, घर वालों की डांट सुननी पड़ती है। उस वक्त लगता है कि थोड़ी सी देर का आराम तो अच्छा था, लेकिन जरूरी काम भूल जाने की वजह से परेशानी बढ़ गई। और इससे मैंने एक बात सीखी है कि आराम भी जरूरी है और जिम्मेदारी भी। इसलिए अब कोशिश रहती है कि पहले जरूरी काम पूरा कर लूं और उसके बाद इत्मीनान से आराम करूंगा, ताकि ना काम छूटे और ना घर वालों की डांट सुननी पड़े। इसी छोटी सी आदत ने मुझे ये सिखाया है कि सुकून तभी अच्छा लगता है जब जरूरी जिम्मेदारियां पूरी कर ली जाएं। वाकई में सुकून तो तभी अच्छा लगता है और सुकून को भी सुकून मिलता है। और अब है भेरूलाल बाक्तरिया धाकड़, उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। आप लिखते हैं, आज से लगभग 25-30 वर्ष पूर्व मैं आकाशवाणी केंद्र पर बहुत फरमाइशी और प्रतिक्रिया वाले पत्र लिखता था। उन दिनों स्थानीय आकाशवाणी केंद्रों से साप्ताहिक कार्यक्रम ज्यादा होते थे। कई बार मैं पत्र तो लिख लेता था किंतु उन्हें पोस्ट ऑफिस के लाल डिब्बे में डालना ही भूल जाता था। इस तरह हमारा पत्र सही समय पर पहुंचता ही नहीं था। और चलिए, बहुत अच्छे आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए। आप क्या कहते हैं, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं आप, हिमकेश्वर साहू। जरूरी कामों को छोड़कर आराम करना अक्सर क्षणिक सुकून देता है, लेकिन बाद में काम का बोझ और तनाव बढ़ा सकता है। आराम जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी से भागकर किया गया आराम सुकून नहीं बल्कि पछतावा देता है। पहले जरूरी काम पूरा करें, फिर आराम का आनंद और भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, जो हमने अभी ऊपर कमेंट पढ़ा वो भी शायद यही कहना चाहते हैं। और विष्णु मस्कीन जी क्या कहते हैं, इनके साथ हैं रितिका आरववाणी, पूरा मस्कीन परिवार है। और पता बता देते हैं इनका, पहले दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से हैं आप। ये लिखते हैं, कभी कभी जिंदगी में आराम इतना प्यारा लगने लगता है कि जरूरी काम भी हमें देख कर कहते हैं, भाई हमारा नंबर कब आएगा। मेरे भी कुछ जरूरी काम ऐसे हैं जिन्हें करने का सोचता तो हूँ पर पहले मेरे हाथ में मोबाइल आ जाता है, फिर एक वीडियो, उसके बाद दूसरा वीडियो, तीसरा, चौथा, पांचवा, और देखते देखते काम अपनी जगह और मैं आराम की जगह। फिर मन कहता है कि काम तो कल भी किया जा सकता है, लेकिन फोन आज ही देखना है ना। लेकिन इतना शानदार आराम रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। बड़ा ही गुदगुदाने वाला इनका जो कमेंट है, इनके जो विचार है हम सभी तक पहुंचे। इसके बाद हमारे इन श्रोता ने तो बस फरमाइश लिखी है, हम आपका कमेंट शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये फरमाइश का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है। और ये दूसरे श्रोता ने भी सिर्फ फरमाइश भेजी है, आपको विषय से जुड़े अपने विचार लिखने थे। और आगे बढ़ते हैं तो वारिस अली खान जी हैं संजयनगर अशवाक लखनऊ से, आदाब लिखते हैं आपको भी। आज का विषय बहुत रोचक है। बात उन दिनों की है जब यूपी बोर्ड एग्जाम का वक्त सुबह 7 से 10 और शाम की पाली का वक्त 3 से 6 हुआ करता था। बिल्कुल, आपने हमें हमारे दिनों की याद दिला दी, कुछ ऐसा ही समय हमारे समय भी था। ये लिखते हैं, उस समय हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था। एक दिन 2 पालियों में मेरी परीक्षा पड़ गई। सुबह की पाली का एग्जाम देकर और मैं भूल गया कि द्वितीय पाली में भी मेरी परीक्षा है और मैं सो गया। अचानक मेरे पिताजी ने 2 बजे मुझे जगाया कि अरे तुम्हें परीक्षा देने नहीं जाना है। मैं आनंद फानन में सेंटर पहुंचा और जब तक देर हो गई थी मुझे परीक्षा देने से रोक दिया गया और इस वजह से मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। ये तो दुखद बात रही आपके साथ। और अनोखे लाल जी कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से हैं, ये लिखते हैं, आपको बताएं कि जो जरूरी काम है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, बस करना है तो करना ही है। हाँ, कुछ छोटे मोटे काम जिनसे

लाभ नहीं हो रहा है, जैसे कि किसी से फ़ोन पर बात करना हो, मतलब कि कोई बुला रहा है, समय की बर्बादी हो रही है। तो बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा करना और ऐसी बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हम आराम करना उचित समझते हैं। अनोखे लाल जी कहते हैं भैया, और हमारे इन श्रोता ने भी फरमाइश लिख भेजी है, इन्होंने भी फरमाइश ये लिखी है, ऐसा ना किया करें साथियों। चलिए राम बाबू मिश्रा जी क्या कहते हैं, आप ग्राम पोस्ट गोठा खंडुआ से हैं, इनके साथ हैं कृष्णा देवी, शीतल मिश्रा, राधा मिश्रा, सलोनी मिश्रा और शिवम मिश्रा। विषय अति उत्तम है, धन्यवाद। तो आपको बताएं कि जो जरूरी काम है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। इन्होंने कुछ वही रूपरेखा लिख भेजी है जो इससे पहले हमने पढ़ी थी, पढ़ देते हैं। ये लिखते हैं वही चीज कि चाहे मौसम हो धूप का या बारिश का, हम काम ज़रूर करते हैं और बेमतलब की चीज़ों की यानी कि लड़ाई झगड़ा इन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उससे अच्छा हम आराम समझते हैं। इसके बाद लिखा है आवश्यक कार्य करो, अनावश्यक कार्य पर ध्यान मत दो, उससे तो अच्छा है कि घर में आराम करो। इसके बाद ये हमारे साथी जो हैं उनका कमेंट हम बाद में शामिल करते हैं, पहले काफ़ी समय हो गया ना, आपको गीत सुनवा देते हैं।

तो चलिए इस गीत के बाद एक आखिरी कमेंट और बचा है, पढ़ देते हैं। तो आप हैं जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ, तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश से। विनोद नारायण कुशवाहा, ऋषि नारायण कुशवाहा, आज का विषय बहुत शानदार है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लिखते हैं, हम लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो बहुत से काम भी होते हैं खेती बाड़ी में, और कुछ काम हमको याद रहकर भी भूल जाते हैं। अब एक घटना का जिक्र किया है उन्होंने कि जैसे कि एक बार की बात है कि हमें जो है खेत में दवाई लगानी थी, और हमने क्या किया, खेत में गए और खाना खाया और सो गए और हम भूल गए।

कि हमें दवाई भी लगानी थी। बाद में जब ये जगे होंगे तब इनको लगा होगा कि अरे इतना समय निकल गया और हमने दवाई तक नहीं लगाई। साथ में लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। बिल्कुल, ये स्वाभाविक है भाई, हमारा मानव जीवन है और बहुत से कार्य होते हैं दैनिक जीवन में, और स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ तो हम भूल ही जाते हैं। अब वो बात बस इतनी है कि वो जो भूल है वो छोटी है या बहुत बड़ी है। वैसे आपको बताएं श्रोता, आज जब फोन कॉल्स आपकी रिकॉर्ड कर रहे थे तब एक हमारी श्रोता ऐसी भी थी जिनसे हमारी बात हुई, हालांकि उनकी पूरी पूरी जो है फोन कॉल्स रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसीलिए कार्यक्रम में शामिल भी नहीं कर पाए, लेकिन उनसे एक बड़ी अच्छी सी बात सामने आई आज के विषय को लेकर। उन्होंने कहा था कि हम तो अक्सर जब खाना बनाते हैं तो सब्जी में नमक डालना ही भूल जाते हैं। और ये सोचकर हमें गुदगुदाने को ये बातें उनकी विवश करती हैं कि जब ऐसी स्थिति आती होगी, सभी भोजन पर बैठते होंगे और भोजन में जो है नमक ही नहीं होता होगा तो क्या रहता होगा, है ना। चलिए कोई नहीं, ये सब बातें लगी रहती हैं और इन गुदगुदी बातों के साथ हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि आप जो है आज की जो हमने जो बीमारी थी उसका जिक्र किया, उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम उसके प्रति आप सभी को जागरूक कर सकें, सतर्क कर सकें। और इस विषय पर बहुत अच्छे अच्छे विचार आप सभी ने हमसे साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते पहुंचा देते हैं आप तक एक गीत।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम का समय पूरी तरह से समाप्ति की ओर, लेकिन हमें इंतजार आपकी प्रतिक्रियाओं का। एड्रेस बता देते हैं आपको, ईमेल के जरिए भी अपनी प्रतिक्रियाएं आप अब तक भेज सकते हैं। एड्रेस नोट कीजिए, आपका पत्र मिला @bareilly@gmail.com। वहीं एक और नया व्हाट्सएप नंबर हम आप तक पहुंचाते हैं, जहां आप आपका पत्र मिला लकी 3 और मनभावन कार्यक्रम के लिए प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। नंबर नोट कीजिए, 9457395859। फिर से बता देते हैं नंबर, तो लीजिए फिर से बता देते हैं, 9457395859। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप आपका पत्र मिला लकी 3 और मनभावन कार्यक्रम के लिए अपनी शब्दावली, अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। तो अब कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ 100.4 FM पर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, और अब एक नजर हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कार्यक्रमों पर। तो अब से कुछ ही देर में यानी कि 5:30 पर नारी संसार कार्यक्रम हम लेकर आएंगे, जिसमें चर्चा की जाएगी विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर। युववाणी हमेशा की तरह शाम 6 आप सुन सकेंगे। ग्राम जगत में चर्चा होगी महिलाएं स्वरोजगार अपनाएं, साथ ही होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और समय रहेगा 6:30 पर। वही अक्षयवट में आपको सुनाएंगे रामलली से ब्रजेश तिवारी की गई भेंट वार्ता, और समय नोट कर लीजिए 7:00। 7:31 पर आपके अनुरोध भरे पत्रों के साथ होगा कार्यक्रम अनुरोध गीत। वहीं सुबह 8:15 पर नमस्ते बरेली से शुरुआत करेंगे दिन की। आपकी पसंद सोशल मीडिया पर आधारित इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे सुबह 10:00। 11:00 का समय सबरंग का होगा और हमारा खास कार्यक्रम क्षेत्र संकलित कार्यक्रम, जिसका आपको रहता है इंतजार, झुमका गिरारे, हम लेकर आएंगे 11:15 पर। अनुरोध गीत दिन में 1:00 आप सुन सकते हैं, 2:00 होगा रसरंग। 3:30 का कार्यक्रम प्रायोजित का समय रहेगा, NCERT का ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे इस समय पर। आपकी बात आकाशवाणी के साथ समय रहेगा शाम 4:00 का। कल शाम 5:05 पर होगी भजन संध्या। नारी संसार में कल शाम 5:30 पर चर्चा के विषय रहेंगे जन्मदिन पर लगाएं एक पेड़ और बच्चों का ऑन स्क्रीन टाइम कैसे कम करें। युवाणी सुन सकते हैं आप शाम 6:00। किसानवाड़ी में आज की बात का विषय रहेगा कृषि यंत्रों का रखरखाव, हेलो किसान होगा, साथ ही बाजार भाव, मौसम और कृषि समाचार, समय रहेगा 6:30 का। 7:00 ग्राम जगत में चर्चा की जाएगी बालिका शिक्षा के महत्व पर, साथ ही होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन लेकर आएंगे 7:31 पर। तो श्रोताओं, ये तो थी एक संक्षिप्त रूपरेखा आज की शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कार्यक्रमों की, और आपने ट्यून किया हुआ है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। श्रोता, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 23 सितंबर 2026 को सायं 7:31

30 मिनट पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय रहेगा वायरल फ्लू शंकाएं और आधुनिक उपचार। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार को यानी कि कल दिनांक 22 सितंबर 2026 को सायं 4 बजे से। तो श्रोताओं, इस संबंध में यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर से सुन लीजिए। विषय रहेगा वायरल फ्लू शंकाएं और आधुनिक उपचार। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखेगा, मंगलवार दिनांक 22 सितंबर 2026 को सायं 4 बजे से यानी के कल सायं 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर वही है 0581251720।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। समय मिला लीजिए शाम के 5:05 और 9:10.11 हो गए हैं और हम लेकर हाजिर हुए हैं भजन संध्या। पहली प्रस्तुति में आवाज है अनुराधा पौडवाल की शंकर मेरा प्यारा।

लताओं में वृष की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ये भजन आप सुन रहे थे देवकी पंडित के स्वर में। और अब अगले भजन में आवाज है अनुपम गुलाठी और साथियों की, मन मन मुदित मुदित है आज।

अनुपम गुलाटी और तृप्ति शाक्य की आवाज में ये भजन मन मुदित मुदित है आज, पधारे देश मेरे रघुराज। और इसके बाद कोई कारण होगा, ये भजन आप तक पहुंचा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

वासुदेव का लाला जग कहे नंद लाला, कोई कारण होगा। ये भजन आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। और इसी के साथ साथियों, अब समय नहीं है कि आज की भजन संध्या को और भक्ति में बनाया जाए या और आगे ले जाया जाए, तो आज की भक्ति संध्या यानी कि भजन संध्या से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

और अब श्रोताओं समय मिला लीजिए, शाम के 5:30 और 30 ही सेकंड हुए हैं, और प्रियंका जी के साथ अब सुनते हैं नारी संसार।

नमस्कार, शुभ संध्या। प्रोग्राम नारी संसार सुनने वाली हमारी सभी बहनों और श्रोता भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में। मैं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका हाजिर हूँ 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर। सखियों, जब हम खुश होते हैं तब हमारा मन हर काम में लगता है, और जब हमारा मन खुश होता है, शांत होता है, तब हमारी सोच भी सकारात्मक होती है। सखियों, शांत मन चिंता, डर और स्ट्रेस, जो कि आजकल हर इंसान की लाइफ में काफ़ी बढ़ चुका है, भागदौड़ भरी जिंदगी के दबाव को कम करता है। सखियों, जीवन में शांति की ज़रूरत, मानसिक स्थिरता और हमारे सही शारीरिक स्वास्थ्य और सही निर्णय लेने के लिए होती है। सखियों, अगर लाइफ में शांति सुकून ना हो तो इंसान काफ़ी परेशान, काफ़ी अपसेट नज़र आता है। इसलिए शांत मन हमारे लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आज है 21 सितंबर, आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। हर दिन हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रों और लोगों के बीच अहिंसा, आपसी सम्मान, सद्भाव और युद्ध विराम को बढ़ावा देना है। सखियों, हमें अपने समाज में आसपास हर जगह अपनापन, भाईचारे का संदेश देना चाहिए। प्यार अपनेपन के साथ मिलकर मानवता के साथ रिश्तों को निभाना चाहिए, तभी हम सुख शांति और खुशी से अपने समाज में, घर में रह सकते हैं। इसी में हम सबकी भलाई है, यह हमारे लिए अच्छा है। और अब हमारे लिए अच्छा है कि हम आपको एक गाना सुनवाएं।

सखियों, हमारा आज का सवाल है, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? आप अपना सही जवाब हमें कमेंट्स कीजिए। सखियों, कहा जाता है जब जागो तब सवेरा। जी हाँ सखियों, स्वस्थ रहना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है वो किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं है। स्वस्थ रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। सखियों, कई बार क्या होता है, हम चाह कर भी किसी भी बात को याद नहीं रख पाते हैं, बहुत जल्दी हर बात को भूल जाते हैं, जो कि एक मानसिक बीमारी है जिसे अल्जाइमर रोग डिमेंशिया कहा जाता है। हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है इस बीमारी, दिमागी बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना और इसके प्रति सामाजिक कलंक व डर को दूर करना है। यह एक ऐसा प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान की याददाश्त को, सोचने की क्षमता और रोज़मर्रा के काम करने की ताकत को ख़त्म कर देता है। यह रोग किसी को ना हो इसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए और अगर इस तरह के लक्षण हमें या हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर्स में हैं तो आप बिना देर किए उनका इलाज अवश्य कराइए, जिससे समय से इस बीमारी का निवारण हो सके, व्यक्ति फिर से स्वस्थ और सुखी जीवन शैली में वापस लौट सके। जितनी जल्दी आपको पता चलेगा उतना ही आप कर पाएंगे मनोभ्रंश का निदान। महत्वपूर्ण है और अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस प्रोग्राम का ये गाना।

0: सखियों, हमारी बहनें घर के कामों के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही हैं। घर से बाहर निकल के बाहर की जिम्मेदारियां, फिर फैमिली, अपने सपने, सबको किस तरह से पूरा कर रही हैं। सखियों, आपको मिलवाते हैं श्रीमती दर्शन जी से, जो एक बैंक सखी हैं।
1: दर्शनवती क्या पढ़ाई है?
2: मैं
1: तो आप हाउसवाइफ हैं या कुछ जॉब करती?
2: मैं पहले तो हाउसवाइफ ही थी, अभी जल्दी में बैंक सखी पढ़ाई कर।
1: किससे रिलेटेड है ये?
2: ये जो समूह होते हैं गवर्नमेंट राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मशीन, जो हमारी निर्मला इकाई से चला है, जिसमें और महिलाओं को आत्मनिर्भर या सशक्तिकरण बनाना है, मातृशक्ति जो कहते हैं आगे बढ़ाना है। महिलाएं हमारे गाँव में कुछ काम नहीं कर पाती है या जो अपनी बचत को नहीं कर पाती है, उनको महिलाओं को एक समूह बनाया गठन, जैसे गाँव की 8-10 महिलाएं इकट्ठी होकर एक समूह का गठन

0: जो भी काम आता है, चाहे बकरी पालन ही आ रहा है, मुर्गी पालन आ रहा है, या भैंसी पालन चाह रही है, तो उनके पास अभी एक भी नहीं है। अब वो उससे पैसे इकट्ठे करके अपने बचत इकट्ठे करेंगे, धीरे धीरे धीरे तो शुरुआत कर सकती है इसका।
1: मतलब आजकल की महिला का ये उद्देश्य है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, जब जरूरत हो तो वो खुद ही अपने
0: पैसे का इस्तेमाल कर सके और उससे कुछ काम भी शुरुआत कर सके। जैसे सिलाई मशीन है, ज्यादा पैसे से तो नहीं आएगी शुरुआत की, जब तो कभी 10-5 हजार या 2-3 हजार की मिलेगी, तो लेके अपना कुछ का काम डालेगी, कुछ शुरुआत तो होगी उससे।
1: श्रीमती आप ये बताइए कि जो महिलाएं हैं उनका आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है?
0: महिलाओं का आत्म पहले की नारियां थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, कभी भी नहीं थी, तो जानकारी नहीं थी, अगर कोई भी योजना आ रही है तो हमारी महिलाओं तक नहीं पहुंचती थी। अब सरकार ने ये कह दिया है जिसको जो काम करना आता है जिसके माध्यम से पहुंचे, उससे ऊपर है ब्लॉक लेवल पर है, जिला लेवल पर है, फिर उसके बाद ग्राम प्रधान के लेवल पे है, पहले डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, फिर ब्लॉक में आएगी, जाके कहीं ग्राम जाएगी, ग्राम से जो और लोग हैं उसके नीचे उन लोगों तक आती है, तब कहीं समूह की महिलाओं तक पहुंचती है कोई जानकारी।
1: दशमती आपका क्या काम रहता है?
0: मेरा काम जो रहता है महिलाएं जो अनपढ़ है, जो जानती नहीं है, या जिन्हें जो काम करना नहीं आता है समूह का, किसी का रजिस्टर पूरा नहीं है या किसी को पता नहीं है कि समूह में क्या होता है, जब महिलाओं की बचत सही से जमा होती है, जब सरकार को विश्वास हो जाता है कि इनकी महिला की बचत सही कर रही है, समूह सही चला रही है, तो सरकार इनको उसी समूह पे, वैसे क्या होता है समूह में लोन ले, किसी चीज को लोन लेंगे तो उसका एग्रीमेंट होता है, चाहे जमीन चाहिए, चौक प्लॉट चाहिए, या कुछ भी चाहिए, सरकार जब लोन देगी, लेकिन समूह में महिलाओं को लोन समूह के ऊपर देती है सरकार, राष्ट्रीय आजीविका मिशन में लगाई, क्योंकि इसमें ये देखती है महिलाएं समूह कैसे चला रही है, अपने समय पे बचत जमा कर रही है, समय से निकाल रही है, फिर उसको डाल रही है, और छोटा मोटा काम भी डाल रखा है निधि ने, तो किसी को थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है तो सरकार 1 से 1.5 से 3 किस्तों में 6 लाख तक का लोन देती है सरकार समूह, जैसे वो अपना कोई अगर काम करना चाह रही है छोटा मोटा, तो वो CCL जो होता है उससे कर सकते हैं, तो धीरे धीरे ये भी नहीं की वो CCL का पैसे एक साथ जमा करना है। अगर मान लीजिए किसी ने 20 हजार 30 हजार निकाला है, तो वो 2 हजार की किस्त या 3 हजार की किस्त जैसे भी जमा करना चाहे वो कर दे, उसके बाद से जो किस्त जमा हो जाएगी उसके ब्याज नहीं लगेगा, जो बकाया राशि रह जाएगी उसी का ब्याज लगेगा। किसी ने 50 हजार निकाला, 48 हजार रह गया, 2 हजार जमा कर दिया, तो वो 48 हजार से ब्याज लगेगा, 50 हजार से नहीं लगेगा।
1: और दशमती आप ये भी बताइए कि जो हमारी बेटियां हैं, बहने हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं तो यही कहूँगी, देखो आज के टाइम में बिना पढ़ लिखे नहीं है, ये तो अगर किसी से पूछोगे हमारे ये काम कैसे होगा, कहीं भी जाओगे, घर से बाहर निकलोगे, किराया टिकट खरीदो, रेलवे स्टेशन पे जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो जब पढ़े हुए लोग होगे तो किसी की सहायता की जरूरत नहीं होगी, ना किसी को साथ ले जाने की जरूरत, इतने अपने आप में आत्मनिर्भर हो गए, कॉन्फिडेंस से हम जा रहे हैं, हम इस काम को लिए अपने आप कर लेंगे, किसी की सहायता की जरूरत नहीं होगी जब हम पढ़े लिखे होंगे। और अपने माँ बहनों को यही संदेश देने होंगे, अपने घर की बेटियों को, बहुओं को, और सभी माता बहनें पढ़ाई अपनी जारी रखें और पढ़ाई करते रहें अपने काम के साथ।
1: और अपनी बेटियों को भी ये कहना चाहेंगे बेटियों से कि वो घर के काम के साथ साथ पढ़ाई जरूर करें, ऐसा नहीं है कि घर के काम की वजह से वो घर पर भी पढ़ाई,
0: घर का काम अगर कर रहे हो तो करो, लेकिन उसके साथ साथ ये मत सोचो कि हमें घर का ही काम करना है, पढ़ाई सारा देश है, किसी बात के लिए बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ।
1: और बेटियां 2 कुलों को रोशन करती हैं, जब वो पढ़ी लिखी होंगी तो 2 कुलों को रोशन करेंगी और अपने परिवार को भी अच्छे से चला पाएंगी,
0: नाम रोशन करती है, फिर जहाँ ससुराल में जाए ससुराल का काम भी डालती है, कहीं जॉब भी करती है, वो दोनों चीजों को कैसे संभाल पाती है, उनसे बात करके पता चलता है कि हमारी बहनें कितनी जिम्मेदारियां उठाती हैं, घर का भी काम संभालती है, फिर बाहर जाती है, बच्चों को भी संभालती है।
1: आपने अपना समय निकालकर हमसे बात की और हमारी बहनों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी, आपके लिए आपका बहुत धन्यवाद।

सखियों, हमने आपसे पूछा था आज का सवाल, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? इसका सही जवाब है आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। सही जवाब दिया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी, शिवम, ग्रामबा पोस्ट गोंडा खंडुआ से, और हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से, राम कुमार रेवाड़ जी सादुल शहर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे नारी संसार, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। समय मिला है शाम के 6 बजे हैं और इसी समय के साथ नेहा सिंह लेकर हाजिर हो चुकी हैं कार्यक्रम युववाणी। तो चलिए अब इनके साथ सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे सभी लिसनर्स का प्रोग्राम युववाणी में आपकी आज की रेडियो फ्रेंड नेहा सिंह के साथ। दोस्तों, आज मनाया जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, जिसका मेन एम है अल्जाइमर रोग और अदर डिमेंशिया से जुड़ी जानकारी फैलाना, साथ ही समाज में जागरूकता लाना और रोगियों और उनके परिवारों को सहयोग देना। ये दिन विश्व अल्जाइमर संघ द्वारा 1994 में स्थापित किया गया था। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका समर्थन देते हैं। और साथ ही ये जो अल्जाइमर्स है, एक तंत्रिका संबंधी बीमारी होती है। इसके कारण जो हमारे ब्रेन की कोशिकाएं हो जाती हैं वो मोस्टली ख़राब हो जाती हैं या बिल्कुल ही ज़्यादा सीरियस केसेस में मर भी जाती हैं। और जो भी व्यक्ति इससे ग्रस्त रहते हैं उनके जो लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि उनके डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं या अभी उनके कोई भी काम करने की क्षमता होती है ना, उस पर असर पड़ने लगता है। क्योंकि जो उनकी मेमोरी होती है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। वो अपनी डेली छोटे मोटे काम को करना या कोई भी सामान है उसको रखकर भूलना, ये सब चीज़ें उनमें होने लगती हैं, ऐसे सिम्टम्स उनमें दिखने लगते हैं। एंड ये जो बीमारी है पूरी तरह से कभी ठीक भी नहीं की जा सकती, लेकिन इसका जो खतरा है, डेंजर है, वो कम किया जा सकता है और इसके सिम्टम्स को भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसलिए अपनी ब्रेन हेल्थ को बेटर एंड एक्टिव बनाए रखने के लिए हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपने माइंड को शार्प एंड एक्टिव बनाए रखने के लिए रीडिंग करते रहें, पहेलियाँ सॉल्व करना है ना, और जो पज़ल्स वगैरह होते हैं उनको सॉल्व करिए, गेम्स खेलना, ये सब चीज़ें हमें करता रहना चाहिए। हमारे ब्रेन को एक्टिव रखते हैं और हमारे माइंड को शार्प भी बनाते हैं। साथ ही इसके हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है उसका ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फिज़िकली फिट रहेंगे तो हमारा माइंड भी हेल्दी एंड एक्टिव रहेगा। इसलिए हमें रोज़ाना थोड़ा चलना, योगा करना, एक्सरसाइज करना या टहलना, ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो फिज़िकल मूवमेंट है वो बना रहे और हमारी बॉडी में बिल्कुल भी लेजीनेस ना आए। और साथ ही ब्रेन हेल्थ के लिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड खाना चाहिए, जो कि फिशेस में होता है, और साथ ही जो शुगर है उसका कंजम्पशन बिल्कुल कम से कम ही हो तो ही बेटर है। इसके अलावा फ्रूट्स हुए, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें हमें बहुत हेल्दी होती हैं हमारे ब्रेन के लिए। और जितना हो हम खुश रहें, अपने माइंड को हैप्पी बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ स्पेंड करें, साथ ही अकेले जितना हो उतना कम रहें, तो ये सब चीज़ें हमें हेल्दी भी बनाती हैं और खुश भी रखती हैं। वेल फ्रेंड्स, आज है प्रोग्राम युववाणी में धूम धड़ाका म्यूजिकल सेगमेंट, तो चलिए सुनते हैं अब आज का पहला गीत।

0: दोस्तों, आजकल का जो समय है वो है टेक्नोलॉजी का, एडवांसमेंट का। जहाँ आज के समय में हर चीज़ ऑनलाइन बढ़ रही है, वहीं ये सब चीज़ें हमारी लाइफ्स को और भी इजी बना रही हैं, और साथ ही हम इस पे डिपेंड भी काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं। वहीं इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। ऐसे ही AI है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल हम सबकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो हम सबके लाइफ में, हमारे फ़ोन में, टीवी में, या फिर यूँ कहें इससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और ये हमारी लाइफ का एक बिल्कुल ही अच्छा सा पार्ट बन गई है, जिसके बारे में अब हम AI के बारे में और भी जानकारी लेंगे रेनू के साथ।
1: आज के समय में हम मशीनों से, टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं जो हमारी लाइफ को सेफ और इजीली एंड हेल्पफुल बनाती हैं। एक ऐसी ही तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। सरल शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर और मशीनों को इतना स्मार्ट बनाता है कि वे इंसानों की तरह काम कर सकें और हमारा काम इजी बना सकें। AI होता क्या है, ये तो आप शायद समझ ही गए होंगे। अब इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे मेरे से, यानी रेनू से। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि AI काम कैसे करता है। AI मशीनों बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करके उनमें से पैटर्न को पहचानती हैं और उसी के आधार पर निर्णय लेती हैं। इसमें बेसिकली काफ़ी टेक्निक्स का यूज़ होता है, जैसे 1, मशीन लर्निंग। मशीनें डेटा

से खुद सीखती हैं। सेकेंडरी, डीप लर्निंग इंसानी दिमाग की नकल करता है जिसमें बहुत सारी लेयर होती हैं। नंबर 3, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीनों को भाषा समझने और जवाब देने लायक बनाता है। नंबर 4, कंप्यूटर विजन के थ्रू इमेजेस एंड वीडियोस को समझना। सो इस सब के थ्रू AI काम करता है और हमारी डेली लिप्स को आसान, तेज और स्मार्ट बनाता है। एंड ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि AI का हमारे जीवन में काम कैसे करता है ये पता चल सके। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट के थ्रू वो हमारी आवाज़ सुनकर सवालों के जवाब देते हैं। फेस लॉक

आवाज़ सुनकर सवालों के जवाब देते हैं। फेस लॉक अनलॉक भी एआई आपके चेहरे को पहचान कर करता है। ऑटो करेक्ट एंड सजेशंस जो आते हैं वो सब भी एआई के थ्रू होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप जो भी चीज़ें देखते हैं वो आपके सर्च हिस्ट्री, लाइक्स डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग दिखाता है। एंड कैमरा फिल्टर, फोटो एडिटिंग भी एआई के ज़रिए होती है। ऑनलाइन शॉपिंग में भी प्रोडक्ट सजेस्टिंग हमें शॉपिंग ऐप्स हमारी पसंद के अनुसार ही सजेस्ट करते हैं, जिसमें चैटबॉट्स 24/7 कस्टमर हेल्प के लिए एआई चैटबॉट्स काम करते हैं। आजकल स्मार्ट वॉचेस में या हमारी फ़ोन में ऐसे ऐप्स हैं जो हमारी नींद, कदम और हार्ट रेट तक को ट्रैक कर सकते हैं। डॉक्टरी जांच, एक्सरे, एमआरआई जैसे रिपोर्ट्स को पढ़ने और बीमारियों का पता लगाने में डॉक्टर की हेल्प करता है एआई। एजुकेशन में भी ऑनलाइन आजकल कितनी ऐप्स हैं जो आपके लेवल के अनुसार कॉन्टेक्ट सजेस्ट करते हैं, एंड अपने डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं एआई के माध्यम से। यात्रा और ट्रैफिक में मैप्स के थ्रू हम लाइव एनालाइज कर सबके फास्टेस्ट रूट फाइंड कर सकते हैं, एंड अपने लिए टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में एआई ट्रांजैक्शन को चेक कर संदिग्ध गतिविधि को पकड़ता है और ऑटोमेटिक बजटिंग कर खर्चों का विश्लेषण कर सलाह देता है। एआई हमारे जीवन के हर कोने में मौजूद है, मोबाइल से लेके मेडिकल तक, शॉपिंग से लेके शिक्षा तक, वहीं बैंकिंग से लेकर ट्रैवलिंग तक। इसका इस्तेमाल हमें आगे भी ले जा सकता है और पीछे भी। इसका यूज़ वाइजली और सेफ करें। थैंक यू।

श्रोताओं, आज एक और भी खास दिवस मनाया जाता है जो कि है इंटरनेशनल पीस डे। इसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस एम के साथ मनाने की शुरुआत की गई थी कि पूरी दुनिया में शांति के आदर्श को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही हिंसा, युद्ध व संघर्षों को रोकने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जा सके। साथ ही लोगों में, सोसाइटीज़ में और भी जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में आपसी भाईचारा और जो सहयोग है उसकी भावना बनी रहे और शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक अभियानों के माध्यम से हिंसा रहित समाज का निर्माण किया जा सके, जो कि बहुत ज़रूरी भी है आज के समय में। और साथ ही ये जो दिवस है उसको मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1981 में की गई थी और फिर पहली बार ये 1982 में मनाया गया था 21 सितंबर को। और स्टार्टिंग में ये जो दिवस है वो सितंबर के थर्ड ट्यूसडे को मनाया जाता था, लेकिन साल 2001 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ये कहा गया कि 21 सितंबर को ये दिवस स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया जाएगा। फिर तब से ये दिवस हर साल आज के दिन ही मनाया जाता है। वेल फ्रेंड्स, अपनी बातों को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे बट आफ्टर अ म्यूजिकल ब्रेक।

शुदा, वक्त हो गया है हमारे आज के सवाल का। हमारा आज का सवाल था कि अस्मिता लीग भारत सरकार के किस खेल कार्यक्रम का हिस्सा है। और जो हम ये अस्मिता लीग की बात कर रहे हैं दोस्तों, अस्मिता यानी कि ASMITA, जिसकी फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन्स बाय इंस्पायरिंग विमेन थ्रू एक्शन। और ये जो लीग है ये भारत सरकार के खेलो इंडिया मिशन इसका हिस्सा है, जिसको पहले खेलो इंडिया महिला लीग के नाम से भी जाना जाता था। और ये लीग महिलाओं में खेलों को बढ़ावा देना, साथ ही उनको ग्राउंड बेसिस पर महिला प्रतिभाओं को सामने लाना और खेलों में जो जेंडर डिफरेंस देखने को मिलता है उसको कम करना है, ताकि जो महिलाएं हैं पूरे देश भर की वो बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स में बढ़ावा दें, उसका पार्ट बने और जो देश है उसका नाम रोशन करें। और इसकी शुरुआत मार्च 2026 में की गई थी, और तब से लेके अब तक ये देश के कई सारे स्टेट्स में और साथ ही कई सारे शहरों में ऑर्गेनाइज हो चुका है, जिसमें अब तक कई लाख महिलाओं ने पार्टिसिपेट भी करा है और देश का नाम भी रोशन किया है। वेल फ्रेंड्स, जो हमारा कार्यक्रम का समय वो बहुत लिमिटेड है, तो चलिए अब धूम धड़ाका म्यूजिकल सेगमेंट में सुनते हैं आज का आखिरी गीत।

श्रोताओं, युववाणी कार्यक्रम का समय आज बस यहीं तक सीमित था। अपनी रेडियो फ्रेंड नेहा सिंह को दे अनुमति। बाय बाय एंड टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला है शाम के 6:30 और 10 सेकंड हुए हैं और ये समय हुआ है कार्यक्रम ग्राम जगत का। तो चलिए अब भैया हेडलपाल सिंह के साथ सुन लेते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत में सब भैया बहनों को अपने भैया हेडलपाल सिंह की राम राम। और सुनाओ भैया, आपके और खेतीबाड़ी के हालचाल कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आपके और आपकी खेतीबाड़ी के हालचाल बिल्कुल ठीक होंगे। संध्या को समय होएगा वह और हम आपको मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो भैया, कार्यक्रम में आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, साथ ही साथ क्षेत्र संकलित भेंट वार्ताएं सुनवाएंगे और करेंगे भरपूर मनोरंजन। तो भैया, आज की बातचीत शुरू करते हैं। हम और आप जिस परिवार में रहते हैं, यदि हम सब मिलजुल करके काम करेंगे तो हमारे चाहे वो खेती बाड़ी को काम काज हो या कोई भी अपने व्यवसाय से संबंधित काम काज हो, निश्चित रूप से बाकी भैया

0: कम समय से निपटा सकते हैं। और खास तौर से हम और आप सब ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जिनमें हम अपनों स्वरोजगार अपना सकते हैं। जैसे भैया, हमारे जो किसान भैया बहन हैं, वो तो खेती बाड़ी से जुड़े ही रहते हैंगे, साथ ही साथ घर में जो महिलाएं हैं वो भी बहुत से ऐसे काम धंधे हैं जिनको अपनाए के हम अपने घर की आय बढ़ा सकते हैं। महिलाएं घर बैठे स्वरोजगार के लिए कई तरह के काम शुरू कर सकते हैं जिसमें निवेश बहुत कम होता है और मुनाफा अच्छा मिल जाता है। आप अपनी रुचि, योग्यता और बजट के अनुसार बहुत से ऐसे काम हैं जिनको आप अपना सकते हैं। जैसे महिलाएं कपड़े सिलने या डिजाइन करने का शौक रखती हैं, तो आप घर पर जो महिलाओं के कपड़े हैं, सूट है, बच्चों के कपड़े हैं, ब्लाउज हैं, इनको आप सिल सकते हैं। साथ ही साथ घर पे ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। जैसे मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, साबुन बनाने के काम हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही कम लागत में शुरू होने वाले कुटीर उद्योग हैं। इन्हें बनाकर स्थानीय दुकानों या त्योहारों के समय आसानी से बेचे जा सकते हैं। खान पान और रसोई से जुड़े व्यवसाय भी आप कर सकते हैं, जैसे अचार, पापड़ और मसाले बनाना। शुद्ध घरेलू मसालों में पापड़ और पारंपरिक अचार की बाजार में हमेशा मांग रहता है। आप इन्हें आकर्षक पैकेट में पैक करके बेच सकते हैं। तो जो घरेलू महिलाएं हैं वो इस तरीका से बहुत से और भी अन्य व्यवसाय हैं उनको आप कर सकते हैं। जैसे चटाई बुनने का कार्य है, दरी बुनने का कार्य है, और साथ ही साथ जो खजूर के पंखा हैं, उनसे जो बनने वाली झाड़ू हैं, उनको भी आप बना सकते हैं। और इसके अलावा खेती बाड़ी के साथ साथ जो महिलाएं हैं वो अपने आसपास यदि जगह खाली है तो वहां में मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। ग्रामीण महिलाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहतरीन काम कर सकते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग है या फिर मुर्गी पालन है। यदि आपके पास थोड़ी खाली जमीन या जगह है तो उसके लिए आप डेयरी खोल सकते हैं। डेयरी खोल करके हम दूध बेचने का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मुर्गी पालन ग्रामीण इलाकों में सबसे अधिक होने वालों बिजनेस है। इसमें कुछ ऐसी पालतू मुर्गी हैं जिनको हम रख सकते हैं, उनके अंडे या चूजे के लिए बेचा जा सकते हैं। और ये जो व्यवसाय है वो बहुत कम पूंजी से शुरुआत उनकी की जा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखने की बात तो ये हैगी कि जो भी व्यवसाय हम शुरू कर रहे हैं वो छोटे स्तर से ही शुरुआत करें, और जो होने वाला मुनाफा है उससे हम उस व्यवसाय को बढ़ाते रहें, तो जो हमारा व्यवसाय है वो अच्छी तरीका से बढ़त भी जाएगा और हमारे जो परिवार की आय है वो भी बढ़ती जाएगी, और हमारा जो समय है वो भी बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत हो जाएगा। तो भैया, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने परिवार को पालन पोषण और अपने परिवार की जो आय है उसको हमेशा बढ़ा सकते हैं। भैया, कामकाज की बातें तो अभी आपसे और भी करेंगे। भैया, अब कार्यक्रम में हम आपको ऐसी ही स्वरोजगार से संबंधित एक क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता भी लेकर के आए हैं। स्वरोजगार के आयाम, खजूर के पंखे और झाड़ू बनाना। किस तरीके से समरुद्दीन भैया हैं जो ग्राम बमियाना बरेली के रहने वाले हैं, और उनको जो परिवार है किस तरीका से खजूर के पंखा और झाड़ू बनाए के अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए हुए हैं, आप जानते हैं जब क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता में। साथियों, प्रत्येक दिन कार्यक्रम में हम कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते हैं, और आज भी हम स्वरोजगार से जुड़ी हुई एक जानकारी लेकर के आए हैं। और इस जानकारी के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम?
1: समरुद्दीन।
0: समरुद्दीन कहाँ रहते हो?
1: बमियाने।
0: बमियाना ये कहाँ पड़ता है?
1: ये स्टेशन बमियाने दोचरा पास।
0: दोचरा के पास। और हमारी और आपकी जो बातचीत कहाँ हो रही है इस समय?
1: ये हो रही है अलीगंज।
0: अलीगंज गैनी सड़क के किनारे बातचीत हो रही है, और ये हम देख रहे हैं कि खजूर के जो पत्ते हैं उनको आप इस समय काट रहे हैं, ये किस उद्देश्य से काट रहे हैं?
1: ये झाड़ू बनती हैं और इसके बिजने बनते हैं।
0: अच्छा, झाड़ू और बिजना, यानी जिसको हम पंखा कहते हैं।
1: हाँ, पंखा कहते हैं।
0: हाथ से चलाने वाले पंखे।
1: हाथ से चलाने वाले।
0: अच्छा, ये बनते हैं?
1: ये बनते हैं।
0: तो ये किस तरीके से बनाते हैं पंखा और झाड़ू, इसके विषय में कुछ बताइए।
1: ये पहले तो काट के ले जाएंगे घर पे, टेम्पू में या टुकटुक में
0: जी।
1: फिर ये सूखेगी
0: जी।
1: सूख के उसके बाद बिनने वाले जितना बिनेगा उतना ही काटेगा।
0: अच्छा,
1: तो उसके बाद बिजना बनेगा।
0: अच्छा, एक ये जो आपने एक टहनी काटी है, यानी एक पत्ता है, इसमें इसकी लंबाई भी काफी होती है खजूर के पत्ते की, तो इसमें कितने पंखे बन जाते हैं एक में?
1: इसमें खजूर के ऊपर है, दो भी बन जाते हैं, एक भी निकल जाता है। और अच्छा। बकाया पत्ता उसमें बिनने में कम आ जाता है।

0: होते हैं।
1: अच्छा, जो फुलक होती है उसके जो पत्ते हैं वो बुनने के काम आ जाते हैं।
0: हाँ,
1: और जो मोटी टहनी है वो उसकी हाथ की डंडी बन जाती है।
0: डंडी बन जाती है,
1: है? इस तरीके से आप पंखा बनाते हैं। तो ये जो पंखा आप घर पे ही बनाते हैं?
0: हाँ, घर पे बनाते हैं।
1: हाथों से बनाते हैं, इसमें भी किसी मशीन का सहारा
0: नहीं? हाथ से ही बनाते हैं।
1: अच्छा, और इससे जो झाड़ू है जिसको कूचा कहते हैं?
0: हाँ, वो भी हाथ से बनाते हैं।
1: वो भी हाथ से बनाते हैं। तो घर में, घर परिवार में आप ही बनाते हैं और परिवार
0: ना,
1: के
0: सभी बना लेते हैं घर में
1: सभी लोग बनाते?
0: हाँ, सभी लोग बना लेते हैं।
1: अच्छा, तो ये जो आज काट करके आप ले जा रहे हैं खजूर?
0: ये काट रहे हैं कल से। हाँ।
1: अच्छा, फिर इसको सुखाएंगे,
0: दो तीन दिन में तो सूखे ही।
1: अच्छा, फिर ये इसको छीलेंगे भी?
0: फिर इसको छीलेंगे तो बनाएंगे।
1: अच्छा,
0: बहुत टाइम लगता है इसमें।
1: अब ये झाड़ू और कूचा जिसको कहते हैं और पंखा जो आप बना लेते हैं, फिर इसकी बिक्री कहाँ होती है?
0: इसकी बिक्री हर कहीं होती है, गांव-गांव बेच लो। अच्छा, बरेली बेच लो, जाके आंवला बेच लो, कहीं बेच लो।
1: अच्छा, फिर घर घर बेचते हैं जाकर के?
0: हाँ, घर घर बेचते हैं।
1: अच्छा, तो एक पंखे की कीमत की बात करें तो एक पंखा आपके यहाँ से कितने में बिकता है?
0: वैसे गांव में जाओ तो 10 रुपए का 15 रुपए का बिक जाता है
1: एक पंखा। और जो कूचा और झाड़ू होती है
0: वो भी 15 रुपए 20 रुपए बिक जाती है।
1: अच्छा, तो ये कूचा और झाड़ू लगभग कितने दिन चलती होगी आपकी?
0: ये अगर चलाने वाला सही हो तो कम से कम 2-4 महीना चल जाता है।
1: 4 महीने चल जाती है। देखा जाए तो बहुत सस्ता साधन है और एक अपना खुद का रोजगार भी है। कहने का मतलब ये, पंखा अधिकतर इस समय तो गर्मी चल रही है, गांव में बहुत ज्यादा मांग भी रहती है।
0: हाँ, है? तो गर्मियों में ज्यादा होता है, ऐसे जाड़ों में इकट्ठा कर लेते हैं।
1: अच्छा, बना बना के?
0: हाँ, तो ये गर्मियों में निकाल देते हैं।
1: गर्मियों में निकल जाता है। कुछ एक ऐसे अवसर भी आते हैं जिसमें ये पंखे का पूजन भी होता है और पंखा काफी बिकते हैं।
0: हाँ,
1: है? जैसे एक दशहरा आता है ज्येष्ठ मास में, और उस दशहरा पे भी काफी बिक्री होती है।
0: काफी बिक्री हो जाती है उस पे भी।
1: अच्छा, समृद्धि, एक बात और ये जानना चाहेंगे, ये जो आप काट रहे हैं, आप पेड़ जो सड़क के किनारे हैं खजूर के, यहाँ आपको कोई मना तो नहीं करता है?
0: ना, मना तो ना, कोई भी ना करता।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: अब ये दोबारा कल आएंगे?
0: ये दोबारा जब कल आएंगे तो दोबारा काट लेंगे।
1: दोबारा काट लेंगे?
0: आप तो लोग मिल जाते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, मगर हम पहले पूछ लेते हैं उसके बाद काटते हैं।
1: अच्छा, अरे बीच में आप छोड़ देते हैं और किनारे किनारे के पत्ते
0: बीच में कल ही छोड़ देते हैं, इसके मारे दोहरा के निकल जाए।
1: अच्छा, जिससे दोबारा हो जाए ये। तो खजूर के पेड़ पर ये जो किस तरीके से कटाई करते हो ये भाई? देखिए, खजूर के पेड़ पर कांटे भी बहुत से होते हैं, खुब्बे होते हैं,
0: काटते हैं।
1: अच्छा,
0: बांस लेके आते हैं तो बांस से काटते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, एक लाठी है उससे कहते हैं लग्गी।
1: अच्छा,
0: बांस का।
1: हाँ।
0: और उसमें एक हसियो खुजरिया कहते हैं उससे।
1: अच्छा, ये बांध रखा है?
0: हाँ, ये बांध रखा है, उसी से काटते हैं।
1: तो आज कितना ये जो खजूर है काट करके ले जाएंगे?
0: आज 500 डंडी ले जाएंगे काट के।
1: 500 डंडी ले जाएंगे। तो ये जो बुनने वाले हैं कितने दिनों में बुन देते हैं?
0: ये कम से कम 15-20 दिन बुन देंगे।
1: 15-20 दिन में बुन देंगे। एक दिन का जो मटेरियल है आप ले जाएंगे तो इसको बुनने में 15-20 दिन लगेंगे?
0: हाँ, 20 दिन लगते हैं।
1: अच्छा, फिर कुछ दुकानदार जो लोग होते हैं वो आपके घर से ही सामान उठा कर ले जाते हैं?
0: घर से भी ले जाते हैं और मंगवा ही लेते हैं इकट्ठा।
1: अच्छा, इस तरीके से आप इसकी बिक्री कर देते हैं। तो बात करें दिन की मजदूरी की, तो एक दिन में कितने पैसे की इनकम हो जाती है?
0: 500 से लेकर 600 तक हो जाती है
1: एक दिन में है?
0: हाँ।
1: तो इस तरीके से आप एक व्यक्ति के लिए?
0: हाँ, एक व्यक्ति के लिए।
1: अच्छा, तो घर परिवार के सभी सदस्य मिलकर के करते होंगे?
0: हाँ, सभी मिलकर करते हैं। पहले तो इसमें बहुत टाइम लगता है, ये सूखती है 3-4 दिन में तो।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: और ये जो कूचा आप बनाते हो, इसको पीट पीट के इसको पतला भी किया जाता है?
0: पीटत नहीं है।
1: अच्छा,
0: हमारे पास रंधे होते हैं।
1: हाँ।
0: तो उससे रंधे से घिसते हैं।
1: अच्छा,
0: हाथों से।
1: अच्छा,
0: हाथ भर जाते हैं।
1: हाँ। जिससे ये जो झाड़ू लगाने के काम आ सके,
0: ये महीन हो जाती है
1: जी। समरुद्दीन जी, जानकारी देने के लिए, और आप ये बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं कि आप अपना स्वरोजगार किए हुए हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, स्वरोजगार आपने अपनाया है। आपसे बातचीत भाई कामकाज के विषय में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद
1: भैया। बहनों, अभी आपने क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता सुनी, हमें उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आई होगी। हमारे साथ में आपको जानकारी दे रहे भैया समरुद्दीन, आप ग्राम बमियाना जिला बरेली से है। तो इसी तरीका से यदि हम कोई भी व्यवसाय छोटे स्तर से शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से वो व्यवसाय हमारो आगे चल करके और बढ़ता चलो जाएगा। और भैया, अब कार्यक्रम में करते हैं मनोरंजन, जब प्यारे से मधुर लोकगीत से। इसके लिए सोशल मीडिया

संदेश और चिट्ठी पत्री भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदरदेवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। आप हैं बक्सेना दातागंज बदायूं से विमल ठाकुर, सरता ठाकुर, शुभम, लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, अमन, रिया, सेजल, सूर्य, सोना, रीना और नीरज। आप हैं कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण, दृष्टि और मानवी मौर्य। आप हैं ग्रामबा पोस्ट गोटा खंडुआ से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, सविता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी, शिवम और परिवार के सभी सदस्य। आप हैं ग्राम दूनीनगर जिला बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, विभू, आदर्श, आदित्य, कुमकुम, निव्या, सरता और अंतिमा। तो आइए आप सभी के अनुरोध पर सुनते हैं जे मधुर लोक गीत ओम प्रकाश शर्मा के स्वर में।

0: भैया बहनों, अभी आपने बहुत ही मधुर लोकगीत सुनो। हमें उम्मीद है आपको कार्यक्रम में लोकगीत अवश्य पसंद आएगा। और भैया, एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता और सुनते हैं। किसान की पहली प्राथमिकता फसल की सुरक्षा, इस संबंध में हमारी बातचीत हो रही है उदयवीर सिंह, ग्राम किशन सिंहपुर, जिला बरेली से, कि किस तरीका से हमें अपनी फसल की सुरक्षा करनी चाहिए। आओ जाने।
1: साथियों, हम और आप सब गांव में रहते हैं और अधिकतर जो हमारे ग्रामवासी हैं उनका तो मुख्य धंधा है खेती बाड़ी। और जब खेती बाड़ी करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं भी खेती बाड़ी में आती हैं। कोई भी फसल लगाएं, बीमारियां हमारे किसान भाइयों का पीछा नहीं छोड़ती। आज इसी विषय में एक किसान साथी हैं हमारे साथ में, उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं अपने खेत में जो लौकी है, तुरई है और भी फसलें लगी हुई हैं सब्जी वाली, और उसके ऊपर मचान भी बना रखा है पूरे खेत में तार का, और उसमें दवाई इस समय छिड़क रहे हैं। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं, जान लेते हैं किस तरीके से बीमारियां खेत में आ रही हैं और इनका निदान किस तरीके से कर रहे हैं। और इस समय तो देख रहे हैं काफ़ी धूप भी है। आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम उदयवीर।
1: उदयवीर जी, हमारी और आपकी जो बातचीत हो रही है, कहाँ हो रही है?
2: रफियाबाद और किशनपुर के बीच में हो रही है।
1: जी, खेत पर ही हो रही
2: हाँ,
1: है।
2: खेत पर।
1: क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं आपकी पीठ पर एक
2: टंकी है जो दवाई छिड़कने वाली।
1: अच्छा, मशीन लगी हुई है, तो कौन सी दवाई छिड़क रहे हैं?
2: ये सूंडी की और जो भुनका भुनका की दवाई लगा रहे हैं।
1: अच्छा, तो देख रहे हैं कमजोर हो गई थोड़ी लौकी, क्या कारण रहा है?
2: इसमें पानी ज्यादा भर गया बारिश के
1: बरसात भी
2: कारण।
1: ज्यादा हो गई।
2: बारिश के कारण
1: जी, तो थोड़ी अब चेत रही है लौकी है।
2: ना, जो से बारिश मौसम खुला है तब से जो किल्ली मारने लगी है लोग।
1: हाँ, और अब तो मौसम खुली ही गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है, बारिश के आसार अब ना लग रहे हैं। तो ये बताओ, ये लौकी आपने कितने खेत में लगाई है?
2: करीब 3 बीघा खेत है।
1: 3 बीघा खेत है, इसमें लौकी लगा रखी है। और भी क्या है?
2: और तुरई, कौन कौन पेड़ है तुरई के हैं लगे हुए।
1: अच्छा, तो जब ये हो जाएगी तो कितने दिन में तैयार हो जाएगी ये?
2: तैयार 15 दिन बाद चालू हो जाएगी, जब ठट्टर पर ऊपर पहुंचते ही।
1: अच्छा,
2: ठट्टर बंधा
1: फल
2: हुआ
1: आने लगेंगे
2: 15 दिन में।
1: तो कितने वजन की लौकी हो जाती है तब तुराई करते हैं?
2: करीब 1 किलो, 1.25 किलो, 700 ग्राम
1: जी,
2: 1 किलो की तक काटते हैं।
1: अच्छा, यानी 1 किलो तक की, डेढ़ भी हो सकती है
2: ना? डेढ़ की तो पक जाती है।
1: अच्छा, पक जाती है। आपने जो खेत में जो लौकी है वो किस रेट बिक जाती होगी?
2: वो तो मंडी का रेट है।
1: अच्छा,
2: कभी महंगी कभी सस्ती।
1: हाँ, ये भी बात सही है। जैसी आबत हो जाए
2: जैसे
1: मंडी,
2: जैसे ज्यादा फल आ गया तो जो मद्दी बिकती है, और कम लगा तो जो महंगी हो जाती है।
1: जी, ये जो आपने ठट्टर बांधा है ये तो काफी महंगा पड़ा होगा।
2: जी, बांस करीब 7,000 के बांस आए इसमें।
1: अच्छा, और फिर ऊपर से जो तार है,
2: तार लेके आए, तार और जो जो प्लास्टिक वगैरह बहुत लगाने पड़ी है।
1: अच्छा,
2: कम से कम 10-12 हजार का खर्चा आ जाएगा इसमें।
1: जी, अब ये बताओ ये कितने समय तक आपका जो ठट्टर है तैयार रहेगा?
2: जे लौकी चलेगी और तुरई जब तक चल रही है तब तक तैयार है। फिर जो ठंड पड़ लगाई लगाई तब तक जो है इसकी भी होन हो जाएगी।
1: अच्छा, फिर इसमें क्या लगाएंगे?
2: फिर गोभी का बेचारा है, इसे काट कर ठट्टर और जो बांस पांस भर के इसमें गोभी लगाएंगे।
1: अच्छा, गोभी लगाएंगे, ठीक। आप पे कितनी जमीन होगी?
2: जमीन तो वैसे है 30-35 बीघा, मगर कर 100-125 बीघा रहे।
1: अच्छा, तो कुछ बटाई में भी ले लेते हैं?
2: बटाई में रख के।
1: अच्छा, पेश की रख लेते हैं।
2: हाँ, पेश की पैसों पे। और वैसे
1: जी, अब कुछ खेत में आपने लौकी बरियानो भी कर लोगे?
2: हाँ, लौकी है, लोबिया भी बो रखी है पल्लंग।
1: अच्छा,
2: और एक और ठट्टर बना हुआ उसमें तुरई तुरई है,
1: उसमें केवल तुरई है, इसमें लौकी है।
2: इसमें लौकी है।
1: खास तौर से कौन कौन सी बीमारियां आपकी लौकी जो फसलें हैं सब्जी वाली उनमें आती है?
2: सबसे ज्यादा बीमारी घुमना है, जो घुमना जाए लौकी में लग जाए तो जो कुछ ना लग, तो मिर्च में हर फसल में घुमना की शिकायत ज्यादा है। घुमना जिसमें लग गो तो वहाँ में आता ही नहीं।
1: क्या लौकी कानी भी होती है?
2: कानी हो जाती है, बर रही है, टंग मारती है तो।
1: अच्छा, सफेद मक्खी है जिसको
2: सफेद नहीं, वो लाल मक्खी होती छोटी वाली
1: जी,
2: उससे कानी हो जाती है।
1: उससे कानी हो जाती है, फिर क्या उपाय करते हैं?
2: स्प्रे वगैरह लगाते हैं और का।
1: अच्छा, तो इसकी निराई गुड़ाई किस तरीके से होती है, कितने कितने समय पे?
2: निराई गुड़ाई कर देते हैं, घास मालम पड़ी, अब निराई गुड़ाई कोई है समय जो ऊपर ठट्टर पर पहुँचाएगा लौकी थी निराई देंगे।
1: तो अकेले ही खेत में लगे रहते हैं, घर वाले भी साथ देते हैं?
2: ना, स्प्रे वगैरह हम करते हैं, पापा आ जाते हैं कभी कभी। अभी छोटा भाई अभी गया है थोड़ी देर, मुझे बांध रहा ऊपर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बालक बच्चे हाथ पटाते रहते हैं। और खेती बाड़ी काम काज है वो संग सहे टाकू?
2: हाँ, संग सहे टाकू, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से दोपहर से, जो ऊपर पहुँच

0: वायरिंग जो नीचे पड़े हैं पुराने।
1: अच्छा, तो इस पे ऊपर चढ़ा देंगे।
0: हाँ।
1: और फिर ये ऊपर पौड़ने लगेगी।
0: हाँ, ऊपर पौड़ने लगेगी, फल बढ़िया आता है ऊपर लगाने से। जो नीचे फल बढ़िया नहीं आएगा, जैसे अब बारिश हो जाए तो फल नीचे से खराब होने लगता है, और ऊपर पहुँचा देंगे तो धूप और जो हवा सब लगती है तो उससे जो बढ़िया फल आता है।
1: जी, जमीन पर फल होंगे, दाग धब्बे लगेंगे,
0: दाग धब्बे हो जाएंगे तो बिक्री में भी रेट भी नहीं मिल पाता उतना, देखने में बढ़िया नहीं लगती है।
1: जी, और फिर जब लटकने के बाद तैयार भी जल्दी हो जाती होगी।
0: तैयार का वैसे जमीन पोए तो तीसरे दिन काटो, और वैसे आज को काटो दूसरे दिन फिर काट लो।
1: अच्छा, रोज तुड़ाई कर लो।
0: रोज तीसरे दिन तो हो ही जाती है लगभग।
1: उदयवीर जी, एक बात हम ये जानना चाहेंगे, लोग सब्जी वाली फसलें करना नहीं चाहते, लेकिन सब्जी वाली फसलों में फायदा ज्यादा है।
0: सब्जी वाली फसलों में लग जाए,
1: अच्छा,
0: हाँ, जैसे अब बीमारी नहीं आए कोई सी तो जो बहुत तेरा फायदा है, और बीमारी आ जाए तो कोई फायदा नहीं। अभी गोभी की बेड़ी हमारी करीब 5-6 बीघा खेत के लिए पड़ी हुई थी, अब बारिश हो गई सब मारी गई।
1: अच्छा, अब तो काफी नुकसान,
0: काफी नुकसान, बीज के पैसे तो गए। हाइब्रिड बीज सब महंगा बीज मिलता है।
1: जी, बात सही है आपकी, तो ये काफी नुकसान हो जाता है। बीमारियां अगर
0: बीमारियां नहीं लगा तो बहुत जो है तो सब्जी को काम और रेट भी मिल जाए तो इससे ज्यादा पैदावार किसी की ना है।
1: अच्छा, एक चीज और देखने में आती है कि सब्जियों का पैसा रोजाना आता है।
0: हाँ, रोजीना मन में है तो अगर फुर्सत में हो तो अगर पैसे की टूट है तो तोड़ कर ले जाओ और पैसा तुरंत तैयार है।
1: और वैसी फसलें हैं खाद्यान्न वाली, उनका उन फसलों का पैसा
0: 6 महीना वो किसान के लिए जिए, किसानी के चक्कर में इसी के कारण करते हैं।
1: जी,
0: जैसे कोई दिक्कत वगैरह आ रही है तो हर समय पैसा को दुखी न रंग।
1: जी, कोई टूट पड़ती है तो ये सब्जियों वाली फसलें पूर्ति कर,
0: घरेलू खर्चा के लिए जो है तैयार, हर समय तैयार रखते हैं 2-4 बीघा फसल
1: जी
0: भरे आने वाली।
1: अच्छा, यही होना चाहिए। उदयवीर जी, खेती बाड़ी के विषय में आपसे बातचीत हुई, हमारे जो किसान साथी हैं अनुभव जान पाए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहनों, अभी आपने क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता सुनी, किसान की पहली प्राथमिकता फसल की सुरक्षा। हमारे साथ आपको जानकारी दे रहे उदयवीर सिंह, किशन सिंहपुर बरेली के रहने वाले हैं। यदि हम और आप सब इसी तरीका से जैसे उदयवीर भैया खेती बाड़ी कर रहे हैं, समय से अपनी खेती में दवाइयां आदि को छिड़काव करते हैं, तो निश्चित रूप से जो फसल है वो हमारी सुरक्षित होगी और हमें उससे अच्छी पैदावार मिलने की हर संभव संभावना रहेगी।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: और अब कार्यक्रम में पुनः मनोरंजन करते हैं एक मधुर लोक गीत से, जिसको स्वर दौ है देवेंद्र देव ने और पसंद की है आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं ग्रामबा पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शेखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव और परिवार के सभी सदस्य। आप हैं शिव कॉलोनी बिसौली से शुभ कुमार सिंह, दीपाली सिंह, ममता सिंह, अभिषेक कुमार सिंह, अनित कुमार सिंह, मीनू सिंह और साथ में मुन्ना सिंह। तो आप सभी के अनुरोध पर आप सुनते हैं जी मधुर लोकगीत देवेंद्र देव के स्वर में।

भैया बहनों, अभी आपने बहुत ही मधुर लोकगीत सुनो देवेंद्र देव के स्वर में। हमें उम्मीद है आपको कार्यक्रम में लोकगीत अवश्य पसंद आएगा। और घड़ी भी टिक टिक करके इशारों करने लगी है कि अनुमति लेने की बेला आ चुकी है। तो भैया, इन्हीं सब बातों के साथ अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया हेडलपाल सिंह को दीजिए अनुमति। कीजिए स्वीकार भैया बहनों, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। शाम के 7 बजे हैं और समय हो चला है अक्षयवट कार्यक्रम का। तो आज इस कार्यक्रम में हमारी श्रोता हैं रामलली, जिनसे ब्रजेश तिवारी की भेंट वार्ता आप तक पहुंचाते हैं।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM और हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम अक्षयवट। और बताते ही हैं हम हर बार और फिर से बताए देते हैं कि कार्यक्रम अक्षयवट आकाशवाणी बरेली की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम अपने समाज के वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ स्टूडियोज में आमंत्रित करते हैं और हमारे आमंत्रित जो विशेष मेहमान होते हैं उनके जीवन की जो संघर्ष गाथा है या उनके जीवन में अब तक जो कुछ घटित हुआ उनसे लाभान्वित या उनके अनुभव से लाभान्वित हो सके हमारे श्रोता, हमारा समाज, यही उसके पीछे का मनोभाव है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियोज में है रामलली शर्मा जी। रामलली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो रामलली जी, पहले तो आप हमें यही बताइए कि लगभग आपकी उम्र कितनी होगी?
2: हमारी 60 साल।
1: 60 साल जी। तो रामलली जी, एक बात

0: बताइए।
1: 60 साल की उम्र, और वैसे हम लोग ने जैसा बताया ही कि कार्यक्रम में हम वरिष्ठ नागरिक और खास तौर से 55-60 के बाद के जो हमारे समाज में विद्यमान हमारे वरिष्ठ जन हैं उनको बुलाते हैं उनके अनुभव जानने के लिए। ऐसे में रामलली जी का अनुभव जो है वो यहाँ तक कि उनकी जो संघर्ष गाथा है कि उनका कैसे बाल्यकाल से लेकर यहाँ तक कि उनके जीवन में कैसे शुरू हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने संघर्ष देखे और यहाँ तक पहुँचा, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: संघर्ष तो मेरा बहुत वैसा
1: जी
0: रहा है, मैं आपको बताऊंगी तो आप भी ये कहेंगे कैसे करके आपने ये संघर्ष कैसे करके जीवन अपना
1: अच्छा
0: काटा। हाँ, मेरी 22 साल की एज थी,
1: जी,
0: मेरे पति एस्पारो, 15 साल में मेरी शादी
1: अच्छा
0: हुई।
1: आपकी शादी 15 साल में हो गई
0: जी
1: थी, और आपका जो मतलब बचपना था
0: जी
1: वो माता पिता और कहाँ कैसे पढ़ाई
0: माता
1: सब।
0: पिता तो पढ़ाई तो ऐसी रही, खेती किसानी करते हैं
1: अच्छा
0: मेरे पिति।
1: अच्छा
0: हाँ, पर पढ़ाई तो मेरी ज्यादा नहीं, 8th तक
1: अच्छा
0: पढ़ पाई
1: अच्छा
0: थी मैं।
1: एट तक पढ़ पाई
0: जी,
1: थी।
0: उसके बाद फिर शादी कर दी। शादी के बाद मानी कि लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है कि शादी कर दो। बाबा हमारे बीमार रहते थे तो मेरी बुआ की, मेरी सबकी 14-15 साल में सबकी शादियां हो गई थी।
1: अच्छा
0: हाँ, शादी 15 साल में शादी कर दी।
1: अच्छा
0: और 22 साल की मेरी थी, 19 साल में मेरी बेटी हुई और 1.25 साल की मेरी बेटी थी, बेटा मेरा बेटा हो गया 1.25 साल बाद।
1: अच्छा
0: जी, 22 साल की मेरी एज में एस पार हो गए मेरे पति जी।
1: अच्छा
0: जी, अब छोटे दोनों, 3 साल की मेरी बेटी पूरी नहीं हुई थी, 1.5 साल का मेरा बेटा था, ना बोल पाता था ना चल पाता था। और मैंने अपना ऐसा जीवन कि मुझे कुछ नहीं आता था, केवल एक सिलाई आती थी मुझे।
1: अच्छा
0: अपना पूरा 2-3 साल इनके बाद तो ऐसा रहा कि जैसे 3 साल तक तो मेरा बिल्कुल दौड़े पड़ते थे मुझे, और मुझे होश में नहीं आया। मेरे सास ससुर खैर बहुत अच्छे थे,
1: अच्छा
0: परिवार मेरा वो मेरा बहुत साथ दिया। और जब तक 6 साल बाद सास ससुर भी नहीं रहे इनके,
1: अच्छा इनके
0: हाँ,
1: जाने के बाद।
0: जाने के बाद फिर मुझे बहुत जीवन ऐसा कैसे काटूंगी मैं, क्या करूंगी। ससुर ने मेरे, मुझे थोड़ी सिलाई आती, ससुर जब रहे तो ससुर ने मेरी सिलाई सिखवाई मुझे। सेंटर की बोले कि नहीं ऐसे नहीं सीखोगे तुम, ब्लॉक से मुझे जुड़वाया, ब्लॉक से मुझे सिलाई सिखाई।
1: अच्छा
0: हाँ, सिलाई के बाद बोले बेटा तुम बिजी हो जाओगी तो कम से कम 2 पैसे का सहारा हो जाएगा, किसी के अधीन नहीं रहोगे। और केवल 350 रुपये पेंशन बन
1: उस
0: जाए
1: दौर
0: हुए
1: 1985।
0: 1985 में मेरे पति एस्पायर हुए। अब कैसे करके आप जानते हैं 350-350 रुपये में क्या
1: तो
0: होता
1: क्या
0: है। ना
1: करते
0: तो
1: थे
0: मेरे
1: आपके
0: जमीन
1: पति?
0: थी, पुलिस में थे
1: अच्छा वो भी सेवा में थे।
0: जी, ना जमीन थी और मकान भी ऐसा ही था, कोई मकान बनवा पाए, प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं था। ऐसे एक बार बारिश हो रही थी, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर चार बैठी, ऐसे बारिश जैसे बाहर वैसे ही अंदर, और चौकी रख के तो मैंने बच्चों को खिचड़ी बना खिलाई अपने। मैंने इतना जीवन अपना संघर्ष में काटा कि मैं आपको अपना बता नहीं सकती। फिर सिलाई उलाई अपना करके फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया सिलाई में, फिर बच्चे भी थोड़ा समझदार हो गए। फिर मैंने एक गाय पाली, थोड़े दिन गाय का अपना गोबर और दूध सब बेच, मैं दूध बेचती, दूध बेच के अपनी सिलाई भी करती थी और फिर बच्चों का पालन पोषण करा। 5 साल मैं अपने देवर के पास देवरानी के रही, कि बच्चों की पढ़ाई की वजह से केवल, बेटा मेरे ससुर सास ससुर नहीं रहे तो बेटा थोड़ा सा बच्चों में निकल जाता तो घने, अब गांव में तो पर्दा होता है, बाहर नहीं निकल सकते।
1: बिल्कुल।
0: फिर वह दे 5 साल देवर के पास रही, हुआ पढ़ाया उसको, दोनों बच्चों को। और फिर पढ़ाई के बाद लड़की मेरी MA कराई ज्योग्राफी से, बेटे ने मेरे MA कराया इंग्लिश से, फिर उसने
1: अच्छा MBA
0: MBA कराया। हाँ, अब प्राइवेट कंपनी में कर रहा है,
1: नहीं
0: पुलिस
1: मिली।
0: में नहीं मिली,
1: अच्छा तो
0: बहुत प्रयास किया
1: लेकिन नहीं
0: हम
1: मिली,
0: नहीं मिली, वो जीव ही निरस्त कर दिया गया था। बोले
1: तो इस
0: पांच
1: वजह
0: साल
1: से
0: के अगर अंदर मानी
1: हो
0: होता,
1: जा।
0: 18 साल है, बहुत हो गई।
1: तो आपने जैसे बताया कि कैसे आपने कि तखत चौकी के नीचे आपने बच्चों को खाना बना के खिलाया वहां से, और आज यहाँ कि आपने बच्चों को MBA कराया, आज दोनों बच्चों की शादी कर दी
0: दोनों
1: आपने।
0: बच्चों की शादी है, दोनों बच्चे बच्चे हैं, बेटी पे 2 बेटी हैं, एक बेटा है और बेटे पे एक बेटा है।
1: अच्छा, और वो 300 रुपये पेंशन के सहारे, और गाय पाली आपने और काम करा सिलाई करी। तो श्रोताओं, अगर आप हमारी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आप सोचिए कि हम लोग जरा सी कोई आज की डेट में तकलीफ आ जाती है जरा सी कि काम को करने के लिए हम पे पैसे नहीं, या मान लीजिए कुछ खाने का मन ही हो रहा है और नहीं खा पा रहे हैं तो भी विचलित हो जाते हैं कि बताओ आज मन मान। ऐसे में आज हमारे स्टूडियोज में जो हमारी मेहमान है रामलली जी, कि बच्चों को

0: कहां से पढ़ा लिखा कर आज इस लेवल पर लेके आए, कितनी संघर्ष गाथा है, कितनी उसके पीछे के भाव हैं, कठिन भाव हैं, और विचलित नहीं हुई ना डिगी, और वहां उन संघर्षों से लड़कर अपनी नौका को आज खेव करके इस किनारे पर हैं। इस संघर्षपूर्ण गाथा को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम अक्षयवट में, और यही इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता है कि आप अनुभवों से। तो हम आगे बढ़ते हैं। राम लीजिए, एक बात और बताइए, आपने वहां से दौर देखा कि भाई बच्चों को कितने प्यार से आपने रखा, जो भी साधन थे। आज हम देखते हैं कि भाई बच्चे अपने अपने जीवन में गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि माँ बाप उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं, कि वो इतने इन्वॉल्व हो गए अपने परिवार में कि हमारे माँ और अपने परिवार के उन संघर्षों को भूल गए जो उन्होंने बड़े दी। तो आजकल के जो बच्चे हैं जो एकल परिवार में विश्वास रखते हैं कि खट से जरा सा इंडिपेंडेंट हुए नहीं कि अपना परिवार अलग, अपनी गृहस्थी अलग बसा ली, तो इसको आप कैसे देखते हैं?
1: इसको तो ऐसे देखते हैं, बेटा भी मेरा बहुत अच्छा है और मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। आज के देखे बहुत अच्छी है, और बेटी तो है ही अच्छी, बेटी से ज्यादा दामाद अच्छी है।
0: अच्छा।
1: हर बात में पूछना कि मम्मी कोई परेशानी तो नहीं है, और बेटा भी शाम को आएगा, मम्मी क्यों दवा खाई, तब ये सही है, कल मेरी दवा खत्म हो गई। जब आया, दो दिन बाद आया हल्द्वानी से, लौट के लेके आया। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, तो बहुत ध्यान रखते हैं। अब तो ये समझ लीजिए, जीवन जो संघर्ष का था, अपना छोटा सा मकान भी है बरेली में, बेटे को बना दिया है।
0: अच्छा।
1: दुनका में रहते हैं, पर जी हाँ, अपनी गृहस्थी के लिए है मकान, पर बरेली में है।
0: अच्छा।
1: दमान मेरे जूनियर में टीचर है।
0: अच्छा। देखिए, और आपके संघर्षों की जो है कितना सुंदर फल है कि बच्चे आज कामयाब है, दामाद भी सेवारत है। और देखिए, और क्या ही चाहिए माँ बाप को कि उनके बच्चे उनसे उनका बस प्रेम से बैठ के हाल पूछ लें तो लाखों रुपया।
1: शाम को नाती है, 9 साल का हो गया, 10वीं साल में चल लिया, पर मैं नहीं भी खाऊं तो खाना नहीं खाएगा, दादी आपने क्यों नहीं खाया। चारों लोग शाम को खाना बैठ के ही खाते हैं साथ में, जब तक बेटा नहीं आएगा, चौ 11 बजे, दादी मेरा खाना नहीं, माँ लगाना नहीं, दादी को मेरा खाना, पापा आ जाएंगे तभी खाएंगे।
0: बहुत सुंदर बात कही कि भाई जो परिवार आज की डेट में साथ में बैठ के खा रहा है, बातें कर रहा है, वो वाकई में सुखी है। अच्छा रामलली जी, मेरा वो प्रश्न इस तरह था कि हम देखते हैं कि आज जो एकल परिवार है उसकी अवधारणा है, मतलब ये भी मानेंगे कि अब छोटे छोटे परिवार, चार भाई हैं तो चारों अलग अलग बट गए, और हम लोग ने, हमने भी, हमारे पिताजी 5 भाई थे और मिट्टी का हमारा घर था और उसमें सब लोग एक साथ रहते थे मिलजुल के। मेरी मम्मी सबसे छोटी थी, तो वो और जेठानी तो नहीं क्योंकि पहले तो बड़े का अदब है, लेकिन उनकी बहुएं फिर हम उम्र होती तो वो सब मिलके इतने बड़े 50 लोगों का खाना बनता था, इतना बड़ा परिवार, तो वो तो खत्म ही है। तो आपको क्या लगता है वो दिन, आज के दिन कैसे लोग प्रेम
1: नहीं खत्म है? पर हम ये नहीं कहते हैं कि चलो आज का समाज ऐसा है, पर अगर कुछ है, शादी है या ब्याह है, तो ये सोचना चाहिए सब मिलके ही एक साथ बैठ के खाएं, एक साथ बैठ के बातें करें, तो वो परिवार की मानिए अलग
0: अच्छा
1: ही,
0: हाँ,
1: खुशी अलग ही होती
0: है। अवसरों पर तो कम से कम समय से आदमी इकट्ठा हो, सुख दुख में एक साथ खड़े रहें,
1: दुख सुख है तो साथ खड़े रहना
0: चाहिए। तो अच्छा, आप ये तो बात आपने बताई, क्या हमारे अपने जीवन के यहाँ तक के अनुभव से हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं और हमारा जो समाज है, हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल बड़ी छोटी छोटी सी बात पे मियां बीबी में झगड़े हो जाते हैं, झगड़े कई बार पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जा रहे हैं, मोहल्ले में बीच बचाव कराना पड़ रहा है। तो इन सारी बातों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए आजकल बच्चों को कि अपने जीवन को अच्छे से
1: बढ़ाएं? बच्चों को शुरू से ही माँ बाप को थोड़ी शिक्षा देना चाहिए।
0: अच्छा।
1: आजकल बच्चे क्या है, संस्कार बिल्कुल भूल गए। बच्चों को माँ बाप ही है गुरु, जैसे बच्चों को ढालोगे शुरू से वैसे बच्चे ढल जाएंगे। अब सोई बाहर की बेटी अगर मानी है, कुछ ऐसी होती हैं लड़कियां जो मानी जैसे थोड़ा सा अलग हटके चलती हैं परिवार से, और वैसे ये है कि उन्हें भी ये सोचना चाहिए मेरे भी माँ बाप हैं, वैसे ये भी मेरे माँ बाप हैं, तो उसको मानी साथ में लेके चलना चाहिए,
0: मतलब सब पूरे परिवार को
1: एक साथ।
0: अच्छा, ये तो आपने कहा लेके चलना चाहिए, अभी बात आती है कि हम ये देखते हैं कि आजकल के युवाओं में धैर्य बहुत कम है। धैर्य मतलब कहा जाता है कि पेशेंस तो है ही नहीं कि किसी ने कोई बात कह दी तो खाली ना जाए, तुरंत उसका जवाब दे। कई बार हम लोग उस काल से आते हैं, वो दौर भी देखा है कि जहां हिम्मत नहीं थी कि बड़े ने अगर कोई बात कह दी तो छोटे उसका प्रतिउत्तर दें। वो बात सही है कि गलत है वो एक अलग चीज है, लेकिन उस समय वहां से नहीं देते तो कई बार बड़े बड़े झगड़े टल जाते थे। नहीं तो ये भी एक बात है ना कि लोग धैर्य के साथ
1: धैर्य रखना चाहिए। और

0: हाँ, जिसके अंदर अगर धैर्य नहीं होगी तो वो एकता करके नहीं रह सकता। मियाँ बीवी हों, चाहे मानी सास ससुर हों, चाहे बहू बेटा हों, वो नहीं रह सकते। थोड़ा तो अपने आप को मानी ये तो धैर्य रखना पड़ेगी
1: और अपने
0: परिवार में।
1: परिवार की ये जो
0: जी,
1: जो गाड़ी है,
0: गाड़ी
1: जो दो पहियों के साथ चलती है, ये पहिया ये गाड़ी तभी चल सकती
0: चलती,
1: है जब
0: हाँ
1: दोनों पहिये
0: दोनों
1: समान
0: का
1: रूप से चले।
0: हाँ जी
1: एक भी डिरेल हो
0: जी
1: गया तो
0: हाँ,
1: गाड़ी उतर
0: गाड़ी उतर
1: जाएगी।
0: जाएगी।
1: तो रामलली जी, आपने आए अपने जीवन के बारे में हमारे साथ इतनी सारी बातें की और अपने संघर्षों के बारे में बताया। आजकल जहाँ थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी सी बातों पे हम सभी विचलित हो जाते हैं, ऐसे में आपने बताया कि कैसे इतना पहाड़ जैसा दुख टूटने के बाद भी आप डिगी नहीं, आपने अपने आप को सामर्थ्यवान बनाया, सिलाई सीख के अपने आप को हुनरमंद बनाया, अपने बच्चों को पाला, बच्चों को न सिर्फ पाला बल्कि

0: भी डिरेल हो गया तो
1: गाड़ी उतर जाए।
0: तो राम लली जी, आपने आए, अपने जीवन के बारे में हमारे साथ इतनी सारी बातें की और अपने संघर्षों के बारे में बताया। आजकल जहां थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी सी बातों पे हम सभी विचलित हो जाते हैं, ऐसे में आपने बताया कि कैसे इतना पहाड़ जैसा दुख टूटने के बाद भी आप डिगी नहीं, आपने अपने आप को सामर्थ्यवान बनाया, सिलाई सीख के अपने आप को हुनरमंद बनाया, अपने बच्चों को पाला, बच्चों को न सिर्फ पाला बल्कि उच्च शिक्षा दी और आज वो बच्चे अपने अपने स्थान पर हैं और परिवार के समय। तो ऐसे में अब चलते चलते हमारे बीच बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हमें सुन रही होंगी जो अपने आप को सशक्त करना चाहती हैं, जो धन अर्जित करके अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं, अपने परिवार को आगे ले चलते। अब देखिए खर्चे भी इतने ज्यादा हैं कि एक व्यक्ति के कमाने से भी अब घर चला मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप हमारी उन सभी महिलाओं को जो हमें सुन रही हैं क्या राय देंगी कि किस प्रकार से वो अपने आप को?
1: मैं तो यही राय दूंगी कि अपने लिए मानी थोड़ी मेहनत करना चाहिए
0: जी।
1: सिलाई है, कढ़ाई है, बुना, अपने को बिजी रखना चाहिए। अगर बिजी रहेंगी तो इधर उधर की दिमाग में बातें नहीं आएंगी
0: जी।
1: अपने परिवार को लेकर चलना चाहिए
0: जी।
1: परिवार में एकता रखना चाहिए, चाहे देवरानी जिठानी हो, चाहे सास बहुएं हो, चाहे बेटी माँ हो, तो परिवार में एक साथ एकजुट रहकर कुछ खुशी अलग है।
0: बिल्कुल,
1: तो कहना यही है।
0: बिल्कुल, हमेशा अपने आप को नई नई चीजें
1: सीखना चाहिए,
0: सीखने चाहिए भाई। आजकल
1: पहले तो इतना नहीं था, अब तो देखो ये जो मोबाइल हर समय हाथ में लिए बैठी, इसमें सब कुछ आ रहा है, सब कुछ दिखा रहे हैं। पहले तो कि लाइट भी नहीं थी, हम तो जला ले लैंप के लिए, उसमें सिलाई करते थे रात में। दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात में करती थी मैं सिलाई।
0: देखा,
1: मेरी सास कहती है आंखें फोड़ लोगी, एक तो वैसे इतनी परेशानी, इतनी दुखमा, और ये आंखें भी फोड़ लेना। मैं कहती कोई बात नहीं है माता जी, अभी ये परेशानियां आगे चल के बिल्कुल नहीं रहेगी।
0: बिल्कुल श्रोताओं, देखा कि कितनी पठना दिए में, लैंप में, मोमबत्ती में इस तरीके से संघर्ष करे, और आज के आधुनिक युग में जब हमारे पास लाइट है, इन्वर्टर है, मोबाइल है, एसी है, कूलर है, पंखा है, बिजली सब कुछ है, ऐसे में भी हम डिग जाते हैं। और तब उस विपरीत परिस्थितियों में भी रामलली जी नहीं डिगी, ने मजबूत हौसलों और इरादों के दम पे उस विपरीत परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए हम यही संदेश लेकर आएंगे कि क्या परिस्थितियां कितनी भी विचलित हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हर काली रात के बाद सुबेरा जरूर होता है। अपने हिम्मत को मजबूत बना के रखें, प्रयास करते रहें, धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहिए, निश्चित रूप से आपको एक नई दिशा और एक नया राह मिलेगा। रामलली जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आप हमारे स्टूडियोज में पधारी, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, अपने जीवन के इतने सारे अनुभव हमारे साथ साझा किए, आपका अनेक अनेक धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे अक्षय वट। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। खोए व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। आप हैं सौरभ पुत्र राकेश। आप कुढ़ा शाहपुर थाना कादर चौक जनपद बदायूं के निवासी हैं। इनकी आयु लगभग 20 वर्ष है। लंबाई 5 फीट 5 इंच। ये हिंदी भाषा जानते हैं। इकहरा मजबूत जिस्म, गोल चेहरा व रंग सांवला है। इन्होंने लोअर टी शर्ट पहना हुआ है। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं से संपर्क करें। इसी क्रम में आप हैं विशनलाल पुत्र वेनीराम। आप अकबराबाद थाना सहसवान जनपद बदायूं के निवासी हैं। इनकी उम्र 25 वर्ष है। लंबाई 5 फीट। इकरा मजबूत जिस्म व रंग सांवला है। ये मूक बधिर हैं। ये 13 अगस्त 2026 से लापता हैं। इन्होंने काली धारी की शर्ट और जीन्स पहनी हुई है। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं से संपर्क करें।

स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 23 सितंबर 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है वायरल फ्लू शंकाएं और आधुनिक उपचार। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 22 सितंबर 2026 को स्वयं 4 बजे से। तो इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक उपस्थित रहेंगे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब से कुछ ही देर में होंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नमामि गंगे के तहत राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला गंगा समिति एवं जिला प्रशासन के माध्यम से जनपद की छोटी नदियों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
1: आइए अपने जनपद की नदी को पहचाने और उसके संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाएं। ये सूचना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब?
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन की तैयारियों को परखा। कार्यकर्ताओं से कहा, राष्ट्र प्रथम के भाव से करें काम। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चंदे में अनियमितता मामले में हुई सुनवाई। सरकार ने कहा 25 सितंबर तक दाखिल कर दी जाएगी चार्जशीट। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। कहा सरकार की नीतियों ने निवेशकों के लिए बनाया सकारात्मक वातावरण। और वाराणसी में 25 अक्टूबर को होगा इंडियन एयरफोर्स एरियल डिस्प्ले का आयोजन। भारतीय वायुसेना के जाबाज आसमान में दिखाएंगे अपना कौशल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मेरठ में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान शक्ति केंद्र संयोजक

0: सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ समाज के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया एक नए भारत के दर्शन कर रही है।
1: 2014 में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वे नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता को अपने हाथों में लिया था, एक नए भारत का दर्शन, एक भारत जो अपनी विरासत पर भी गर्व करता है और विकास के लिए जिसकी अपने की स्पीड है, एक ऐसा भारत जिस भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं है। अब भारत की अर्थव्यवस्था बॉटम फाइव से टॉप फाइव में आ गई है।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने संबोधन में मेरठ को क्रांति की धरा बताया। उन्होंने कहा कि इस धरती ने कई ऐसे परिवर्तन दिए हैं जिन्होंने देश के साथ पूरी दुनिया को संदेश दिया है। श्री नवीन ने बीते 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आए परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि आज राज्य में कानून का राज है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
2: आज हम कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार में भरोसा का वातावरण है। आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज है और आज हम कह सकते हैं कि विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश चल पड़ा है और विकसित राज्य की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है।
0: श्री नवीन ने युवाओं से संवाद के दौरान युवाओं को देश की मौजूदा ताकत बताया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कल सहारनपुर में सांसदों, विधायकों, जिला स्तर के पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चंदे में अनियमितता मामले पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की बेंच को बताया कि अदालत द्वारा नियुक्त एसआईटी 25 सितंबर या उससे पहले अपनी पहली चार्जशीट दाखिल करेगी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी से 90 दिन की वैधानिक अवधि जल्द ही खत्म होने वाली है। उस अवधि से पहले चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने एसआईटी की ओर से पेश की गई विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी देखी। वहीं एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज आगरा में 2 दिवसीय इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का शुभारंभ किया। इस एक्सपो में देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमी प्रदेश में वेडिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नई पर्यटन नीति, सरकार के प्रयास, उद्यमियों को दी जा रही सुविधाओं और बेहतर कानून व्यवस्था के निवेशकों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया है।
3: पर्यटन क्षेत्र में नई पॉलिसी एडॉप्ट करके इन सब लोगों को नई सहूलियत देने का, सब्सिडी देने का, तमाम इंसेंटिव देने का काम किया है, जिससे मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का वर्तमान में चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, कनेक्टिविटी का हो, या नई पॉलिसी तमाम सुविधा संसाधन और सब्सिडी देने का विषय हो, आज देश और दुनिया के तमाम निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज जनभवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली, नशा मुक्ति और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता व रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। वहीं इटावा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने अभियान के तहत शुरू हुई वाराणसी से वडनगर यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में यात्रा के इटावा से गुजरने के दौरान रूट, स्वागत स्थलों, यातायात और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष

0: वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही भगवान राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
2: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगी।
1: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
3: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है, अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
1: अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वाराणसी में नमो घाट पर 25 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स एरियल डिस्प्ले 2026 का आयोजन होगा। इस दौरान वायुसेना के जाबाज आसमान में अपनी सटीकता, कौशल और समन्वय का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन में मध्य वायु कमान की 6 दशकों से अधिक की गौरवशाली विरासत और युद्ध अभियानों, आपदा, राहत और मानवीय सहायता में निभाई गई भूमिका को भी प्रदर्शित किया जाएगा। हवाई प्रदर्शन के समय दर्शक क्षेत्र, यातायात, पार्किंग और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश आयोजन की तिथि के निकट आधिकारिक माध्यमों से जारी किए जाएंगे। राज्य के कुछ जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश से मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आगामी 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन की तैयारियों को परखा। कार्यकर्ताओं से कहा, राष्ट्र प्रथम के भाव से करें काम। सर्वोच्च न्यायालय में आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चंदे में अनियमितता मामले में हुई सुनवाई। सरकार ने कहा, 25 सितंबर तक दाखिल कर दी जाएगी चार्जशीट। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। कहा, सरकार की नीतियों ने निवेशकों के लिए बनाया सकारात्मक वातावरण। और वाराणसी में 25 अक्टूबर को होगा इंडियन एयरफोर्स एरियल डिस्प्ले का आयोजन। भारतीय वायुसेना के जाबाज आसमान में दिखाएंगे अपना कौशल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: किधर है?
5: बेटे का नया अकाउंट और मेरा KYC अपडेट,
4: ये तो झटपट काम है।
5: कैसे?
4: अगर KYC डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
5: और बाकी चेंजेस?
4: घर बैठे वीडियो KYC या आधार OTP बेस्ड eKYC से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
6: RBI कहता है,
7: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
8: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
9: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक।

0: पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर, और अब आपके ढेर सारे अनुरोध भरे पत्रों के साथ शुरू करते हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। अनुरोध भरे पत्रों को शामिल करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस कार्यक्रम में आप भी अपने पत्रों को शामिल करवा सकते हैं। बस आपको लिखना होगा हमें पत्र, जिसके लिए पता है कार्यक्रम अनुरोध की द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, बरेली का पिन नंबर है 243001। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, पहले आपको बता देते हैं कि हमारे इन श्रोताओं की पसंद का सबसे पहला गीत आप तक कौन सा आने वाला है। समधी फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में है, मजरूह की शब्द रचना और राहुल देव बर्मन का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए इन सभी श्रोताओं के अनुरोध भरे पत्र हम तक पहुंचे। आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा ततरिंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा। मोहल्ला हलवाईन शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद बकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजा रानी और हिना कौसर। जमभेदपुर झारखंड गांव सुपाही साही से हैं देवेंद्र, तांती, राकेश, प्रकाश, निशा कुमारी और देवेन जी। गंज डुडवारा से हैं मुनव्वर लल्ला, मिर्जा नसरीन बेगम, अरवाज खान, शहवाज खान, सूफिया महबूबा, पप्पू भाई, अफसाना बेगम, महजवी शेख, वादाम अली और किशमिश जहां। चांडूर बिस्वा तालुका नांदूर जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से हमें पत्र लिख भेजा है नारायण भाऊ खट से, रक्षाताई खट से, ललिता संजना खट से, गणेश और कार्तिक, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी ने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी तबसुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। अशरफ खान छावनी पानी टंकी के पास होली चौक से राम प्रसाद शर्मा, जर्षी देवी, वंदना, मनोरमा, अजय शर्मा, रीता, विनोद और इनके परिवार के सभी साथी। ये पत्र मोहाली चंडीगढ़ से हम तक आया है। भेजने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। कालका से हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। कस्बा शीशगढ़ से हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। और अब इन श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत आप तक।

तो चलिए इस खूबसूरत गीत के बाद और पत्रों को शामिल कर लेते हैं, और उससे पहले बता देते हैं कि आपके रेडियो सेट पर अब दूसरा कौन सा गीत आने को है। सावन को अन, तो इस फिल्म से अगला गीत होगा यशुदास की आवाज में, साथ में हैं सुलक्षणा पंडित, माया गोविंद की शब्द रचना और राजकमल का संगीत होगा। और सुनने की फरमाइश किन लोगों की होगी बता देते हैं अपने इन श्रोताओं के नाम। तो परी महल कासगंज से हैं आवाज।

फहद खान, नवील खान, आरफा इल्मा, आफरीन असलम, सैफी और इनके परिवार के सभी साथी। ये हमारे श्रोता हैं कटरा चांद खां मौर्य मंदिर पुराना शहर बरेली से, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू एरोही और स्वाति मौर्य। मनकारा मंदिर वीडियो कॉलोनी कर गए ना बरेली से हैं पन्नीलाल सागर, विनी सिंह, मासूम धर्मीर, मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, रूबी भारती, रचना, एकता, दिव्या, ममता चौधरी, ओमवती भारती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। दीदा रेडियो श्रोता संघ मिलराम गेट कासगंज से हमें पत्र लिख भेजा है एम असलम सैफी, जबुनिशा बेगम, अक्रम सैफी और आबाद खान ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बीबी आरजू जाजोरिया। आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा। खुर्जा से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से हैं गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से हैं दुर्गाराम साहू।

इस गीत के बाद फिर लौट आते हैं पत्रों की ओर। तो लीजिए, बागपत उत्तर प्रदेश से ये पत्र हम तक आ पहुंचा है, संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया अपार ढिंगिया का। इंदिरा बिहार रायगढ़ से हैं वसीम अक्रम नूरजहां, डब्लू अक्रम नूरजहां, वली अक्रम और उल्लाह अक्रम। राजनांदगांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान। जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम और आदिवा तिवारी। गांव लाहौडडा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापति, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन और सुधीर नूतन। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर, श्रीमती सरिता गुहाड़कर, प्रिंस एकांश। बदलापुर मुंबई से हैं सिद्धांत प्रणता, अर्जुन गुहाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश, सुमित गुहाड़कर और साथ में हैं ध्वनि गुहाड़कर। रावर करनाल से हैं ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्लाह, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, सालिया शोएब खान, साइमा खान, मुश्तावा खान, अफिया खान, राहुल और शहीद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। जी आप सभी की अनुरोध पर 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से ये गीत कुमार सानू की आवाज में अपने संगीत से इसे सजाया है आरडी बर्मन ने।

और कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर रुख कर लेते हैं इन पत्रों के साथ। पहले आपको बता देते हैं कि पत्र किन श्रोताओं के शामिल हुए हैं। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद वीसलपुर जिला पीलीभीत से हैं। विमल वर्मा, विनय वर्मा, इनके परिवार के सभी सदस्य। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर महाराष्ट्र से हैं नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे। डोंगरगांव से हैं, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबी है, राधिका गजबी है, अनिष्का और तन्मय गजबी है। बठिंडा रोड डबाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित नारंग। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिर बजाज, बिट्टा बजाज। सेक्टर 67 मोहाली से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाड़ा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार। धोनी नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठरिया, अबरार और अफजाल। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा। अब आपको बताते हैं इनकी पसंद का गीत कौन सा है। तो साथियों, आप सभी ने सुनना चाहा है स्वामी फिल्म के इस गीत को, जिसमें आवाज है यशुदास की, अमित खन्ना की शब्द रचना और संगीत से पिरोया है राजेश रोशन ने।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम का जो समय है पूरी तरह से समाप्ति की ओर हो चला है, तो आज के कार्यक्रम अनुरोध गीत से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और अब आगे के कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।

प्रति अटूट आस्था ने हमारे देश को वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट पहचान दी है। इस परिदृश्य में यह भी चर्चा करेंगे कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी आंतरिक प्रगति से नहीं आंकी जाती, बल्कि उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों से भी तय होती है। इसी संदर्भ में हमें स्मरण करना चाहिए शिमला समझौते का। वर्ष 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह समझौता केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि शांति और स्थिरता की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। इस समझौते का मूल भाव था कि दोनों देश अपने विवादों का समाधान आपसी वार्ता और

द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से करेंगे। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि भविष्य में सभी विवादों का समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से किया जाएगा। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार करते हुए भारत और पाकिस्तान ने यह संकल्प लिया कि वे आपसी विश्वास और सहयोग को प्राथमिकता देंगे। शिमला समझौते के अंतर्गत युद्ध के बाद बनी सीज फायर लाइन को नया नाम देकर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC बनाया गया। दोनों देशों ने यह वचन दिया कि इस रेखा को एक तरफा रूप से नहीं बदला जाएगा और इसका सम्मान दोनों राष्ट्रों द्वारा किया जाएगा। भारत में युद्ध में विजित की गई लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पाकिस्तान को लौटा दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत का उद्देश्य केवल शांति और स्थिरता स्थापित करना है, न कि भूमि पर स्थायी कब्जा करना। इसीलिए भारत ने युद्ध में विजित की गई 13,000 वर्ग किलोमीटर जो भूमि थी वह पाकिस्तान को लौटा दी। शिमला समझौते का एक और महत्वपूर्ण पक्ष या यूं कहें बिंदु यह था कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। यह कदम दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण था। साथ ही दोनों देशों ने यह संकल्प लिया कि वो एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और भविष्य में संघर्ष के बजाय सहयोग यानी आपसी तालमेल को बढ़ावा देंगे, आपसी सहयोग की प्राथमिकता रहेगी। इस प्रकार शिमला समझौता केवल तत्कालीन परिस्थितियों का समाधान नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक रणनीति, एक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह समझौता हमें यह भी सिखाता है कि युद्ध से अधिक स्थायी है शांति, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। संघर्ष से अधिक प्रभावशाली है, शक्तिशाली है सहयोग। आज भी भारत की विदेश नीति में द्विपक्षीय और संवाद की जो नींव दिखाई देती है, उसका एक बड़ा आधार शिमला समझौता की भावना में निहित है। स्मरण रहे कि भारत की विदेश नीति आज पड़ोसी प्रथम और वैश्विक सहयोग की भावना से ओतप्रोत है। भारत ने हमेशा संवाद और आपसी सहयोग को प्राथमिकता दी है। शिमला समझौता इस नीति का ऐतिहासिक उदाहरण है। यह भी ध्यान देने योग्य है, जो शिमला समझौता के प्रमुख बिंदु थे, वे तत्कालीन परिस्थितियों को संभालने के साथ साथ भविष्य के लिए एक सोची समझी रणनीति, एक मार्गदर्शन देने वाला सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह समझौता हमें यह भी सिखाता है कि युद्ध से अधिक शक्तिशाली है मानवीय मूल्यों पर आधारित शांति का मार्ग और संघर्ष से अधिक स्थायी है आपसी तालमेल। जब हम वर्तमान परिदृश्य की ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि भारत अपनी
आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक धरोहर के बल पर विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस प्रगति को स्थायी बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो है वो सौहार्दपूर्ण रखें और शिमला समझौता की भावना

0: हमें इसी बात की प्रेरणा देती है। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सहयोग की भावना से किया गया था। इसका उद्देश्य था कि दोनों देश अपने विवादों को, अपनी उलझनों को, परेशानियों को, चुनौतियों को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाएंगे और सीमा पर एक स्थिरता बनाए रखेंगे। इस समझौते का सबसे बड़ा संदेश था द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण समाधान। स्पष्ट रहे कि भारत और पाकिस्तान अपने विवादों को केवल आपसी वार्ता से सुलझाएंगे, ऐसा इस समझौते की स्वीकार करने वाले पक्षों का दृष्टिकोण था और यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक आदर्श भी बना। पर यह संकेत मिलते रहे कि पड़ोसी राष्ट्र अपने स्वयं के मुद्दे सुलझाने के लिए तीसरे मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। शिमला समझौते ने हमें यह भी दिखाया है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव है और इस परिदृश्य में शिमला समझौता और भी प्रासंगिक हो जाता है।
1: वर्तमान परिदृश्य और शिमला समझौता। डॉक्टर अलका सिंह की वार्ता भी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम में। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फरीदा खानम की गाई गजलें।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर।
1: पढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार शाम 6:50 से 7:20 तक।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम, अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान airlucknow@gmail.com पर, या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कुछ ही पलों में आप समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership,
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब ₹35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में $20 अरब के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
2: इट इज एन इम्पोर्टेंट मोमेंट फॉर आवर बिजनेसेस।
4: हमारे

0: व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और एमएसएमईज, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
2: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
4: लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।

0: कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुँच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेनदेन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेनदेन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर

0: मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत। SD बर्मन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मुनीम जी।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था मुनीम जी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीत एसडी बर्मन का था।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था रजिया सुल्तान। इसे लिखा था जानिसार अख्तर ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म जुवारी से लिया है। गाने वाले कलाकार मुबारक बेगम, कृष्णा बोस और सुमन कल्याणपुर हैं। गीतकार आनंद बख्शी हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

मुबारक बेगम कृष्णा बोस और सुमन कल्याणपुर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जुआरी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है पूजा के फूल। गीत को आवाज लता मंगेशकर ने दी है, बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म पूजा के फूल का ये गीत सुना। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए और मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं राहुल देव बर्मन की धुन, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है शरीफ बदमाश।

फिल्म शरीफ बदमाश का गीत अभी आपने सुना, युगल स्वर आशा भोंसले और किशोर कुमार गीत थे। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है चाचा जिंदाबाद। गीत को आवाज लता मंगेशकर ने दी है, शब्दकार राजेंद्र कृष्ण हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाजें आशा भोंसले और सखियों की, फिल्म का नाम है साहेब बीवी और गुलाम।

0: इस रचना के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने उसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी अभिनेत्री जो टिपिकल बॉलीवुड के रोल भी उतनी ही कुशलता से करती हैं जितनी कुशलता से वो गंभीर भूमिकाएं निभाती हैं।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें करीना कपूर की। करीना कपूर जाने माने अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता की बेटी हैं। उनके दादा राज कपूर शोमैन के नाम से विख्यात थे, यानी कपूर खानदान का रोशन चिराग हैं करीना। उनकी बहन करिश्मा कपूर पहले ही फिल्मों में आ चुकी थीं और करीना कपूर का फिल्मों में आगमन अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ

जैसा कि मैंने आपसे कहा, करीना कपूर ने एक तरफ टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन वाली भूमिकाएं बहुत खूबी से निभाई हैं, दूसरी तरफ उनकी कुछ गंभीर फिल्में भी आई हैं, जैसे सुधीर मिश्रा की फिल्म चमेली, जिसके जरिए पहली बार वो एक गंभीर अभिनेत्री के तौर पर जानी गई।

विशाल भारद्वाज की फिल्म ओंकारा में उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार बड़ी खूबी से निभाया था। साल 2007 में आई वो फिल्म कैसे भूल सकते हैं, जिसके लिए

उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। इस फिल्म के निर्देशक थे इम्तियाज अली। इस फिल्म में करीना कपूर के साथ नायक थे शाहिद कपूर और ये फिल्म थी जब वी मेट।

रिफ्यूजी के बाद करीना कपूर की फिल्म आई मुझे कुछ कहना है। इसके अलावा उनकी कुछ और महत्वपूर्ण फिल्में हैं अजनबी, यादें और कभी खुशी कभी गम।

करीना कपूर ने अपने अभिनय के जरिए अपना लोहा मनवाया है और आज वो मुंबई फिल्म जगत की एक प्रतिभाशाली चोटी की अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।

0: बीबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई ले लो जी ले लो।
1: करीना कपूर अपनी भूमिकाओं का चुनाव बहुत सोच समझकर करती हैं। जाहिर है कि ऐसे में उनकी गिनी चुनी फिल्में आ रही हैं, लेकिन इन फिल्मों में वो अपने चाहने वालों को निराश नहीं कर रही हैं। जैसे धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म कुर्बान में उन्होंने बहुत सशक्त अभिनय किया।

साल 2009-2010 की बेहद चर्चित फिल्म रही है थ्री इडियट्स। विधु विनोद चोपड़ा का निर्माण और राजकुमार हीरानी का निर्देशन। थ्री इडियट्स जहां आमिर खान के लिए जानी जाती है, वहीं करीना कपूर की एक मस्त भूमिका के लिए भी याद की जाती है।

करीना कपूर ने बड़ी मेहनत के साथ कपूर खानदान के अभिनय की परंपरा को आगे बढ़ाया है। वो फिल्म संसार की सिर्फ सजीली हीरोइन नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी अभिनय प्रतिभा के लिए बिल्कुल जाना जाता है। एक मैं और एक तू, जिसमें वो इमरान खान के साथ नजर आईं। शाहरुख खान की फिल्म रावण, निर्देशक अनुभव सिन्हा,

फिल्म सत्याग्रह। इसे प्रकाश झा ने निर्देशित किया है। साल 2014 में करीना कपूर की फिल्म आई सिंघम रिटर्न्स। इसके निर्देशक थे रोहित शेट्टी।

सैफ अली खान से ब्याह रचाने के बाद करीना कपूर अब जरा चुनिंदा फिल्में ही करती हैं। उनकी धूम धड़ाका मचाने वाली फिल्म रही है सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान।

2016 में करीना कपूर ने फिल्म उड़ता पंजाब में काम किया। इस फिल्म के निर्देशक थे अभिषेक चौबे और इस फिल्म में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। साल 2018 में करीना कपूर ने शशांक घोष की फिल्म की वीरे दी

0: साल 2020 में करीना कपूर ने फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नैना की भूमिका निभाई थी। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री करीना कपूर पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, आईची नागोया से खेलों की दुनिया की बड़ी हलचल के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जापान की धरती पर सजे एशियन गेम्स के मैदानों में आज मुकाबले और भी दिलचस्प रहे। शुरुआती मुकाबलों से मिले रोमांच के बाद अब पदकों की असली रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। हर मैदान पर चुनौती बड़ी है, हर मुकाबला अहम है और हर खिलाड़ी की नज़र अपने लक्ष्य पर है। एशिया के 45 देशों से पहुंचे दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भारत के खिलाड़ी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। खेलों का ये महासंग्राम आगे बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है देशवासियों की धड़कन। तो आइए जानते हैं आईची नागोया से आज भारत के खेल अभियान का पूरा हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। एमएमए में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक, सुचिका तारियाल ने जीता कांस्य। शूटिंग में भारत का शानदार निशाना, 10 मीटर एयर राइफल में 3 पदक, एशियन गेम्स में कुल 5 शूटिंग मेडल। महिला हॉकी में गोलों की बरसात, भारत ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। कबड्डी में चैंपियन वाली शुरुआत, महिला और पुरुष टीमों ने जीते अपने अपने मुकाबले। वुशु में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती अभी जारी है। टेबल टेनिस मुकाबलों में पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान पर पाई आसान जीत। सेपिक टेक्रो में रोमांचक मुकाबले, टीम रेगू के ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हराया। अब मलेशिया से होगी अगली भिड़ंत। आईची नागोया में भारत का खेल अभियान जारी है, कहीं पदकों की चमक, कहीं बड़ी जीत और कहीं अगली चुनौती का इंतजार। सबसे पहले बात उस पदक की जिसने एशियन गेम्स में भारतीय एमएमए इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया। भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। सुचिका का सेमीफाइनल मुकाबला तेओ हुई हुन के खिलाफ हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मैच के बाद रिव्यू में मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वेइन नियम के आधार पर विजेता का फैसला हुआ। सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से 700 ग्राम कम था, इसलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सुचिका ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर पदक पक्का किया था। इससे पहले पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। एमएमए के बाद अब रुख करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
2: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज फार एज शूट

0: Thing is concerned, Aichi Nagoya mein Asian Games 2026 mein India won the men's 10 meter air rifle team event mein India ko mila silver medal. The team comprised of Rudraksh Patil, Himanshu Dhillon and Parth Mane. Isi competition mein China ne gold medal liya aur ek record haul ke saath aur South Korea ko mila bronze medal. Magar bas isi competition mein nahi, hamare Indian shooters made us proud in the men's 10-meter air rifle individual final as well. Rudraksh Patil and Himanshu Dhillon was in the final till the last minute and gave some great competition to China's Zhang Jiao. Magar Rudraksh Patil had to be satisfied with the bronze, while Himanshu Dhillon, jo apna Asian Games ka debut kar rahe the, unka score 252.4 se unko mila ek silver medal. So a fantastic start for the Indian shooters so far. They have been setting Aichi Nagoya on fire. और इंडियन शूटिंग कंटिजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं. याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून. वी आर होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल. सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची नगोया एशियन गेम्स 2026.
1: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है. पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की. वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली. पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा.
2: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया. आईची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा. आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया. भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली. दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी. भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की. एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है. कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी. इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए. मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता. इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही. वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया. भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला. वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की. भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है. भारतीय टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उपकप्तान हैं. भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था. इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है.
1: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा. पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट.
3: The Indian shuttlers gave a brilliant start to India in the world of badminton in the ongoing Asian Games 2026 to help India advance to the quarterfinals. Lakshya Sen gave India the perfect start against Bangladesh in the men's team first round tie, defeating Eman Jaman in straight games 21-4, 21-12 and thereby putting India ahead in the tie. Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurav Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al-Amin Jumar

0: in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
1: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी। महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
2: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और दो मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या दो मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने दो दो गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने एक एक गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रेम सियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने एक गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में दो गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार दो मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
1: अब चलते हैं तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
0: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10-swimmer medal race. China's Jiao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jihan Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh, failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4x200m freestyle relay mein bhi Bharatiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shashi Kumar failed to qualify for the finals also. तो अगर देखिए ओवरऑल तो भारतीय स्विमर्स के लिए आज का दिन बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 में।
1: अब पानी के खेल से निकलकर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टकराव। सेपेक टकराव में पुरुष टीम रेगू में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
2: भारत के पुरुष सेपेक टकराव रेगू टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगू प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टकराव में जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो मुकाबला जीती है और हर मैच में 15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले 2 गेम अपने नाम किया उसने 1 मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगू मैच 2-0 से जीता, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया, लेकिन

0: दूसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा, जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीतकर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टेक्रा 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगू में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोऊ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टेक्रा में अब तक 2 कांस्य पदक हैं।
1: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही हैं साक्षी मांडवाल।

0: जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगू में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स स्पेक्ट्रम में अब तक 2 कांस्य पदक हैं।
1: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपेंड टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। श्री जाकुला सील्ड द विक्ट्री विद अ स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड देयरबाय इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। And then came Shri Jakula, who was able to convert that 2-0 commanding position to a 3-0 victory, thereby sealing India's win in our favor. India will now be facing Thailand tomorrow in the pre-quarterfinal match. Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Sathyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Mohammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0, and thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
1: अब रुक करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगनन टाम्बी देवी पदक की दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रही। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाउरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाउरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वही पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आद्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में 2 मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
3: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya at the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action में थे इंडिया के लिए और उनका ग्रुप स्टेज मैचेस में पहले मैच में मंगोलिया को हराया कंफर्टेबली। दूसरे मैच में भी जीत मिली आध्या और जय को, उन्होंने हराया कंबोडिया को, मगर जो तीसरा मैच था वो कांटे की टक्कर थी साउथ कोरिया के खिलाफ। उस मैच में हार का सामना करना पड़ा हमारी इंडियन टीम को, मगर हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस करा राउंड ऑफ 16 स्टेज में। एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आद्या और जे अपना 5वां मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ। और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में।
0: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है। दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है। बात करें भारत की तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर

0: बना हुआ है।
1: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी। कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा। अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी। इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा। अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: You just heard daily highlights of Asian Games 2026.
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं राग अभोगी कान्हड़ा।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता

लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।